0: ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर फॉर स्पिरिचुअल सूफी एंड कवाली नाइट। Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair 3438 Shepherd Avenue East Scarborough Warden or Shepherd ka intersection 24/7 Auto Repair very close to Highway 401 tamam major repair work karte hain body shop accidental repair denting painting engine repair oil change tire change brake pads and router wheel alignment battery and AC service 24/7 towing service bhi available hai SSR Auto Repair call Nazir Chaudhary Awais Chaudhary aur Munir Hussain 647-321-74 44 it's 647-321-7444
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9058280009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aap ki guarantee hamari.

0: ICC Immigration के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रू और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कृषि सभा के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कृषि सभा बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कृषि सभा। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है, तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है, तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद, कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त, जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी, या मेरी बेटी बैठी हुई थी, या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कि कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं, और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को, लालच हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदा रहा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें, ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं, जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, پلیز مجھے کال کریں, میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہا کہ 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

यहाँ छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios Mirab Tech number 4165930003 Ustad Nusraf Ali Khan ki khushta awaz aur waqt ho chala aapko le chalne ka Canadian English Headlines ki taraf jo aapke liye pesh karti hai Mani
1: News ke liye madam diya hai Team Bhatti Real Estate for all your real estate needs call Talha Bhatti 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogue shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant 35 Dundas Street West Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par charga lahori fish chapli kebab kadahi gosht chicken tikka masala chicken biryani seekh kebab rashmi kebab chicken boti chicken tikka bihari kebab lamb chops afghani tikka nihari aur bahut kuch khoobsurat kushada patio Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 it's 905-268-0088 टन और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23 24 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग Vendors or sponsors, abhi call karein 416-710-6777. It's 416-710-6777.
0: याद रखें अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन स्पाउसल सपोर्ट चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773 कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773
1: मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी मिसिसागा ब्रामटन स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810 इट्स 416
0: 9619012810 या लॉग इन हो mithafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
4: जी हाँ, मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी, मिड टू हाई फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिलती है और बेस्ट डील्स आपको मिलती हैं। एवरी वीक स्पेशल डील मिलती हैं और 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी स्टोर से, ब्रांड नेम स्टोर से, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको ये मार्जिन दे सकते हैं। मिसागा में लोकेशन इनकी 3050 वेगा बोलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबोर, 35 बुश रोड कैम्ब्रिज, और बहुत जल्द पांचवीं लोकेशन भी इनकी ओपन होने वाली है। चारों लोकेशन के लिए नंबर है 4169012810, मीठा फर्नीचर डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है। पवन मीरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे मीरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
5: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवी का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने

0: देखने को उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है। और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है। तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे 1099। ये देखो ये है हुनस्ती, आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो। तो मतलब ये एक डील होगी, एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड ड्रेसर मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास 3 मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन कोई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा तीन हजार से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलते हैं 4500 का, हम देते हैं 3000 का। तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए, तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में, तो आए मिड्डा फर्नीचर 4169012810 4169012810। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट सर उन्हें आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए 4169012810 4169012810 middhafinish.com की वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके 3-3 महीने पीछे हैं, और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे, तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा। उधर अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 4169300003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब, आज कल परसों और तरसों मंडे, यानी 4 दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के

सुभानु जी को 416-206-3200। ये मेन इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे एक साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 416-206-3200, 416-206-3200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Uni Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंड फ्री फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: हाँ जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे रابطہ करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप रابطہ कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरीडे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरीडे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के।
2: तो
3: जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक
2: यू जनाब। अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है। लिजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल ज़मान साहब। स्टे ट्यून।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga.
1: No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
2: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence Bridgemount ka intersection 416-757-9999 Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye tamam insurance plan accept karte hain insurance na rakhne walon ke liye special discount root canal treatment aur retreatment ke specialist hain Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor aur Dixie ke intersection 905-232-5678.
3: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
4: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922
6: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पेवे
7: करम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9582800009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

0: Views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी किताबों से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में आपके नंबर 416-593-0003 पाकिस्तान लिए चलेंगे माजरा दो तीन मिनट लेट हो गए फ्राइडे थोड़ा सा बिजी होता है तो इसलिए बात को हमें एड्स भी चलाना पूरे पड़ते हैं और कुछ गुफ्तगू भी रहती है मिलाजमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद कहेंगे मिलाज साहब अस्सलाम वालेकुम
3: जी वालेकुम सलाम
2: मिलाज साहब यौम मई मजदूरों का आलमी दिन है पाकिस्तान में तो मनाया गया यहाँ उस तरह से नहीं मनाया जाता दुनिया में वैसे बहुत सी जगहों में मनाया जाता है मजदूर को उजरत पाकिस्तान में सुनाया बढ़ा दी गई है लेकिन क्या हकूक के हवाले से भी मजदूर या गरीब तबका अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है
3: जी देखें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो बुनियादी इश्यूज हैं वो है ही गरीब लोगों के और जो मजदूर तबका है इसको जो है वो सबसे डाउन द लेन जो तबका है वो तसव्वुर किया जाता है और इसीलिए हुकूमत ने उसको देखते हुए जो मजदूर की उजरत है वो कम से कम 40,000 रुपए जो है ना वो रखी है और वो मिलती है और अच्छी बात है कि मतलब ये कम से कम जो है ना वो एक हाउस होल्ड के अंदर इतना होना चाहिए कि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है जो क्या कहते हैं अपना राशन वगैरह है उसको पूरा कर सके और बाकी ठीक है कि हुकूमत के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो भी ऐसे लोगों को जो है ना वो केटर करते हैं और हुकूमत का जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और दूसरे गरीबों के लिए प्रोग्राम है बहुत सारी जगहों पे हुकूमत ऐसे लोगों की हेल्प करती है लेकिन बहरहाल बुनियादी हकूक के हवाले से जो है ना वो अगर कहीं भी हमारे हम देखते हैं कि इस तरह का कोई मामला हो जाए आप कहीं जो है ना वो सिविल लिटिगेशन के अंदर या ऐसे किसी मामले के अंदर या किसी ताकतवर शख्स के साथ अगर आपका कहीं कोई ऐसा मामला हो जाए तो वहां पे हमने देखा है कि एक तबकाती डिफरेंस जो है ना वो हमें नजर आता है कि गरीब को उस तरीके से जो है ना वो इंसाफ जो है ना वो नहीं मिल पाता और जो तगड़ा और ताकतवर आदमी जो है वो अपने असर और रसूख को और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो बच निकलता है तो ये डिस्पैरिटी जो है इसके ऊपर भी साथ साथ हुकूमत को आपने उजरत तो उसकी कर दी है अच्छी बात है लेकिन मुआशरे के अंदर जब तक आप उस तबके को अपलिफ्ट करने के लिए उसको उस गुरबत से निकालने के लिए और स्किल प्रोग्राम और दूसरी चीजें जो है ना वो आप नहीं जो है ना वो लेकर आते तब तक मैंने देखा यहाँ पे जो है ना स्किल्ड वर्कर्स जो है एक तो मजदूर तबका है ना लेकिन जिनके पास स्किल्स हैं माशाल्लाह वो तो मतलब एक महीने का 2-3 लाख रुपया जो है वो कमाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
2: सही। अच्छा ईरान जंग के खात्मे के लिए नई तरकीब सामने आई है ट्रंप का इख्तियार ईरान से और जंग करनी है या नहीं फैसला अमरीकी कांग्रेस करेगी अमरीकी सेक्रेटरी ने ईरान जंग को पहले ही खत्म करार दे दिया है तो क्या जंग का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस के पास जाने से अमरीका को ईरान से निकलने का मौका मिल जाएगा वैसे सर ट्रंप तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं मेरा इख्तियार है
3: जी देखें बिल्कुल वो तो अपना बहुत कुछ जो है ना वो मानते हैं लेकिन बहरहाल जो अमरीकी कानून है वो तो यही कहता है कि अब उनको जो है 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत लेनी होती है चाहे जाए कि वो खुद जो है ना वो कोई और कानून पास करने की कोशिश करें लेकिन अभी जो है ना फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक तो उनको एक रास्ता जो है वे आउट मिल रहा है खुद भी बहुत सारे जराए जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी मुजाकरात की बात हो रही है जितना जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि जी आ जाए बात कर लें फोन कर लें हम तैयार हैं बैकडोर रबते हो रहे हैं जो है ना वो चैनल खुला हुआ है अभी एक दोबारा जो है वो तजवीज भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो अमरीका को भिजवाई गई है तो बहुत सारी जो है ना वो लोगों का ख्याल है कि अमरीका खुद भी जो है ना इसमें से अब निकलना चाहता है और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं और भी ऊपर जाने की जो है ना वहां पे है तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है वहां पर तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं कि जी क्या जरूरत थी आपको जो है ना वो ऐसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था तो वो बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना वो निकलें तो बहरहाल एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला जिसके द्वारा वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था लेकिन मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं दी तो इसलिए जो है ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं
2: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003 पाकिस्तान से बिलाल जमान सबसे

0: जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल लेंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर योम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है, और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही पीटीआई की क्यादत कर तो नहीं चुकी? बिलाल साहब,
1: ये देखें, जो जाहिरी हालात है ना, वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इलम में ये बात है, लेकिन बाहर जो लोग हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ थे। आपको याद होगा कि जब अली मीन गंडापुर को हटाया गया था,
0: जी बिल्कुल सही,
1: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें, 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था। उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए। केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से। और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब के जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है, जिस तरह के सुहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते। अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयानात की हद तक, लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें, 1000 साल का मतलब 1000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड है। 4 साल बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा
0: बिल्कुल
1: पूरा कर लेती है।
0: अच्छा,
1: तो लगता है कि कोई कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय है कि इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान साहब बाहर नहीं आएगा।
0: ठीक, अच्छा, अभी सुहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत हाल ओवरऑल कैसी है? क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
1: जी देखिये, जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है ना सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं, वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल सिलेंडर वगैरह यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है, और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग है। इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस अवेलेबल होती है।
0: अच्छा, वफाकी वजीर तवने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गए हैं। हुकूमत लोड मैनेजमेंट को आवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें आवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी लगता है आपको?
1: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई पीटीएम की हुकूमत आई थी तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था, और जरूरत होती है जब गर्मियों का महीना आता है तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती है, तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम को वही जो यूनिट्स हैं वो 40-40 रुपए में जो है ना वो दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वहां से कर रहे हैं तो उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए।
0: चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003, फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर 6910 6910 आप ऑन एयर सर बात कीजिए।
2: मॉर्निंग मिस्टर साहब।
0: जी वालेकुम सलाम।
2: दरअसल है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा, हम तो खैर इससे संभाला है। ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, एक हिस्ट्री है तो, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है। ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए, हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे और अल्लाह करे पाकिस्तान कम अज कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेंगे, एटलीस्ट के जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है तो ये एक अच्छा है कि कम अज कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्को करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये फ्री हैंड दे दे कि हम कम अज कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतने पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में भी बढ़ने के बड़े चांसेस हो गए खबरों में आया था और पूरी दुनिया ही, यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस और इवन अमेरिका का भी, यानी कि खबरें डॉलर पर गैलन तो ये तो बहुत
0: बड़ा है।
3: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज, एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता है, वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है और किसी डिसीजन पे लाती है।
0: जी।
3: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है, इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमने काफी हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी इस्लामाबाद बंद रहा है ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे हैं ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो, पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो। एक तो बात ये थी। दूसरी आखिरी बात में जो कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है, अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक नहीं होता, ये मैंने अब ये सवाल पूछा है, मैंने जवाब दे
0: किसी को। वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब ये देखें, जब तक ये जंग लगी है ना इसमें मसाइल तो होंगे और इन मसाइल में अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाई उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, IMF भी है, और इससे सबसे बड़ी बात जो है देखिये पाकिस्तान के कम अज कम कहने पे चले सीज फायर तो हुआ ना भट्टी साहब, ये तो दुनिया तो तस्लीम कर दी है ना कि चले सालसी। अब ये सालसी देखे शायद ईरान को तो हम मना ले, अब अमेरिका को मनाना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो बात वही होगी जो आपस में बैठ के इन लोगों ने अपनी शरायत तय करनी है। और पाकिस्तान का मसला है कि वो हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी और हमायती करेगा ईरान की। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब, इसमें हम ये कभी भी नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों के साथ, लेकिन अब यहाँ देख ले, अब यहाँ नहीं, कल भी आपने बताया तकरीबन 400 रुपए के मुतरादफ हमारा भी पेट्रोल हो गया, अब हमारा क्रूड ऑयल भी है, हमें क्या गवर्नमेंट कैनेडा ने दिया है, कुछ नहीं। ये देखे ये सरमायादार जागीरदार, इनका नुकता नजर और इनका लूटने का वारदात तरीका एक ही होता है। बाकी रह गई भट्टी साहब, हाँ साहब ने तमाम पते अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं। अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी की देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, 3 दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई। यार जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुफ्त चीजें मिल रही थी, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए मुल्क के खिलाफ, जो लोगों का इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नुकता नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं।
0: थैंक यू
2: ना करें,
0: थैंक यू वेरी मच। 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415
4: के सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आईपीपी के मालिक कौन है, कभी आपके किसी सामीन ने ये बात
0: कीजिए। 5415 आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415
5: मैं सिर्फ दो बातें करूंगा।
0: जी जी,
5: पहली बात यह है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है। भट्टी साहब आप मुझे बताएं कि कनाडा में कितने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकले, कितने मुजाहरे हुए, आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मुजाहरे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात। और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, वो उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई। यार ये बातें मैं कहता हूं ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूं कि नीयत का फतूर है, तो फिर ये नीयत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूं बात। भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
0: मुझे कह रहे हैं,
5: और आपका भी कद बड़ा होगा।
0: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
5: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई आप सवाल करते हैं।
0: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन ले रहे हैं, 8156
6: हेलो।
0: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
6: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% सरमायेदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मिया मंशा के 4 हैं, शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
0: चलिए अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
6: जांगी
0: तरीन भी अच्छा, ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं इधर बाकी कॉल दे। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6141
7: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
0: जी वालेकुम सलाम।
7: भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगें आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखे दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन। तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: ठीक, थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558 9558। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं बिलाल साहब। मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाज़ी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
1: नहीं, वो तो जो है ना क्या कहते हैं, अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज

0: करने की। देखिए एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर
1: उससे
0: से जो है ना
1: क्रॉस
0: वो
1: कर ले।
0: गुजर जाता है,
1: ठीक
0: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की
1: सही
0: भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन
1: सही
0: जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामला हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा
1: ठीक
0: का सारा बोझ जो है सिर्फ
1: वहां
0: आवाम
1: पे
0: के ऊपर ही
1: डालती।
0: डाल देती है,
1: ठीक है
0: तो फिर जो है ना वो बहरहाल
1: चले
0: एक जो है ना सवाल जो है ना वो आप
1: राइट।
0: जरूर
1: और
0: बनता है।
1: सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
0: जरूर, थैंक यू।
1: एंड लिसनर्स आपकी कॉल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी खोने की चीज़ इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम, पर मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट।

0: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाजिया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। जनाब आपके साथ गुड मॉर्निंग टोरंटो में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सुबह जो है बड़ी खुशगवार होती है और वेदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मजीद खुशगवार बनाया जाए। शहर में हमारे बड़े प्यारे एक दोस्त मौजूद हैं जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं, तो उनसे मैं मिलवाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो क्या लेकर आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त कुछ लेकर आ रहे हैं, तो इनसे वहीं पे इनसे डायरेक्ट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे बुलाने का अपने प्यारे से स्टूडियो में।
0: नईम आपका नाम है और सोशल मीडिया लैब के तौर पे जो है आपका प्रोफेशन जाना जाता है,
1: जी
0: क्या
1: है? सही कह रही हैं आप, ये मेरा सोशल मीडिया लैब के नाम से जो है मैं हर जगह मशहूर हूँ, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मॉडल शूट्स, एवरीथिंग।
0: अच्छा नईम, जैसा कि मैं अपने मेहमानों को बता रही हूँ कि आप जो हैं राइटर और डायरेक्टर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जैसा मैंने सुना है कि आपकी कोई अपकमिंग मूवी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, जरा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरह बनाई है और क्या आने वाला है।
1: जी, मूवी हमने शूट की थी लास्ट ईयर और मूवी का नाम है आने का, और ये बेसिकली ऑटिज्म के ऊपर है।
0: ओके।
1: इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको दिखाया गया है कि वो इस स्पेक्ट्रम के अंदर थोड़े से अफेक्टेड हैं और किस तरह से वो डिफिकल्ट सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को डील करते हैं। तो इसके अंदर थ्रिलर एस्पेक्ट भी है।
0: ओके।
1: और वो मूवी बन गई है, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगी और उसकी हम प्रीमियर करेंगे।
0: अच्छा, तो इसमें जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है वो ऑटिज्म का उनको मसला है।
1: जी, उसको मैंने कोशिश ये की है क्योंकि मैंने ही लिखी थी मूवी। एक्चुअली हुआ ये इस तरह कि जब मैंने वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा, तो जो मैंने जब खुद स्क्रिप्ट को, वो कैरेक्टर को पढ़ा मैंने, सो आई रियलाइज के इनका जो बिहेवियर है, इट्स वेरी क्लोज टू आर्टिस्टिक पर्सन, द वे शी इज टॉकिंग, द वे शी इज रिएक्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। सो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो भी, हम खुद भी इस चीज से गुजर रहे हैं, मेरा बेटा जो है वो भी डायग्नोज हुआ हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको इसका रंग दिया जाए। तो जो मेन कैरेक्टर है वो भी इसके अंदर मैंने फिर इस तरह से डिजाइन किया कि शी इज ऑल्सो यू नो फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, एंड ऑल्सो उसको जो बचाने वाला कैरेक्टर है एंड में, वो भी आर्टिस्टिक है।
0: ओह वाओ। अच्छा, मैं अब जो सोशल मीडिया तो अब ज्यादा हो गया है, तो अब मैं नोट करने लगी हूँ कि जो आर्टिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो आ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको भी हिम्मत मिल रही है।
1: जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक जब मैं छोटा था, टैबू था।
0: जी,
1: लेकिन अब ये माशाल्लाह से पूरा एक
0: एड्रेस
1: हो चुका है, और इस जो भी कह लें इसको, इसके बहुत लाइक सर ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर ADHD और बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्नोसिस जो है वो आ जाती हैं। तो एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैमिलीज, जैसे आपने बताया, जो है इस चीज से गुजर रही हैं, बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन नाउ दे नो, स्कूल्स में उनको जो है डायग्नोस कर दिया जाता है, और फिर सिर्फ डायग्नोस नहीं किया जाता बल्कि पूरे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो टेल रोड हैं, इसलिए आ सके उस पर्सन को, उस बच्चे या बच्ची को हेल्प कर सके जितना हो सके। और हमारी जो ये लिबरल गवर्नमेंट है, इस सैड टू से कि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम इसको बजट कटिंग की है, यू नो होपफुली दे विल रियलाइज कि ये बहुत जरूरी है। और
0: सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस जरूरी है कि पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस आए, और उसके बाद वो काउंसलिंग प्रॉपर जो इसका एक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, जो एक प्लान होता है, राइट। लेकिन अभी मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप इसको फिल्म के जरिए जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, जो कि मुझे लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा।
1: जी आप सही कह रही हैं, हमने तो छोटी सी एक काविश है, एक कोशिश की गई है कि इसको आर्ट के जरिए, फिल्म एक आर्ट है बेसिकली,
0: बिल्कुल,
1: यू नो, तो उसको लोगों के सामने रखा जाए और दिखाया जाए कि जहाँ तक मैं कोशिश कर सका, मैं कोई इतना ज़बरदस्त राइटर नहीं हूँ, तो कि लोगों को, जैसा कि आपने बताया, कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि जस्ट बिकॉज दे टॉक डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली, doesn't mean के वो आपसे किसी भी लिहाज से कम है, मैंने मूवी के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मेन कैरेक्टर है और जो बचाने वाला कैरेक्टर है वो एक्चुअली दे डिड प्रीटी डैम गुड टू सेव देमसेल्फ और टू एनालाइज द होल थिंग डिस्पाइट द फैक्ट के जैसे जैसे मूवी स्टार्ट होती है और वो सस्पेंस बिल्ड अप शुरू होता है आप कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे ये क्या कर रही है यू नो दीज आर द टेल टेल साइन के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा उसको घुमाया है बाद में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि नो दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम
0: पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज के साथ डील करना
1: ये सही कहा आपने ये आई थिंक ये कल्चरल थिंग भी है जैसा कि आपने कहा कि जो अभी आपने बात की थी कि सबसे पहली बात होती है उसको एक्सेप्ट करना कि किसी के साथ किसी शख्स के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं बाद में उसको हर पेरेंट्स डिफरेंट एड्रेस करते हैं और ये भी हो सकता है कि खुद उनमें से वन ऑफ द पेरेंट्स भी maybe going through the same thing
0: exactly.
1: like to wo phir is cheez ko enhance kar deta hai enhance in the sense ke usko mushkil bana deta hai ke main isko kaise tackle karu aur hamare jo asian culture hai usually pakistan india usme to yahi dekha jata hai ke aise bachchon ko ab to khair kafi changes aa gayi hain which is good lekin मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि इवन मुझे पता है कि नाउ आई लुक बैक एंड सी के मेरे कुछ कजन भी जो थे वो इस चीज के अंदर थे और हम इट्स सैड टू से कि हमारे बड़ों ने उसको मतलब एकदम ही रफ उसको टेक किया और उनका डायग्नोज उस तरह से नहीं हो सका बट इट्स गुड टू सी कि गुड चेंजेस आर कमिंग
0: एटलीस्ट कनाडा में तो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है और पेरेंट्स की भी जो है वो काउंसलिंग वगैरह होती है कि वो किस तरह जो है वो क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे पहले वो उनको करवाई जाती है फिर उसके बाद जो है वो उनको प्रॉपर प्लान दिया जाता है कि किस तरह डील किया जाए अच्छा ये तो हो गई बात इसकी अब मुझे ये बताएं कि मैं पिछले दिनों और जो है मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रही थी फिर अचानक मुझे आपकी वो हॉरर एक सीरीज से टकरा हो गया और लिटरली वो वाकई लग रहा था कि वो ड्राउनी कुछ उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं
1: जी वो एक्चुअली बेसिकली मेरा स्टेपिंग स्टोन था शो बिजनेस में आने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए मगर वो मेरा पैशन है जैसे कि मुझे सस्पेंस हॉरर जॉनर से हमेशा कनेक्शन है एक इंटरेस्ट है तो मेरे और मेरे बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड ने हमने डिसाइड किया कि इस तरह का कोई शो स्टार्ट करते हैं कोविड हुआ हुआ था एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन तो जैसे जैसे स्लोली ओपन होना शुरू हुआ था हमने कहा कुछ करना चाहिए
0: उस टाइम पे बड़े आर्टिस्ट निकले
1: तो वो बस हमने अपने प्रीटी बेसिक स्टफ के साथ लाइक गोप्रो के साथ हमने शुरू किया और वी हैड नो आइडिया व्हाट वी वर डूइंग व्हाट वी वर स्टेपिंग इनटू
0: आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ उस प्रोग्राम करने रिकॉर्ड करने के दौरान कि जो आपको याद है क्योंकि इस बात को भी 4-5 साल तो हो चुके हैं कोई ऐसा कि दिमाग पे लगाओ कि ये दिस इज माय गॉड
1: जी एक्चुअली उस प्रोग्राम को स्टॉप करने का रीजन ही यही है कि जो हमने लास्ट एपिसोड किया उसमें और आई थिंक दूसरे एपिसोड में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई खासतौर पर लास्ट एपिसोड में कि हमने कहा कि नाउ आई थिंक सेफ्टी माइट बी एट कंसर्न बिकॉज हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा क्रू नहीं होता था हम दोनों ही होते थे और जाके उस जगह को एक्सप्लोर करना और स्पेशली एक जगह को दिन में जाके एक्सप्लोर करना और फिर रात के अंधेरे में जाके एक्सप्लोर करने में बहुत फर्क होता है और देयर इज नो आपके साथ कोई बड़ा क्रू नहीं होता सो मैं और मेरा दोस्त ही होते थे तो जो लास्ट हमने किया एक्चुअली जो सेकेंड किया था वो वॉन में एक घर था तो वहाँ इंटरसेक्शन पे एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा कई सालों पहले तो वहाँ हमने जब किया तो जब हम रात में वापस गए तो हमें एक चीख की आवाज़ सुनाई दी वो रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर
0: अच्छा
1: हाँ जी तो वो मैंने उस वक्त मेरे ब्रेन ने उस वक्त कंप्यूट नहीं किया कि ये कोई एनिमल है कि क्या है लेकिन इट वॉज देयर एंड वी गॉट स्पूक्ड सो वी एक्चुअली इट्स फनी दैट वो रिकॉर्ड भी हुआ है कि हम भागे हैं वहाँ से
0: अच्छा यानी जैसे चीख सुनाई दी तो आपने कहा ओके होगा कुछ लाइक एनिमल होगा या कुछ भी فوری طور پہ پروسیس نہیں کرتا ہے نا ذہن.
1: میرے دوست کو زیادہ ہوا, لیکن میں چونکہ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو آئم مور آن دی سکیپٹک سائیڈ ایز ویل, میں نے اس کو ریشنل لینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ شاید میں بھی کوئی اینیمل ہے کچھ ہے, لیکن دیٹ ون وہ ایسی چیخ تھی کہ لگ رہا تھا کسی عورت کی چیخ ہے.
0: اچھا
1: ہاں, تو لیکن میں نے کہا واٹ ڈو آئی نو, مے بی کسی کوئی اینیمل, یو نو ون یو آر آؤٹ سائڈ یور برین از ہائپر ایکٹیو اینڈ سو. ایک تو وہ ہوا, اور جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ کیا تو جب ہم واپس,
0: ڈیڈ یو ریکارڈ؟
1: جی جی وہ ریکارڈ ہوا.
0: اوکے
1: ہاں جی. تو اور جو لاسٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو وہ دیٹ واز پریٹی ڈراسٹک, وہ سب ریکارڈ ہوا ہے.
0: اوکے,
1: ہم پہ پتھر پھینکے گئے.
0: او مائی گاڈ.
1: ہاں جی, اور وی ور سراؤنڈڈ.
0: واٹ آئی ہرڈ کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ جنات کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں, ان کے اس میں آپ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں نا, مطلب
1: وہ ہم ایک کھنڈرات تھے, تو اس کھنڈرات کو اس کا نام ہے ہرمیٹیج روئن, وہ ہیملٹن میں ہے. یا وہاں پہ جانے کے لیے ایکچولی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اٹس اے سیگوے.
0: سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے ہیملٹن کے بارے میں بہت ساری اسٹوریز سنی ہے کہ وہ تھوڑے سا لٹل بٹ.
1: ہاں جی, ہیملٹن میں ہم نے کافی ایک پاگل لوگوں کا ابینڈن ہاسپٹل ہے وہاں بھی گئے. دیٹ واز ویری کریپی ٹو ایکچولی.
0: او مائی گاڈ, سننے میں ڈر لگ رہا
1: ہے. یا دیٹ واز ویری کریپی. اور وہاں پہ جو سین, سوری میں اس سے ہٹ رہا ہوں, ہم ایک کپل کا باہر انٹرویو کر رہے تھے, اور کپل کے باہر انٹرویو کرتے کرتے ہی اوپر سے پتھر گرا ہمارے اوپر.
0: واو,
1: تو وہ ریکارڈ ہوا تھا.
0: تو کپل جو تھا وہ کیا تھا؟
1: وہ دیور ایکچولی دے کیم ٹو اس اینڈ وہ ہمارے لیے وریڈ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یو گائز آر پلیئنگ وتھ فائر,
0: او مائی گاڈ,
1: سو گیٹ آؤٹ آف ہیئر, اٹس ناٹ فنی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کا کچھ فن بنا رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ وی آر ناٹ میکنگ فن آف دس تھنگ, وی آر ایکچولی میکنگ اے ریالٹی شو. تو وہ ہمیں ابھی یہ سمجھا ہی رہے تھے کہ اوپر سے پورا ایک پتھر گرا تھا وہاں بھی ایکچولی, تو وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو آخری تھا وہ تو کافی ڈینجرس تھا.
0: اچھا, وہ آخری اور وہ دونوں ڈیفرنٹ تھے, یعنی پتھر آپ کو دو پروگرامز میں
1: آئے؟ دو پروگرام میں ہوئے ہیں. اور وی ہیڈ نو آئیڈیا,
0: شیطان سمجھ کے تو کوئی نہیں مارا,
1: پتا نہیں
0: کنکریاں,
1: یا تو کوئی ہمارے پیچھے آتا تھا. تو جو لاسٹ ہوا ہے وہ تو ایک دم جنگلوں میں تھا, تو وہاں پہ ہمارے پہ پتھر آ کے گرا. میں ریکارڈ کر رہا تھا, آئی واز اے کیمرہ مین, اور یو کین ہیئر, یو نو ہوا میں جب پتھر جاتا ہے اور وہ گرا ہے جا
0: کے.
1: ہاں جی, تو وہ گرا ہے, میں ہم نے دونوں نے مڑ کے دیکھا ہے, ہم نے کہا اوکے
0: کریپی ساؤنڈ.
1: ہاں, تو پھر میں نے اپنے دوست کو یہی, میرا دوست ڈر گیا تھا, ڈر تو میں بھی گیا تھا, لیکن میں نے کہا لیٹس کیری آن, لیٹس ناٹ اسپوک اگین. تو پھر ہمیں ہاؤلنگ کی آواز آئی جیسے کتوں کی, وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے کہا دیٹس نارمل, یو نو جنگل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نو کائیوٹیز ہو سکتے ہیں. تو پھر ہمیں فٹ اسٹیپس کی آواز آئی ہیں بہت ساری, لائک چاروں طرف سے آنے لگی ہمیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ہم نے کہا اوکے there are people, they are surrounding us.
0: Okay.
1: میرا برین اس وقت بھی پیرانارمل کی طرف نہیں جا رہا تھا, میں اس کو ہمیشہ ریشنل لیتا ہوں کہ مے بی دیر آر سم پیپل, دے آر ڈوئنگ سم بیڈ سٹف ہیئر, دے وانٹ اس ٹو گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تو جو بھی تھا, اینی وے, تو
0: ڈرگیز وغیرہ کی طرف جاتا ہے نا, کہ وہاں پہ کھنڈرات میں وہ اپنا اس تلاش کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں پتھر گرا یا دوسری چیزیں ہوئی, تو دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو ڈرگیز, رائٹ؟
1: نو, فنی تھنگ یہ تھا کہ آخر میں نے اپنے دوست کو کہا جب ہم واپس کھنڈرات میں گئے کہ یو نو وٹ, لیٹس سپلٹ, میں اس طرف جاتا ہوں, آپ یہیں رہو, اس کو فالو کرو. تو اس نے مجھے منع بھی کیا, اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو میں نے کہا نہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ تھا کہ کچھ ہونا ہے, سو لیٹس, اگر اب جس پرپز کے لیے آئے ہیں تو پھر
0: کچھ کہہ رہا
1: کہ اس کو ریکارڈ کریں. تو پھر وہی ہوا, میں ایک طرف چلا گیا, وہ میں نے کہا کہ تم یہی رہو. تو جب میں گیا ہوں تو اس کے 5 منٹ بعد ہی اس کو ایسا لگا کہ میں وہاں نہیں گیا ہوں, بلکہ میں ایک کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہوں اس کو.
0: واو,
1: تو وہ ایک دم اس نے ٹرن کیا ہے, تو اس نے میرا نام لیا ہے, تو اس نے کہا تم یہاں کیا, تم تو ادھر, تم آر یو میسنگ اراؤنڈ وتھ می. وہ یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھ میس اراؤنڈ کر رہا ہوں. تو وہ دوڑتا ہوا دیوار کے پیچھے آیا, دیوار بس اتنی دور تھی, ٹوٹی ہوئی دیوار تھی, اس سمجھا میں اس کو ابھی پکڑ لوں گا. جب وہ واپس گیا ہے تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ, تو اس نے پھر چیخ ماری ہے. تو پھر میں دوڑتا ہوا واپس آیا ہوں بہت دور سے, تو اس نے جب اس نے واقعی دیکھا کہ میں تو کافی آگے تھا, اتنی دوری کیسے جا سکتا ہے یہ 2 سیکنڈ میں, تو پھر اس نے بتایا کہ یہاں کوئی تھا. ہم نے کہا لیٹس پیک اپ ناؤ, اور وہ ریکارڈ ہوا ہے, وہ شبی ریکارڈ ہوئی ہے. وہ شبی ریکارڈ ہوئی ہے, تو وہ ہم نے دیکھی ہے, ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا اس چیز کو انہینس کیا ہے ہم نے. दिखाने के लिए फ्रेम को रोक के कि ये देखें यहाँ पे कुछ था,
0: जान जोखों में डाल
1: दिया। हाँ, उसके बाद हमने कहा, हमारी फैमिलीज ने कहा कि भाई इनफ इज इनफ है, अनलेस यू आर गेटिंग पेड बाय सम बिग प्रोड्यूसर।
0: मैं जल्दी आपको पे करूंगी। अच्छा ये बताइए नईम, अभी जैसा कि आप मूवीज जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसमें आपको अपनी फैमिली की कितनी सपोर्ट है, क्योंकि ये फैमिली की सपोर्ट के बगैर आपको लगता है कि ये चीज मुमकिन होती है?
1: मेरी जो माशाल्लाह से I'm blessed कि मेरी जो अदर हाफ है, मेरी वाइफ जो है, शी इज एक्चुअली द प्रोड्यूसर। जब इन द बिगिनिंग शी वाज यस लिटिल बिट स्केप्टिक कि ये क्या नया चीज है, मूवीज कैसे करेंगे, क्या होगा, बट शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट टू, सो उससे मुझे बहुत हेल्प है। तो यस, शी इज 100% सपोर्टिव। एंड समटाइम तो सेट के ऊपर, हालांकि डायरेक्टर मैं था, लेकिन शी ऑल्सो गेव सम गुड आइडियाज कि नहीं, सीन को ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो इट टर्न आउट प्रीटी गुड। सो इन दैट सेंस यस, शी इज ऑन बोर्ड एज वेल। सो या बगैर उसके सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे जो हैं मेरे, दे आर, वो बड़े हो चुके हैं, सो दे लाइक माई प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसीलिए जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना लाने लगा हूँ, तो वो मेरी जो बेटी है वो कहने लगी, डैड डू समथिंग दैट आवर जनरेशन कैन ऑल्सो अटैच। आप मतलब उनको ऐसा लगा कि मैंने जो लास्ट मूवी बनाई है ना, वो मतलब इंडिया पाकिस्तान के कल्चर से ज्यादा रिलेट कर रही है। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, तो फिर मैंने इस कहानी को ऐसा लिखा और ऐसा इंशाल्लाह शूट करूंगा कि वो
0: दूसरी कोई मूवी है।
1: जी जी जी, उस मूवी का नाम है डार्क मेमोरीज।
0: ओके,
1: हां, तो वो भी इंशाल्लाह वी गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो
0: उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे या अभी?
1: मैं यही बता सकता हूँ कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर है।
0: ओके,
1: और वो भी उसको एक डार्क रंग दिया गया है, एक थ्रिलर है वो भी। दिखाया ऐसी है कि कोई पैरानॉर्मल चीज है, लेकिन जो मूवी
0: उसी तरफ जाते हैं।
1: लेकिन वापस जब मूवी रिवर्ट करेगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि इट्स नॉट पैरानॉर्मल, ये सब इसके दिमाग में, बेचारा सफर कर रहा है किसी चीज से। तो ये कोशिश की गई है उसके।
0: अच्छा, यानी ये भी कुछ वैसे ही साउंड कर रही है कि लोग जो है इंटरेस्ट पैदा हो जाता है लोगों में इस तरह की, क्योंकि देखिए ये जो प्यार भरी कहानियां, अब इंसान इससे बहुत दूर निकल चुका है पोस्ट कोविड, तो मुझे लगता है कि इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्यार भरी मूवीज या प्यार भरे गाने, अब तो जो है ना फास्ट फास्ट फास्ट, और उसके अलावा इस तरह की जो मूवीज हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों को। तो लाइफ आपको क्या लगता है, बीइंग अ राइटर, आपको लगता है कि चेंज हुई है पोस्ट कोविड दुनिया, या क्या, या ये मेरा अपना परसेप्शन है?
1: नहीं, आई थिंक आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है आपकी कि कोविड ने दुनिया को बहुत चेंज कर दिया है। नंबर वन के ये कि एक तो हर कोई सोशल मीडिया स्टार हो गया है,
0: एवरीवन,
1: सो कैमरा जो है वो अब इतना रैम्पेट हो गया, और इतना, एंड इट्स गुड थिंग टू, यू नो, सबका टैलेंट बाहर आ गया है। एक तो ये, उससे एटीट्यूड में भी फर्क पड़ा है। और
0: एटीट्यूड में किस तरह का आपको लगता है?
1: एटीट्यूड में के जो एक्सेप्टेंस लेवल है सर्टेन चीज में बढ़ गया है, सर्टेन चीजों में बहुत कम हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपनी भी चार चीजें या पांच चीजें डाल देता है यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि दूसरे लोग जो हैं वो भी कुछ हैं। इसकी ये काफी है एक्चुअली,
0: दे कैन डू दैट,
1: या दे कैन डू दैट, सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी वियर्ड साइकोलॉजिकल थिंग। और गुड थिंग ये है कि लोगों को टैलेंट देखने को मिला है, और लोगों को पता लगा है कि इतने जबरदस्त टैलेंटेड लोग हैं,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: यू नो, और वो अच्छी चीज ला सकते हैं, ला रहे हैं,
0: ला रहे हैं, पॉजिटिव वे में अगर देखें तो बहुत सारे लोग उसमें उभर के आए हैं। और खवातीन स्पेशली घरों से काम उनका स्टार्ट हो गया है, यानी स्मॉल बिजनेस जो है वो खवातीन ने स्टार्ट किया है, और काफी जो है वो इसमें आगे बढ़ रही हैं। और मैं ये कहूंगी कि एक तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर खवातीन अपना हाथ बटाना चाहें, अच्छा इसमें वो खवातीन भी शामिल हैं कि जो कि वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वो चूंकि घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में फंस के वो काम नहीं कर पा रही थी बाहर जाके, तो उनका वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर ब्लेस्ड कि कैनेडा में बहुत मेजॉरिटी आप इसको कहें कि जो है सारी वर्किंग खवातीन है, तकरीबन सारी खवातीन वर्किंग हैं और जो नहीं हैं अब वो भी घरों से काम कर रही हैं। तो मैं कहूंगी कि ये पोस्ट कोविड खवातीन के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, ड्यूरिंग कोविड बड़ा अच्छा साबित हुआ है कि उन्होंने अपनी चीजें, चाहे वो खाना पकाने के हिसाब से या जिस हवाले से भी, घरों से उन्होंने अपने जो कपड़ों का शुरू कर दिया। तो यह हर चीज को अगर पॉजिटिव वे में देखें तो बड़ा अच्छा, मर्दों के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ है कि उनके हाथ बटाने के लिए खवातीन आगे आ गई हैं।
1: नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। सोशल मीडिया जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके आगे सर थाम चुका है। And this is just the beginning. It's gonna evolve into something so gigantic. मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर मैं नाइग्रा फिल्म फेस्टिवल में गया हुआ था, तो वहाँ डॉना समर आई हुई थी, शी इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूवी इंडस्ट्रीज हैं हॉलीवुड की, वो खुद भी रिप्रेजेंट करती हैं पैरामाउंट पिक्चर्स को, तो मैंने कहा था कि ये जो सोशल मीडिया है ये इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इज़ क्रिएटिंग अ बिग इम्पैक्ट, अ बिग डेंट, एंड इट्स ऑल्सो फोर्सिंग जॉइंट कंपनीज लाइक पैरामाउंट एंड बड़े बड़े जो नाम है टू रीथिंक आवर होल वे ऑफ डूइंग मूवी मेकिंग एंड एवरीथिंग। सो देयर यू गो।
0: अभी थोड़े अरसे पहले की बात है, मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले की बात है, कि पाकिस्तान की मैं एक राइटर से बात कर रही थी, खातून है, तो उनसे मैंने कहा कि आपके ड्रामे इतने फ्रिक्वेंटली आते थे, अब इतने कम क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि शाजिया, अब जो यूट्यूब ने और जो इस तरह का सोशल मीडिया है उसने ना लोगों की मेंटालिटी इस तरह की कर दी है कि अब वो लंबे ड्रामास नहीं देखना चाहते, वो कहते हैं 10 मिनट के अंदर मुका दो। नहीं, 10-10 मिनट की मूवीज आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब हमारा स्कोप उतना नहीं रहा है। वो उनको शिकवा था, जाहिर सी बात है, एक पुरानी राइटर हैं और बड़ी मंझी भी राइटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये कि ये शिकवा उनको हो रहा था, कह रही थी कि बिल्कुल सोशल मीडिया ने जो है काफी बड़ा डेंट मारा है इस इंडस्ट्री पे।
1: नो डाउट।
0: तो ये कि नईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि मैं मूवी देखने के बाद भी आपको जहमत दूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी, अगर जहां पे कुछ क्रिटिसाइज करना पड़ेगा वहां पे क्रिटिसाइज भी करूंगी, क्रिटिक बनूंगी मैं। और अगर जहां पे मुझे आपको सपोर्ट करना होगा मैं आपके शाना बशाना खड़ी होंगी। तो ये कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाजरीन, आपसे भी फिर मुलाकात होती है। देखिए मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें कनाडा की दिखाती हूँ, पॉजिटिव साइड भी दिखाती हूँ, नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती नहीं है, और जो होती है वो हमारी आपस में रिजोल्व हो जाती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
10: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
11: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
12: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: and let Talha serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The law

0: ये महमूद और अयाज हैं जो रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं, और ये हैं करीम सेठ, इन्होंने ज्यादा रोटी खा ली और अब भाग रहे हैं। बेचारे गुलखान के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो एक बनियान खरीद सके। और ये है स्वीट टी, इनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी बनियान ही खरीदती हैं। अमजद सुबह से एडमिशन की लाइन में खड़ा है और शहरी जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सकीना आपा आज बहुत खुश है, उन्हें राशन की पर्ची जो मिली है। पर्ची तो हमें भी मिली थी लेकिन भत्ते की। हमें लगता था इस शहर में पैसे का ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे आने के बाद की प्रॉब्लम्स का हमें कोई आइडिया नहीं था।
1: फरहान यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस महीने की दूसरी पर्ची है, दूसरी।
2: मैं भी तो कब से कह रहा हूँ आपसे कि सब कुछ बेचते हो, निकलते किसी दूसरे मुल्क।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। क्षमा गया, आखिरी निशानी है यार, आखिरी।
2: अभी की आखिरी निशानी अचार है शकील भाई, वो तो हम किसी मुल्क में भी बेच सकते हैं यार।
3: हेलो, पैसे मिलते ही एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर।
1: जी पप्पी भाई, जी पप्पी। मेरे लाल, देख मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ बेच के यहाँ से निकल जाते हैं यार।
2: वाह शकील भाई, आप तो पर्ची से ज्यादा पप्पी से डर गए।
1: क्या करूँ यार, शरीफ आदमी हूँ यार। हेलो,
4: हेलो।
1: क्षमा चलिए, क्षमा चलिए।

0: कुछ काम मिला?
1: नहीं, मेरे कैलिबर की कहीं कोई जगह खाली नहीं।
2: सुबह बिल्डिंग का ठेकेदार मिला था, उसको मजदूरों की जरूरत थी, मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया भाई।
3: क्या क्या कह रहे हो शकील भाई, पागल हो गए हो क्या? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे है?
4: समाचार के सीईओ का साला बजरी उठा रहा।
2: अबे जहां का तू सीईओ था ना, वहां का मैं एमडी था।
0: अब तू जाग जाओ फरहान, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इस साल में।
3: मेरी हरकतें? मेरी हरकतें? और तुम ये देख, ये इन हालात में भी ब्रांडेड जॉगर्स पहन के घूम रही है ये औरत।
0: मिट्टी देखी है तुमने? मेरा पेडिक्योर खराब होगा तो दोबारा कराने के पैसे तुम दोगे?
3: पैसे तुमने छोड़े कहाँ ना, छोड़े कहाँ पैसे, लाखों रुपयों के तो ब्रांडेड बैग खरीद लेती थी तुम। आज उन बैग में रखने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं हमारे पास।
0: अच्छा, और खुद को भूल गए हैं? गाड़ियाँ ऐसे बदल रहे थे जैसे फोन बदल रहे हो, और फोन ऐसे जैसे कपड़े बदल रहे हो।
3: कपड़ों का नाम लेके तपाना नहीं मुझे, कपड़ों का नाम लेके नहीं तपाना, ये तुम्हारे फैशन के चक्कर में ना सारा दिवालिया निकल गया हमारा। और किधर गई तुम्हारी वो सारी सहेलियाँ,
2: गर्ली गैंग, जिनके चक्कर में वो तुम लॉन की एग्जीबिशन लूट लेती थी? अरे इतने तो आसमान में तारे नहीं है नैना, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे फोन में है।
0: देखो फरहान,
2: यार बस करो, यार बस करो, बस करो, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था।
3: हमारी किस्मत? हमारी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत शकील भाई। अरे क्रिकेट से लेके घोड़ों की रेस तक आज तक कभी कुछ जीता है तुमने? अरे 25 करोड़ डुबा दिए तुम्हारे भाईजान ने, 25 करोड़।
2: चले थे शाहरुख खान बनने,
3: क्रिकेट टीम खरीदूंगा। किसने कहा था कराची प्रिंस खरीदने को, किसने कहा था?
2: अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दो, सारा कसूर मेरा है यार।
3: क्या हुआ? क्या हुआ?
2: मिलावट वाली दाल खा खा के ना पथरी हो गई है यार।
3: ऐसे हालात में ना शकील भाई लोग फाके करते हैं। आपको किस गधे ने कहा था दाल खाने के लिए?
2: अबे ओ ख्वाबों के शहंशाह, कल को दाल भी नहीं मिलेगी।
0: क्या हो गया हम लोगों को? पहले भी तो गरीब थे, ऐसे लड़ते तो नहीं थे ना। वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा।

0: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरी शॉपिंग से प्रॉब्लम थी?
1: छोड़ो ना इन बातों को। वो देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है।
0: हाँ, आज फुल मून है ना?
1: हाँ, ये मून कहाँ है?
0: वो तो रहा आसमान पे।
1: अरे ये नहीं, अपना मून।
0: आज इतने सालों बाद उसकी याद कैसे आ गई?
1: अच्छे वक्तों में किसी की याद नहीं आती, बुरे वक्त में ही दोस्त याद आते हैं। अरे मून की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अरे तू कॉल कर रहा है?
2: ओए कैसा है यार तू?
1: मून
2: है किधर?
1: मैं ठीक साइड पे हूँ ना।
2: साइड पे? साइड पे? कौन सी साइड पे?
1: हाँ साइड पे, साइड पे ही तो हूँ। वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ना, बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग
2: है रात में?
1: दिन में टाइम कहाँ मिलता है यार, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, शोरूम्स। और नैना, नैना भी तो है, उसको भी तो टाइम देना पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है दोस्त।
2: तो सुनो फिर, मैं भी अपनी जिंदगी मुश्किल करने जा रहा हूँ।
1: क्या?
2: और शादी कर रहा हूँ मैं, शादी।
1: क्या कह रहा है यार?
2: और तुम सबने आना ही आना है।
1: कहाँ?
2: साउथ अफ्रीका।
1: साउथ अफ्रीका? अरे नहीं यार मून, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, वो काम बहुत फैल गया यार।
2: और तू फैलना बंद कर, मैंने टिकट करा दिया और तुम सब लोगों ने आना है। अब केप टाउन में मुलाकात होगी। ओके फिर
1: मून,
2: टीसी टीसी आना है। बाय
1: शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई, हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं।

0: सोचा खुशी का मौका है, एक एक हो जाए आज फिर है।
1: शकील भाई आप लो ना। नहीं यार पहले तुम पियो ना।
0: ओ कमाल करते हो, पकड़ो यार शकील भाई, ओ पकड़। चेयर्स भाई।
1: हाँ ये है ना, बैठो। अरे चेयर्स शकील भाई, चेयर्स।
0: चेयर्स चेयर्स। यार अच्छा किया तुम लोग यहाँ पे आ गए, और यू गाइस आर द ओनली फैमिली आई हैव यार।
1: ये क्या कह रहा है? अरे कह रहा है कि
0: मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन है।
1: अच्छा तू ये बता, तू यहाँ पहुंचा कैसे?
0: पैसे आने के बाद मैंने सोचा वर्ल्ड टूर करना चाहिए, और यार पाकिस्तान से आगे कभी गया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया दुबई, उसके बाद मैं आ गया साउथ अफ्रीका।
1: अच्छा
0: फिर यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सका।
1: क्या पासपोर्ट खो गया तेरा?
0: ओ नहीं यार, यहाँ एक पार्टी में ना परी दिख गई।
1: फरहान मैं पहले ही कह रहा था कि इसके पास परी है, तभी तो इसके पास इतना पैसा आ गया।
0: ओ नहीं यार शकील भाई, परी फियांसे मेरी।
1: पा, पा, पा, पा, पा, पा, मंगेतर, हा? मंगेतर।
0: उसके बाद मैंने तय कर लिया कि यहाँ से आगे तो नहीं जाता।
1: पर तू करता क्या यहाँ पे?
0: और म्यूजिक के अलावा आता ही क्या था? तो आज यहाँ का सबसे बड़ा डीजे कौन है?
1: कौन?
0: आपका भाई। ओ ब्रदर डिस्को है यहाँ पे।
2: क्या बात है,
0: इसी बात में चेयर्स भाई। चेयर्स शकील भाई, चलो हो जाए। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम लोग तो बताओ क्या किया इतने पैसों का है?
1: यार हमारे पैसे तो
3: स्टॉक्स में डाल दिए।
1: एक रात में डबल
3: डबल।
1: फिर वहां से निकाले तो प्रॉपर्टी में डाल दिए।
0: डाल दिए।
1: एक महीने में ट्रिपल
3: ट्रिपल।
1: तो मल्टीपल बिजनेस है हमारे।
0: क्या बात है,
1: पानी से लेके पेट्रोल तक सब बेच रहे। अभी शकील भाई कंस्ट्रक्शन का काम भी तो शुरू किया हमने। वो बना रहे, वो लंबा सा नहीं होता, लंबा सा
0: घंटा घर।
1: वो घंटा नहीं यार, वो बुर्ज खलीफा बना रहे कराची में। कटी पहाड़ी पे बीचो बीच।
0: क्या कहने, बड़ा लोकेशन घुट चुके
1: फ्लैट। अपनी तो किस्मत ही चमकी।
0: और रोने की क्या बात है इसमें?
1: यार तेरी समझ में नहीं आएगा पगले, तरक्की बहुत हो रही है। हमारी खुशी के आंसू है।
0: कमाल हो गया, जब भी देखो मैं तो भी।
4: उनकी तो किस्मत ही चमक गई। घर कितना अच्छा है और परी भी कितनी अच्छी है। वैसे पता चला करता क्या है?
5: बड़ा मशहूर डीजे है।
1: हाँ, और उसका यहाँ पे अपना डिस्को भी है।
4: वाह, काम का काम, पार्टी की पार्टी।
5: पार्टी तो हम भी कर सकते थे अगर तुम्हारे भाईजान मान जाते तो। कब से कह रहा था सब कुछ बेच बाज के दूसरे मुल्क चलते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो पाकिस्तान में अचार बेचना था। अब हो गया ना सब चट।
1: अपना मुल्क अपना होता है फरहान।
5: तो अपना मुल्क अपना होता है ना, लेकिन अपने मुल्क में अपना पैसा कौन रखता है? सारे पाकिस्तानी रईस अपना पैसा मुल्क से बाहर रखते हैं, और एक हम है पर्चियों के हाथ डाले बैठे।
0: हाँ जी, किस सार की बातें हो रही हैं भाई?
4: गुड मॉर्निंग।
0: इधर है। मॉर्निंग जी।
5: वो शकील भाई कह रहे थे कि तेरी शादी है ना, तो दूल्हे को नोटों के हार डालेंगे।
0: कमाल है यार शकील भाई, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो और आर नोटों का, हीरों का, आरपेनों का बता रहा हूँ मैं।
3: क्यों नहीं, क्यों नहीं।
6: The famous Prince Sheikh Sultan Al Baklava has graced Cape Town.
7: His Highness ki tashreef aavri kisi mulk ke liye sirf fakhr ka baais hi nahi hoti balki betahasha zar-e mubadala bhi saath lati hai. Khawateen o hazra, jaise ki aap apni screens par dekh sakte hain ki is waqt Sheikh Sultan Al Baklava Cape Town pahunch chuke hain aur unke saath aaya hai nihayat hi beshkeemat o nayab unka ye golden kamo. जी हाँ, ये पॉट सिर्फ सुनहरे रंग का ही नहीं है खवातीन हजरात, बल्कि ये बना है 24 कैरेट खालिस सोने से। इसकी मालियत का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस पॉट की एक खास बात ये भी है,
5: कमाल है यार, ये पॉट शेख सुल्तान हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये सोने पे अगर है
3: लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ये पीछे सोने का कमोट लेकर।

0: thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: पहले कि हम कस्टमर को ढूंढते, कस्टमर ने हमें ढूंढ लिया।
1: अच्छा है ना, फालतू की लुक्का छुप्पी से बच गए। अब उसका पॉट उसी को बेचेंगे।
0: एक दफा तो मूतूंगा।
2: घर आई लक्ष्मी पे मूते नहीं है रे।
1: ए सिंगाड़े उठाए से अंदर रख, फालतू में दोबारा पैक करना पड़ेगा।
3: ओ यार,
4: हेलो बेबी, और तुम्हारा ड्रेस मैं इधर ही ले आया हूँ घर पे। अब ये ही आके ट्राई कर लेना, ताकि सबसे पहले दुल्हन को दूल्हा जी देखें, हैं?
5: Moon, listen to me. There's been a situation. शेख का पॉट चोरी हो गया, पूरे स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
6: वो सोने का कमोड?
5: हाँ, मेरा फोन बंद रहेगा, घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो घर पे बता देना प्लीज।
6: हाँ बता दूंगा।
4: अच्छा सुनो, ओ फरहान, ओ सुन तो सही। ओ वो शेखल बकलावा था ना, उसका सोने का पॉट और चोरी हो गया।

0: नैना ने कहा था ड्रेस देखना, हमने खोला तो ये ये ये निकला।
1: ये क्या मून?
2: परी ने तो ड्रेस ही दिया होगा, ये कहां से आ गया? कोई कंफ्यूजन है।
1: सोना,
0: ओ सोना,
1: सोना।
2: फोन पे कह रही थी कि पॉट चोरी हो गया है, पुलिस आई हुई है, अब उसका फोन बंद जा रहा है। पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है?
3: मैं न्यूज़ में देखती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो।
1: गुड आइडिया, लगाओ जल्दी।

0: प्रेशर से फट ही ना जाए।
1: ए, तेरे हगने का बंदोबस्त हो गया है। आई मीन वी फाउंड योर पॉट।
2: गुड जॉब।
0: एक घंटे के अंदर अंदर नेल्सन बॉलीवुड पहुंच, पैसों के साथ।
3: गोल्डन कमोड चोरी हो गया है।
4: लगा फोन?
5: नहीं, उसका फोन अभी तक ऑफ जा रहा है। बड़ी किसी मुश्किल में ना हो यार। सुनो, मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ। उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये बॉटम तक कैसे पहुंचा।
6: मर पाएगा, पागल हो गया क्या तू?
5: क्यों?
6: तू पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएगा और वो मान लेगी? अरे पॉट के साथ साथ हमें भी उठा के ले जाएंगे।
5: और ये पाकिस्तानी पुलिस थोड़ी है।
6: वही तो, पुलिस पाकिस्तानी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी है। और ऊपर से मुसलमान भी। चोरी के साथ साथ दहशतगर्दी का केस भी डाल देंगे। दुनिया में सबसे पतली गर्दन किसकी शकील भाई है? सारे फंदे हमें ही फिटाते हैं। दुनिया में जब भी कुछ बुरा होता है सबसे पहले हमें ही तो उठा के ले जाते हैं। देखो हम सब परेशान हैं, मिलके कोई हल निकालते हैं।
0: हाँ, ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको समंदर में फेंक देते हैं, ओसामा बिन लादिन की तरह।
4: नहीं, और... नहीं, नहीं, नहीं, एक सेकंड। घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। हम इसको गार्डन में दफना देते हैं। फिल्मों में वैसे भी यही होता है।
6: वो लाश को दफनाते हैं नैनो, ये कमोड है।
5: ओ यार, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार। ऐसा करने से क्या होगा? और पुलिस तो फिर भी ढूंढ लेगी इसको, और कुत्ते लेके पहुंच जाएंगे वो इसको तलाश करते। देखो, हमें ये पॉट किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचाना ही होगा।
6: एक आइडिया है, एक आइडिया है इस पॉट को पुलिस तक पहुंचाने का।
0: क्या?

0: कौन? अरे कौन दे, कौन? अरे कौन दे दो?
1: ये लो पांच।
0: अरे पाकिस्तानी नहीं चाहिए यार। हेलो
2: हेलो,
0: पॉट नेल्सन बुलेवर्ड में है, आके ले जाओ।
2: व्हाट,
3: अबे अंग्रेजी में?
0: गोल्डन पॉट इज एट नेल्सन बुलेवर्ड, कम कम जल्दी जल्दी,
3: गेट इट गेट इट,
0: कम कम गेट इट।
2: हु इज दिस?
0: ना मालूम अफराज।
2: व्हाट,
3: चलो गया।

0: Чех.
1: करने के लिए तो ये भी ठीक है, फिर साले शेख को सोने का पॉट क्यों चाहिए? इतने सारे सोने से कितने लोगों की जिंदगी बन सकती है यार? बन तो हमारी भी सकती है। शकी भाई उठो, शकी भाई।
2: कौन?
1: चलो चलो उठो। अरे उठ जाओ ना।
2: कार लेके जा रहा है यार।
3: Hold it, buddy. Not so fast. I want to see what's inside.

0: the fuck's this? Where's the pot?
1: Pot to isi mein tha. Koi gadbad hai.
0: Bloody cheaters.
2: Sheikh, hamari baat suno, Sheikh.
3: You call the police? Bastard, kullu harami.
4: Fat pig.
5: क्या कर रहे हैं यार, पुलिस आ जाएगी।
1: किस्मत दूसरा मौका दे रही है भाई, तब दिल्ली आ सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। इतना रिस्क लेना पड़ेगा ना। चलो चलो, हिम्मत करो।

0: Good morning, ladies and gentlemen. I understand and appreciate that you've all been extremely anxious about this case. So it is my pleasure to announce that after a grueling investigation, we have managed to recover the pot.
1: After a day or two with our forensics team gathering evidence, it will be returned to Prince Sultan immediately. I would also like to take this opportunity to make mention of our detectives.
2: Oh, yaar, shukr hai, yaar. Ab mil gaya pot police ko. Bahut acha. Aur tera idea kaam kar gaya, farhan meri. John, oh, Shakil bhai, mubarka. Oh, chuppiyan, de, chuppiyan. Bhai, bhaji, bhai. Okay, okay.
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
4: सुनिए आप लोग नाश्ता तो कर लें।
3: हाँ हाँ
2: और नाश्ते ही बाहर करते हैं।
4: मैकडॉनल्ड्स चलते हैं।
2: ओए ओके हो गया फिर तो कौन है
3: ये क्या हो गया। शरीफ भाई चुप हो जाओ।
4: पता चला पॉट मिल गया।
2: पता तुझे क्या लग रहा है मैं अपनी शादी की खुशी में नाच रहा
3: हूँ। शादी में मैंने खुद रखा था। पुलिस कैसे लगी।
4: मुझे बताओ अब अगर जेट लैग उतर गया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बहुत मजा आ रहा है। यहाँ भी क्या कर रही हो। ये तुम क्या कर रही हो। हेल्प करा रही हूँ। पर हम तो नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे हैं।
2: ओ,
4: तो पहले क्यों नहीं बताया। आई एम आल्सो स्टार्विंग। चलो चलो
2: चलो चलो ए पिया सेब आओ जाओ आओ बेबी कांट वेट। चलो आओ शकील भाई आओ प्राण जल्दी
4: चलो
3: चलो चलो चलो
4: नैना मेरे साथ चलो तुम वहीं से घर चले जाएंगे। ठीक है
2: सी यू देयर टेक केयर।
5: पॉट पुलिस तक कैसे पहुंचा।
6: बॉस कसम से मुझे कुछ नहीं पता। बॉस
5: पता तो तुझे है और तू बताएगा भी।
6: नो बॉस नो नो बॉस नो।
7: मुकतलुल नदाल आर ईसल कुरूफ अलबला।
8: ये क्या बोल रहा है शेख।
7: यू ब्लडी खराबी।
8: गाली नहीं शेख। देखिए सब में कुछ लोचा है। अपने को सेटल करने दे।
7: सेटल तो तुम किया जो पॉट पुलिस को दिया।
8: शेख पॉट पुलिस को हमने नहीं दिया। वैसे भी तुझे पॉट चाहिए था ना। वो हम देते या पुलिस क्या फर्क पड़ता है।
7: फर्क पड़ता है। पॉट में डायमंड्स थे।
8: डायमंड। अबे कौन से डायमंड्स।
7: बिग डायमंड्स जो मैंने तुझसे खरीदा और पॉट में रखा।
8: शेख चूतिया मत बना यार। पहले तेरा पॉट चोरी हुआ उसमें हीरे आ गए। थोड़ी देर बाद तू कहेगा कि तेरी 150 बीवियां और 500 बच्चे भी उसमें थे। हम मान लेंगे क्या। अबे तेरा पॉट है या पोतने का कान जो हर चीज उसमें घुसने जा रही है।
7: घुसेगा तो पुलिस वाला अगर पॉट से हीरे निकले। अगर नहीं निकले तो मैं ऐसा घुसाऊंगा कि हीरे तुझसे निकलेंगे। समझा।

0: और तुम्हें हीरे थे और हमें पता ही नहीं था। तेरी
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल।
0: क्या?
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल, क्योंकि उसी ने हमें बताया है कि पॉट में हीरे हैं। अब ना उसे हीरे मिलेंगे और ना पॉट। फिर देखते हैं कौन किसके अंदर घुसता है।
2: क्या हुआ?
3: वो यार मून, हमने तुझसे कुछ छुपाया है।
2: ओ, क्या छुपाया है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है?
3: अब हम अमीर नहीं रहे यार। हमने तुझसे झूठ बोला था।
4: हाँ यार, हमारे साथ वही हुआ है जो हमने बैंक के साथ किया था।
3: फैक्ट्री चल गई अनमोल, फैक्ट्री चल गई।
4: हाँ यार, हमारे तो दिवालिया निकल गया यार। फैक्ट्री के जलते ही हमारे पैरों से जमीन और सर से छत निकल गई। एक रात में सब खत्म हो गए यार, सब खत्म।
3: हमारे खाने के लाले पड़ गए यार। कसम से 3 दिन के बाद फ्लाइट में खाना खाया
4: और मैंने तो यार।
3: कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और अचानक से एक दिन तेरा फोन आया दोस्त।
2: ओ यार, तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
3: क्या बताते तुझे यार, क्या बताते? हमने सोचा तू इतना खुश है, अपना दुख बता के तेरे रंग में भंग क्यों डाले हम।
4: हमारे पास तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है यार। तू इंसान नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता?
3: हाँ फरिश्ता।
2: ओ यार, तुम लोग परेशान नहीं हो यार, हम दोस्त हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। और तुम लोग का जब तक दिल करता है मेरे पास रहो यहाँ पे। मैं हूँ ना, सब देख लेंगे। हैं शकील भाई,
4: क्या बात की है यार।
3: मोन, हमने तुझसे कुछ और भी छुपाया है।
2: अब क्या छुपाया है वो भी बता दे।
3: वो पॉट था ना, वो सोने का था।
2: और ये बात पूरे साउथ अफ्रीका को पता है फरहान। चल आजा।
3: वो पॉट हम रात को वापस ले आए थे,
4: मगर अब वो पुलिस ले गई है। हाँ।
2: कहाँ से?
4: मेरा ख्याल है गाड़ी में से निकाल के।
2: वो गाड़ी में से? साले सीट के साथ थी मैं। क्या बोले थे? ओ फरिश्ता, ओ साला चूतिया बना मुझे गाड़ी के अंदर मुझे। ये साल बड़ा बहुत साले हकले।
3: अरे क्या कर रहा है शकील भाई है यार, शकील भाई है।
2: और शकील भाई की बहन को चल। ओ अपना दिवालिया निकलवा के मेरा निकलवाओगे?
3: सही।
2: तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? कह दो ना, मजाक कर रहे हैं?
5: कौन सी मनहूस गली थी जब मैं तुम लोगों को यहां ले आया और डायन भी साल घर छोड़ देती है? जल गए है ना, जल गए मेरी खुशियों से, जल गए।
3: अरे
5: झाड़ के किया तूने झाड़।
3: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
5: तू क्या कह रहा था?
3: क्या
5: तू क्या कह रहा था? हैं, रंग में भागी डालना चाहता और डाल दिया, और तूने रंग में भागी डाल दिया यार। और कीड़े पड़े तुम दोनों को,
3: टारगेट
5: के लिए मार जाओ तुम लोग।
3: क्या बात कर रहे हैं यार।
5: बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर।
6: आ रहे हैं।
7: कितनी अच्छी जगह है ना।
8: हाँ?
7: हाँ? हाँ? हाँ? जगह अच्छी है। यू ओके?
2: या
8: थैंक यू।
9: कंग्रेट्स
8: फॉर व्हाट?
9: They found the pot. I can see you work at the Grand Heritage Hotel.
8: Oh, yeah. Thanks.
9: You're welcome. Enjoy your breakfast.
8: Pure Cape Town ko pata hai yaar. Hotel ki reputation to gayi. Pata hai kitni police aayi thi?
7: Acha?
8: Pure staff ko rok liya tha. Sari raat investigation ki hai. Lag raha tha jaise hum hi chor hain. Ullu ke patthe. But you guys have no idea yahan ki police ka. बहुत ही तेज है। Can you imagine? एक रात में पॉट ढूंढ लिया।
7: Wow.
8: I'm telling you, next 24 hours में तो चोर को भी पकड़ लेंगे। फिर देखना कैसा जूस निकालते हैं उसका।
7: निकालना भी चाहिए।
3: Please help us. We are Pakistani.
10: Currently the most wanted criminals by the police.
7: क्या कर रहे हो फरहान?
3: Sorry.
8: You okay?
3: Sorry.
9: Hope you're enjoying your breakfast.
7: I'm loving it.
8: Moon, bye.
6: Okay.
3: अरे
2: यार गलती हो गई, माफ कर दे। हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं।
4: हम आज ही चले।
5: हाँ सही बात है, बहुत अच्छे। और सारा कचरा करके हैं? और मेरे पीछे पुलसे लगा के अब कटने के चक्कर में हो? एक इंच नहीं ले दूंगा तुम लोगों को यहाँ से।
6: Okay, I'm following.
5: और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ना, तुम दोनों
6: तुम्हारी खुशियाँ बांटने आए थे।
5: कौन सा ड्रेस?
8: मेरा वेडिंग ड्रेस।
5: वो शादी वाला।
3: अबे ये तो गंदी फिल्मों का हीरो लग रहा है।
6: Your tire is flat. Your tire is flat.
5: Oh, thank God.
6: What?
5: Thank you.
3: Thank you.
5: Thank you.
6: Have a nice day.
5: You too. सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। हाथ ना लगाई गाड़ी को।
2: तेरी खराब है।
5: ओ फरहान।
3: शकील भाई।
4: ओ व्हाट टू ये।
2: तो फिर पुलिस को क्या मिला?
11: Sir, excuse me, sir. So, what are you talking that we have the pot?
12: To confuse the thieves. Get them relaxed, get complacent, and then we go after them hard. They think they're so smart. They don't know who they're dealing with.
13: साला लगता है तुम लोग का भी कोई बाप निकला है। पुलिस को कोई पॉट नहीं मिला। इट्स अ ट्रैप।
1: अगर पॉट पुलिस को नहीं मिला और अपने पास भी नहीं है तो ये पॉट है कहां?
14: बॉस गिव मी वन चांस बॉस। मैं पता लगा लूंगा बॉस कि पॉट कहाँ है।
11: पॉट यहाँ है, और पुलिस को जो भी मिला है हमें एक और मौका मिला है। सोच मून, इतना सारा सोना हमेशा के लिए गलाजत का ढेर बना रहेगा, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो सैकड़ों लोगों की किस्मत चमक सकती है।
2: क्या?
11: अगर हम ये पॉट रख लें, हम इसे बेच के दोबारा फैक्ट्री ले सकते हैं, उसमें हजारों लोग काम करेंगे यार, उनके घरों के चूल्हे जलेंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। अरे लोगों के पास खाने को नहीं है यार, खाना तो क्या पीने का पानी तक खरीदते हैं यार लोग, और ये सलेच्चे, इनको हगने के लिए अरबों रुपए चाहिए। अबे जब लगेगी तो ना जंगल देखेंगे ना बिस्तर, कहीं भी पूत लेंगे यार। देख ये अमीर लोग, ये लोग अगर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी यार। मून सोच,
15: मून फरान ठीक कह रहा है यार।
11: कुछ बोल यार।
2: इसको रखेंगे कहां पे?

0: कौन है?
1: बॉस चील लोग है। आई हैवन्ट सीन देम बिफोर। देसी लगते हैं।
0: एक काम कर, उठा ला। हम भी तो देखें ये नामालूम अफराद कौन है जिन्हें हम नहीं जानते।
1: ओके।
2: फरान उठना यार, उठो यार, मेरे पेट में पथरी नहीं है।
3: लाउड वाली दाल नहीं खाई जहील भाई, इसलिए।
2: अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पथरी नहीं है, हीरे हीरे असली।
3: किस सटिया गिर गए जहील भाई सुबह सुबह?
2: अरे चल के देख लो।
3: क्या बकवास है यार जहील भाई, यार छोड़े गए यार जहील भाई, क्या यार मुंह समझाओ यार, क्या है
2: ये? देखो अबे देख
4: मोहन, ये देख बहुत तरीक है। शकील भाई क्या खाया था?
2: अरे यार तुम लोग ही बुफेट में ले गए थे, सब कुछ ही खा लिया था मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था।
4: लग तो असली रहे।
2: हाँ
4: तू निकाल ना।
5: थैली लेके आता हूँ, थैली लाता हूँ, ठहरो जरा।
4: थैली
5: थैली थैली थैली थैली थैली थैली थैली थैली थैली थैली थैली
4: थैली थैली थैली थैली थैली थैली इधर तो नहीं है। आपको मिली?
2: अबे छोड़ो, घर में थैलियां कहाँ मिलेंगी? अरे वो तो अम्मियां होती हैं जो थैलियां छुपा के रखती हैं।
4: अरे शकील भाई बातें कम करो यार, ढूंढो यार।
2: अबे ढूंढो ओए। अरे कराची होता तो सड़क से उठा लेते। अबे
4: निकल।
1: सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था,
6: हीरे देने वाला बुड्ढा पहली बार देखा है।
2: ओह अच्छा हुआ ऑपरेशन नहीं करवाया, वरना सारे हीरे डॉक्टर ले जाता।
4: शकील भाई फिर आएगी क्या?
2: अरे खिलाओगे तो आएगी ना, तेज गांव की तरह आएगी। इसमें क्या मसला है, ये क्या कोई रॉकेट साइंस है?
4: मैं पकाता हूँ, मैं पकाता हूँ।
5: शकील भाई
4: मैं पकाऊंगा आपके लिए। चावल चावल तो खाओगे ना? चावल का जरूरी होती है।
2: खिलाओ।
4: क्या खाओ? शकील भाई केला खाओगे? केला?
2: अबे एक छे आना बंद हो जाएगी, दो खिला।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी

0: शकील भाई तुम्हारा पेट है या पॉलिटिशियन, सब कुछ खा के भी कुछ नहीं कर रहा।
1: ओए आ रही है,
0: आ रही है, आ रही है शकील भाई।
1: नहीं यार मिस कॉल थी।
2: माश की दाल है तेरे पास?
1: अब अबे चने पड़े हैं तेरे पास?
3: और शकील भाई एक बार जमाल को टखा लो, सारे ही रेबार आ जाएंगे। हैं
0: आ गई शकील भाई, कर ली?
1: अबे कर रहा हूँ यार, करो।
0: हाँ करो करो आराम से खुल के। हाँ
4: पता है क्या मोन, ये हीरे ना तूने बड़ी मेहनत से निकाले, ये सारे तू रख ले, अब जो भी निकलेगा।

0: and let the Lahava tea serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. The Lahava tea. 647-295-7861. Then let the Lahava tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसेस आगर रिचवे
1: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसेसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: वो मैं रख लूंगा।
1: पागल समझा तूने मुझे है? और इस दफा ज्यादा खाना खाया उसने, इतना ही रहने के लिए सारा राशन भी खत्म कर दिया ऊपर से उसने।
2: शकील भाई कर ली।
0: शकील भाई क्या हुआ? हुई
2: शकील भाई हुई।
3: अबे लगता है जितने थे वो पहले निकल गए।
0: अच्छा झूठ बोल रहे हो, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, इसने छुपा लिया। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो, मुझे देखना है अभी। खोलो अभी, तू क्या कर रहा है? देख रहे हो? खोलो दरवाजा, तू छुपा लिया। शकील भाई, शकील भाई ये क्या?
1: क्या बोल रहा था तू? इस बार जो भी निकला वो तेरा। ले ले ले ले ले ले।
0: ये तो चले गए।
1: पाइप पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।

0: पीछे तो गड्ढे इतने साफ हैं।
1: हाँ यार, मैं भी पहली बार ही अंदर आया हूँ। इनमें से हमारा भाई कौन सा, ये कैसे पता चलेगा?
0: शकील भाई, आप सुन के बताओ ना, आपको तो अपनी का आइडिया होगा।
2: अबे मैं क्या कुत्ता हूँ जो सुन के बताऊंगा, या मैं निंजा टर्टल हूँ जो गटर।
0: अच्छा, लड़ो लड़ो, हीरे ढूंढो, चलो पाइप ढूंढते हैं।

0: There's nobody. पर पार्ट मिल गया बॉस।
1: उनको छोड़, पार्ट लेकर आ।

0: रिटर्न मिल गया।
1: क्या क्या मिल गया?
0: और पाइप मिल गया हमारा।
1: अबे मिल गया शकील भाई, पाइप मिल गया। निकल निकल निकल जल्दी कर जल्दी कर। देख के हाँ देख के
2: शकील भाई क्या
3: अबे क्या हुआ?
1: देख रहे कि नहीं है? अबे क्या हुआ
4: यार शकील भाई?
1: हाँ
4: यार लगता ही रे तो आगे निकल गए।
1: कैसे आगे निकल गए? ठीक से देख।
0: और तू देख ले आगे यार, तू अपनी नाक साले।
4: पहले इतनी बदबू है यार,
1: हट यहाँ से। बदबू है यहाँ पे,

0: सुनो ओए इनको रखें कहाँ पे?
1: अमन तू यही रुकना, मैं दोबारा जाके फ्रेश करता हूँ, यही रुकना, चल चल चल चल।
0: अरे चुप चुप भाई,
1: चल चल आराम से देखिए।
2: आजा
1: शकील भाई।
2: ओह आए। हाँ।

0: भैंस, अगर पॉट शेक का था तो हीरे भी तो शेक के होंगे।
1: और जब उसको वो हीरे नहीं मिलेंगे तो वो फिर यहां पे आएगा।
0: सही कह रहा, हमें निकलना चाहिए यहां से।
2: ओ, मगर जाएंगे कहां?
3: Good afternoon, officer.
4: Good afternoon. Just want to flip that trunk for me.
5: Yeah.

0: तो शकीब भाई
1: अच्छा बेटा इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी, इतनी ज्यादा बरी बना ली तुमने। हाँ
2: वो अपनी खुशी से लाए भाई, पूरे खानदान के लिए गिफ्ट्स होंगे ना, सिर्फ बरी थोड़ी होगी है ना।
0: देना अब बरी में तो सिर्फ ये ज्वेलरी आंटी जी अगली
2: ओके
1: अच्छा
3: और ये भूल गया, ओ हाँ ये कौन देगा,
0: ये भी है, ये भी, ये बड़ा कीमती आंटी जी तो संभाल के
3: प्लीज।
1: उफ इट्स वेरी ब्यूटीफुल
0: है ना,
1: डोंट वरी बेटा, आई पुट इट इन माय सेफ।
2: वेरी गुड वेरी गुड, और इनका सेफ तो इतना सेफ है कि उसका कोड आज तक मुझे भी नहीं पता।
0: लो कर लो बात बाजी बात।
3: शेख भाई
1: यही रहना है,
3: बोलो ना बताओ ना
2: इसका। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं
3: जी? हम तो आ रहे हैं।
2: हाँ कहाँ से?
4: इसका मतलब है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं।
1: लेकिन आप लोग तो आ चुके।
4: यही तो हम आपको बता रहे हैं आंटी कि हम आ गए हैं।
2: मैं समझा ना,
4: दरअसल हमारे यहाँ रस्म है कि शादी से दो दिन पहले लड़के वाले लड़की के यहाँ रहने के लिए आते हैं।
1: मून बेटा
0: जी,
1: ऐसी किसी रस्म के बारे में आपने पहले तो नहीं बताया।
0: होता क्या ना कि लड़का जब
3: ये भी तो रस्म है आंटी, ये भी तो रस्म है, बताना नहीं होता, बताना नहीं होता आंटी। अगर बता देते हैं तो दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक बहुत बुरे तरीके से बीमार हो जाता है आंटी, और कभी कभी तो
1: नहीं बेटा बताओ बताओ
3: आंटी, ऐसे मुंह से निकली हुई बात भी तो कभी कभी सच हो जाती है ना। वैसे पहले आंटी मैं इनमें से किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था, बिल्कुल नहीं, लेकिन जब मैंने नहीं माना था याद है आपको, ऐन रुखसती वाले दिन नैना को चिकन पॉक्स।
1: अच्छा किया तुम लोगों ने बता दिया, यू ऑल मस्ट स्टे हियर, मस्ट, आई इंसिस्ट।
5: क्या बात कर रही आंटी, पॉप इनकी बातों में आ गई, इनकी, आई डोंट बिलीव ऑल दिस, नो नो नो,
1: क्या
2: मून बेटा, बड़ों की बात को मानना चाहिए, और फिर आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो फिर यू मस्ट स्टे हियर। यस
5: एग्जैक्टली,
4: हां मून एग्जैक्टली, देख ले फिर चिकन पॉक्स। हां
3: आंटी चाय बहुत अच्छी बनाती है आंटी,
1: ओके
0: जी बड़ी,
1: ये खाए ना आप लोग बिस्किट,
4: वन बिस्किट
1: ये ले,
4: वन ओनली
1: चिकन पॉक्स।
0: जी जी जी,
6: क्या हुआ ठाकरे?
7: हाँ बॉस, बॉस पूरी सस्ते के तो पार्ट
6: साले सिंघाड़े, हीरे कहाँ हैं, हीरे कहाँ हैं
7: बॉस, हीरे तो पार्ट में होंगे।
8: हीरे पार्ट में नहीं है,
9: Where the fucking diamonds?
6: पहले तू कह रहा था हीरे पॉट में, अब कह रहा है कि पॉट में नहीं है, खेल रहा है क्या? तू जानता है कि हीरे हमारे पास नहीं है,
9: तो ढूंढो, या तो मैं हीरे लूंगा या तेरी जान, जब इस घंटे तेरे पास, अदरवाइज खलास।

0: चलो ना।
1: ले जा रही हूँ नैना,
0: पहले मेरी बात सुनो।
1: अच्छा देखो तो सारे।
0: नहीं ना, इधर आओ।
1: क्या हुआ?
0: सुनो तो सही, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नई नई कहानियाँ बना रहे हो तुम? कब हुए थे मुझे चिकन पॉक्स? चल क्या रहा है फरहान?
1: नैना तुम्हें नहीं पता, बहुत मसला हो गया।
0: कैसा मसला?
1: अरे ये मोहन के हालात तो बहुत ही खराब है, हमसे भी ज्यादा फुकड़ है।
0: क्या?
1: हाँ तुम्हें पता है उसने हमें यहाँ टिकट देके क्यों बुलाया?
0: क्यों?
1: क्योंकि उसको लगा हमारे पास पैसे हैं, हम कर्जा चुकाएंगे उसका।
0: है?
1: हाँ बहुत खतरनाक लोगों से कर्जा लिया हुआ उसने। वो तो घर पे आ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले। अब कहाँ जाते, होटल के पैसे तो है नहीं ना, तो दो तीन दिन यहीं गुजार लेते हैं, शादी हो जाएगी फिर निकल जाएंगे, फिर मोहन जाने और वो लोग।
0: बेचारी परी।
1: क्या बेचारी परी, हमें अपनी पड़ी है बेचारी परी, बताना नहीं किसी को। चलो चलो सब देख।
0: फरहान नहीं मुझे ये तो बताओ।
1: रहने दो ना, वो देखो सब। हाँ बहुत आला, अरे हमारे नाचो नाचो।
2: अगर हीरे पॉट में होते तो पुलिस शेख को नहीं छोड़ती, इसका मतलब है जिसने हमसे पॉट उड़ाया हीरे उसी के पास है।

0: Moon.
1: तुम क्या कर रही हो इधर?
0: एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी।
1: करो बेबी।
0: ज्यादा चिपको नहीं।
1: तू शांति से इनकार तो नहीं कर रही? वो क्या होती है वो लास्ट मिनट एंग्जायटी, वो तो नहीं हो रही ना बेबी?
0: अरे नहीं यार, इंपॉर्टेंट बात है। वो शेखल बकलावा है ना, उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना है।
1: क्या कह रहा था वो?
0: वो किसी को कह रहा था कि जो पॉट है ना, उसमें हीरे थे। और अब हीरे नहीं है।
1: ये बात तुमने पुलिस को तो नहीं बताई ना बेबी?
0: नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बता देनी चाहिए।
1: क्या पुलिस को थोड़ी बता रही है? पुलिस को नहीं बताते बेबी? ये शेख लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, हैं? तो तुमने ये बात तो नहीं बताई ना किसी और को?
0: नहीं।
1: भूल जाओ, हैं? बिल्कुल ही भूल जाओ। और दो दिन में शादी है हमारी, तो क्यों बिला वजह हम हीरो के चक्कर में पड़े?
0: लेकिन मैं सोच रही थी
1: कि नहीं सोचो ना, तुम ना सोचो। अब तुम जाके वो लो, वो ब्यूटी स्लीप लो, हैं? वो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे आपको। जाओ शाबाश।
0: Okay.
1: सो जो जाके। गुड नाइट, बाय।
0: आर यू श्योर कि नहीं बताना चाहिए?
1: यार मैं करता हूँ इन लोगों का कुछ, हैं? आप सो जो जाके। ओके
0: ओके ओके।

0: मैं तो कहता हूँ हीरे बेच देते हैं।
1: और बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास होंगे। हीरे तो आंटी के पास रखवा दिए थे।
2: तू तो ऐसे कह रहा है यार जैसे 10 साल बाद शादी। अरे कल शादी है, कल मिल जाएंगे हीरे, परसों भेज देंगे।
1: एक काम कर दो, उधर आ, नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं, वही हीरे ले लो, हीरे ले लो हमसे।
0: अरे
1: और हीरे है खीरे नहीं है जो एमवी बिक जाएंगे। करोड़ों का पॉट है शेख का, करोड़ों का, तो हीरे कितने के होंगे? एमवी चलते फिरते कस्टमर मिल जाएगा। मेरी बात मानो, चुप करके ना शेख को हीरे वापस कर देते हैं। जान भी बच जाएगी और इज्जत भी, सुकून की जिंदगी गुजारते आगे की। बहुत हो गया यार एडवेंचर, बस सब।
3: मून सही कह रहा फरवान, बहुत हो गया एडवेंचर।
0: ठीक है यार, हीरे शेख को वापस कर देते।
1: हाँ।
0: लेकिन मुफ्त में नहीं।
4: तुम मून को कब से जानती हो?
5: इट सीम्स लाइक आई हैव नोन हिम फॉरएवर।
4: तो तुम मून के बारे में सब कुछ जानती हो?
5: ऑफ कोर्स यार, और वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन हाँ एक बात नहीं जानता।
4: वो क्या?
5: तरा,
4: ये क्या है?
5: उसके घर की चाबी। एक नंबर का भुलक्कड़ है वो। मैं कब से कह रही हूँ मुझे मेरा शादी का जोड़ा ला दो, मेरा ड्रेस ला दो, लेकिन ला के नहीं दे रहा। अब क्या मैं शादी का ड्रेस शादी के बाद पहनूंगी?
4: परी, हम मून के घर नहीं जा सकते।
5: हम मून के घर आ गए हैं।
6: क्या यार, हम बस आ गए हैं, बस थोड़ी सी देर,
5: दो मिनट लेंगे
6: परी,
5: बस ड्रेस उठाएंगे और हम अभी चले जाएंगे।
6: परी
5: बस 2 मिनट यार, 2 मिनट लेंगे, चलो चलो।
6: परी मेरी बात तो सुनो।
5: अरे यार अभी हम निकल जाएंगे, बस 2 मिनट,
6: हम बाद में।
4: मैंने बोला था ना कि बाद में आ जाते हैं।
3: सोना और हीरे दोनों एक साथ थे, औरत ने तो हाथ मारना था।
7: साला, लगता है लाइफ लॉन्ग ज्वेलरी बनाने का प्लान था।
3: चले
4: जी।
0: अपने कपड़े और जेवर ठीक कर लो।
3: प्लान क्या है?
0: पता नहीं।
3: हाँ?
0: सोचा नहीं ना।
1: प्लान के आगे पागल हो
0: गया। अरे रिसेप्शन पे चल के शेख का रूम नंबर किसी तरह निकालना है। अपना सारा जनान अपन इस्तेमाल करो, ठीक है? चल।
8: Hello, beautiful.
9: I'm here to see Sheikh Baklava. Could you please tell me where the princess is staying?
0: Selfie.
9: Sheikh Baklava. Don't shoot, please. I'm just a big fan. You're so gorgeous. Can I take a selfie with you, please? Just one. Please make a bout. You're so lovely. I can't believe this.
10: Mr. Baklava, you're so handsome.
9: He's right. Oh, she's right.
10: And so big.
7: Too big. You are too what?
9: Hot.
3: Shukran. Shukran.
9: Naughty Sheikh.
3: Why don't you come to my room?
9: No.
3: I will treat you with some baklava. It make your life more flavorful.
7: Oh, I love all kind of flavor.
10: And I love baklava.
9: You're so sweet.
3: Okay, come with me.
9: Let's go.
3: खली
1: It's poison. Chup, chup. Shor mein jayega na, to daba denge andar.
11: If you want your diamonds, call on this phone. Okay?
12: Tezabi puppiyan le raha hamari.
13: Bye, Bakku.
12: Sale ka phone bhi sone ka yaar. Chalo, chalo.
4: हम किडनैप हो गए हैं परी,
5: और अब हमें रेप होने से बचना होगा. तुमने यूट्यूब पे सेल्फ डिफेंस वीडियोस देखी है ना?
4: हाँ, नहीं.
5: ओके, देन जस्ट फॉलो मी.

0: बच्ची है, स्टूपिड है ना थोड़ी सी। पता है क्या, आप लोग इतने डिसेंट लोग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि किसी लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। पता है क्या, आप लोग हमें प्लीज जाने दें, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, है ना। मून आपके सारे पैसे वापस कर देगा, इजी सिंपल, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन।
1: अरे चौपाटी की पानी पूरी, पर हमें तो पैसे चाहिए ही नहीं, छिपकली।
2: हीरे कहाँ हैं?
3: साला नाम बकलावा और इतना कड़वा, दिल कर रहा तेजाब से कुल्ली कर लूं।
4: तू एक काम कर, तू हार्पिक पी ले।
2: यार मैं तो कह रहा हूँ कि यार इसको चार्ज करो, बकलावा फोन करेगा तो ये बंद।
3: अरे जानबूझ के बंद किया शकील भाई, जानबूझ के बंद किया है, जरा उससे तड़पने दो, थोड़े रेट बढ़ाते हैं। कितने पैसे मांगे?
2: नहीं मैं कहता हूँ पैसे वैसे छोड़ो, एक दो तेल के कुएं मांग लेते,
4: एक तो जहाज भी मांग लेते,
3: दो चार महल भी मांग लेते, 70-80 टन सोना भी मांग लेते। ये शेख है आमिल आकर, सिर्फ कैश की ऑप्शन है हमारे पास, कैश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों मुन, सही कह रहा हूँ, तू बता।
4: देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से जो भी देगा ना चुप करके रख लेंगे, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास।
3: अबे हीरे बेच रहा है सिग्नल पे फूल, जितने खुशी से दे देगा रख लेंगे। अरे भाई रहने दे यार तू, मैं खुद ही कर लूंगा, इस झील के बीच में तू मत पड़, तेरे जितने पैसे होंगे ना तेरे मुंह पे मारेंगे एंड में।
2: हाँ तेरे मुंह पे मारेंगे गरीब लोग।
4: हेलो,
5: कल सुबह 10 बजे अटलांटिस फैक्ट्री आ जाना।
4: कौन बात कर रहा है, कहाँ जाना?
1: क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं।
3: नैना,
2: नैना,
3: नैना,
2: बड़ी। अब लड़कियां हमारे पास, अब जल्दी से गूगल खोल और यहाँ पहुंच।
1: ले आ लौंडियां।

0: अब वहां से कैसे निकलवाएंगे यार?
1: तुझे तो पता होगा ना कि आंटी लॉकर कहाँ रखती है। मैं सोच रहा था कि
2: अबे जेम्स बॉन्ड, तू अपनी प्लानिंग बंद कर दे यार, तेरी मेहरबानी। बच्चा अगवा करवा दी यार तूने। मोन तू सोच यार, मैं भी सोचता हूँ।

0: अब मैं कुछ कहूं, नैना भी उन लोगों के पास है शकील भाई।
1: इन्हें ऊपर रख देना ठीक है, और फिर रूम की कीज मुझे दे देना। थैंक यू।

0: इज हर फोन स्विच्ड ऑफ।
1: कोई आंटी को देखा भी? आंटी जी कब से ढूंढ रहा हूँ आपको।
0: और मैं परी को कब से ढूंढ रही हूँ। परी परी
1: हाँ परी परी नहीं भेजी आपके लिए। डायमंड की रिंग है, संभाल के रखना सेफ के अंदर।
0: लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? फोन भी बंद आ रहा है उसका।
1: वही आंटी जी, वो लड़कियों की लास्ट मिनट शॉपिंग यू नो। आ रही है, आ जाएगी
2: बस। तो
0: उसे कहो मुझे फोन करे।
1: हाँ जी।
3: आंटी को पता लगने से पहले परी को घर लाना होगा।
1: रुको, इसको बंद कर।
0: कौन है?
4: रिंग रख दी सेफ में आपने?
0: बस दो मिनट देना बेटा।
4: टेक योर टाइम जी।

0: दो, फेफड़े जल जाएंगे।
1: हाय, सुबह से सिगरेट तक पीने का टाइम नहीं मिला। कल शादी है, फिर परी चली जाएगी। इतनी मुश्किल से पाल कर बड़ा करो और फिर कोई उल्लू का पट्ठा आता है, दो दिन में आई लव यू बोलता है और आपकी बेटी को ले जाता है। लुक एट हिम एंड लुक एट हर, जैसे हूर के साथ लंगूर। पता नहीं परी ने क्या देखा उसमें, क्या पता दिल का अच्छा हो।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: लॉकर ही उठा लेते
1: हैं। अरे कोर्ट का क्या करेंगे,
0: लॉकर तो उठा लेना, फिर कोर्ट को भी देख लेंगे ना।
1: कोई है?
0: जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्द

ये तो कपड़े उतारो। शक्ल में टैटू भी है इसका, देखो सूरज बना हुआ है। टैटू कितने बाल है इसके। अभी जाना।

0: 가요. 아주 저기 봐. 아주 잘하게 잘하게. 할 말이면 가서 할 말이면 가서. 저.
1: 오빠는 जल्दी कर यार इसको वापस मेरे घर पर अबे घंटा जल्दी करूं कोड़ी नहीं पता तो तूने वीडियो नहीं बनाई थी तुझे किसने कहा था पीछे से आवाज देने के लिए आंटी सामने आ गई कद्दू कुछ नजर नहीं आया तू 000 ट्राई कर अबे 111 000 999 सारी ट्रिपल ट्राई कर ली नहीं खुल रहा
2: हां सारे ट्रिपल ट्राई किए
1: अबे तू रोक मुंह मैं इसको तोड़ के खोलूंगा शकील भाई रोक गाड़ी रोक जल्दी
2: रोक
1: अबे रोक दे
3: अबे हां अब तो इसका कोड अंटी बताएगी
1: हो गया ठीक हो ना
4: आपा है ना कितना मजा आ रहा है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं देखें डांस हो रहा
5: है भाभी कहाँ बैठी हैं आए ना बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं
6: हाँ मैं आती हूँ आप जाओ
5: अरे मून बेटा कैसे हो
1: आओ जी बैठो बैठो
7: आंटी
1: जी वो परी ने रिंग वापस मांगी थी वो कोई और डिजाइन पसंद आ गया उसको
6: दिस गर्ल इज सो कंफ्यूज्ड और उसे जरा पूछना बारात से पहले घर आ जाएगी लेट मी गो गेट द रिंग
8: सोनिया रिलैक्स लिसन लॉकर प्रोटेक्टेड है कोड लगा हुआ है और वो सिर्फ आपको मालूम है राइट वो कहीं भी खुलवाने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा रिलैक्स और वैसे भी अलार्म है उसमें तुम देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा मुझे बताइए था क्या उसमें ज्वेलरी थी ना ज्वेलरी जान का सदका समझो रिलैक्स सोनिया रिलैक्स देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा प्लीज फोन लो आ गया उठाओ ना
9: हेलो
10: तुम्हारी बेटी और लॉकर दोनों हमारे पास है कोड बताओ और बेटी ले जाओ कोड बताओ
9: परी
10: बताओ कोड
9: परी कितना
10: बताओ ना
1: क्या
9: क्या
1: इधर हेलो सॉरी कौन बात कर रहा है हेलो मून अबे आंटी को फोन
10: अबे आंटी को फोन दे मून
1: सोनिया अबे क्या कर रहा है मून अबे भेड़ के आंटी को फोन हेलो अरे ये किधर फंस गए शकील भाई क्या बकवास
8: अंकल आप आंटी को संभालिए ठीक है परी को मैं वापस लेके आता हूं
1: ये सब माओ का दिल इतना कमजोर क्यों होता है कोर्ट बताकर बेहोश हो जाती बुढ़ी
2: आए मैं तो कहता हूं ये कोर्ट वोट का चक्कर छोड़ो ऐसे ही दे देते हैं देखो ना इतने बड़े गुंडे हैं लड़कियां उठाई हैं इसको भी खोल लेंगे
1: सही कह रहे शकील भाई सही कह रहे ना मून
8: यार खुल जाता तो अच्छा था उन्होंने तो सिर्फ हीरे मांगे जेवर तो बच जाता लेने के देने पड़ गए यार
1: अबे तू कैसा घटिया आदमी है यार मून वहां नैना और परी पता नहीं किस साल में और तुझे ज्वेलरी की पड़ी शर्म कर यार
2: अजीब आदमी है तू
8: मैं तो सिर्फ कह रहा था कि हीरे
1: क्या क्या कह रहा था
8: कुछ नहीं
1: बस अब जल्दी से सुबह हो जाए यार
2: हाँ यार

अरे उठो, चलो चलो चलो चलो चलो शकील भाई, चलो उठ जाओ, आ जाओ आराम से, देख आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चला जाओ, चलो

0: उधर पहले तो उधर ना
1: पटरी है ना
2: और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग हीरे लेने के बाद हमें छोड़ देंगे।
0: तो फिर एक वादा करते हैं, अगर आज हम यहां से जिंदा बच गए ना तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे आज के बाद।
3: चलो
0: चल।

0: यार, वैसे हमारा कोई बैकअप तो होना चाहिए था।
1: सुनो, एक काम करते हैं।
0: क्या?
1: तुम लोग अंदर जाओ, मैं बैकअप पे खड़ा
2: हूँ। चलो अंदर।
1: अरे मैं तो पहले ही कह रहा था अंदर चलो, तुम लोग खड़े बातें कर रहे हो यार।
2: कैरन, चलो
1: चलो चलो चलो चलो।
0: हाय सलामुअलैकुम।
1: हीरे कहाँ हैं?
0: लड़कियाँ?
2: हाँ, लड़कियाँ कहाँ हैं?
3: ए शाणे, बहुत जल्दी है रे तेरे को।
1: नहीं भाई, वो बात दरअसल ये है कि कल इस बेचारे की शादी है।
3: तो बारात यहीं ले आते, अग्नि पे फिरा देता इसे।
1: हीरे कहाँ हैं?
0: हीरे इसमें माई बाप।
1: खोल
0: भाई, वो कोड नहीं पता।
3: अच्छा शाने, लॉकर तेरा, हीरे तूने इसमें रखे और तेरे कोई कोड नहीं मालूम, ये ला समझा क्या?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं समझा। वो ये लॉकर भी हमारा नहीं है।
3: साले तेरी तो
1: बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, दो मिनट दे दे, दो मिनट, मैं पूरी कहानी बताता हूँ भाई।
2: भैया,
1: ये दो मिनट की कहानी दस मिनट में सुनाएगा। ओए तू, तू सुना।
0: मैं देखिए, ये लॉकर है, ये इसकी सास का है
4: मेरी,
0: और कोड भी उन्हीं को पता है। हाँ। लेकिन वो बता नहीं सकती।
1: गूंगी है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, वो बेहोश है ना।
4: बेहोश
1: क्या?
0: हाँ वो
4: भाई भाई भाई भाई, मैं बताऊँ?
1: तू बता
4: भाई। जब हमें ये हीरे मिले ना, तो मुझे लगा कि हमें इनको किसी सेफ जगह पे रखना चाहिए। तो मैंने ये हीरे उठा के अपनी सास को दे दिए। मेरी सास ने हीरे उठा के इस लॉकर में रख दिए। अब मेरी सास को थोड़ी पता है कि वो लॉकर में हीरे रख रही है, क्योंकि अपनी सास को ये हीरे देने से पहले ना, मैंने ये हीरे ज्वेलरी के डब्बे में डाल दिए। तो ज्वेलरी के डब्बे में हीरे, और हीरे डब्बे के लॉकर में, और लॉकर के अंदर है डिब्बा, डिब्बे के अंदर है हीरे, हीरे डब्बे में, ये सास को नहीं पता, तो इसीलिए डिब्बे के अंदर आपके हीरे महफूज है।
3: तो लॉकर में क्या है?
4: हीरे।
3: लेकिन हीरे तो डिब्बे में।
0: अरे तो हीरे तो डिब्बे में ही है ना।
1: तो डिब्बा लाना चाहिए था ना सालो। ओ यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बताने दो। देखो भाई को गुस्सा आ गया।
4: सॉरी
1: भाई, मैं बताऊं?
4: सॉरी,
1: बस बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। ठाकरे, एक कोड़ा सारा सच बाहर आ जाए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं,
3: मेरे को सुननी है कि साली असली कहानी है क्या। बोल, तू बोल।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो लॉकर है ना, ये इसकी सास का है।
3: अबे इसकी सास की माँ की।
1: अरे भाई भाई भाई, बात कंप्लीट होने दो ना, बात कंप्लीट होने दो। देखो ये इसकी सास का है, और उसकी बेटी को आप उठा कर ले आए। जब उसको पता चला तो वो बेहोश हो गई। अब अगर उसके होश आने का हम वेट करते तो यहाँ आने के लिए लेट हो जाते। तो हमने सोचा कि हीरे सबसे पहले आपके पास पहुंचने चाहिए, तो हम ये ले आए। और माशाल्लाह आप इतने बड़े गुंडे हैं, एक गोली चलाएंगे साले का भेजा बाहर आ जाएगा।
0: सही
1: ओए,
0: सही कह रहे।
1: कोई होशियारी तो नहीं कर रहा ना तू?
0: नहीं
4: नहीं बॉस,
1: नहीं
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। होशियारी बंदूक के आगे कौन होशियारी करेगा बॉस? आप बोले तो अपना फोन और ये वॉलेट ये भी रख देता हूँ, कराची में तो हमें आदत।
2: साले डेढ़ यार, तुझे क्या लगा था अलार्म बजते ही लॉकर से पुलिस बाहर आ जाएगी? हैं? साले चूहे।

0: इतनी फायरिंग क्यों हो रही है? मेरी शादी थी यार, मैं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? अजीब आदमी है, इतनी जोर से मारा मेरे सर पे घोबड़ा बन गया। पहले मेरे पांव पे लगा।
2: अरे यार शेखर भाई, तुम बिल्कुल सही हो गए, ये तो अकला ही नहीं रहे।
1: शेखर, ये गोलियों की आवाजें क्यों नहीं आ रही? क्या सारे लोग घर चले गए?
3: ओ यार, लगता है शकील भाई बहरे हो गए।
1: अबे तुम लोग मुंह क्यों चला रहे हो?
2: बोलो बोलो बोलो।
1: अरे चल चल, अरे अरे अरे, आप सुन लो
4: नैना।
1: अरे यही
4: नैना।
5: मैं
6: आ रहा
5: हूँ।
6: यहाँ से नहीं,
5: फरहान
6: नहीं।
5: चल चल, यहाँ
6: से नहीं।
5: चला जा तू।
6: आ रही है।

0: हम लोग आ रही है लड़कियाँ छुड़ा के, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है।
1: पेशाब करने जा रहा है यार, ये कमाल है यार, पेशाब करने जाओगे तो लड़कियों को कौन छुड़ाएगा?
2: Check it!

0: हमें तो किसने कहा था 2017 में 1960 की गाड़ी रखने के लिए पागल।
1: अबे फास्ट एंड फ्यूरियस में तो ठीक चलती है।
0: अबे तो चला ना।
2: क्या बात हो रही है,
0: चुप कर मेरे।

0: आप बस इतनी टेंशन ले, रिलैक्स रहा करें।
1: स्माइल प्लीज।
2: आज हम आखिरी बार साथ हंस रहे थे क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर जिंदा बचे तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मून की तो हो रही थी हैप्पी एंडिंग और हमारी पाकिस्तान में लैंडिंग। मनहूस हीरो ने सबको जीरो कर दिया। इकबाल ठाकरे की हड्डियों के साथ साथ उनके भरम भी टूट चुके थे। पुलिस ने कूट कूट कर शेख की असलियत भी उगलवा ली और अब सुल्तान अल बकलावा अपनी शाही तशरीफ सोने पर नहीं बल्कि जेल के गंदे पॉट पर जमाता। पर ऑफिसर फ्रेडरिक अपनी जिद का पक्का है, हीरों के मिलने तक उसकी तलाश जारी रहेगी।
3: Excuse me, आमिर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बेटा सब कुछ तो चोरी हो गया था, बस ये एक बॉक्स मैं लॉकर में रखना भूल गई थी।

0: then let the Lahavar tea serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. The Lahavar tea. 647-295-7861. Then let the Lahavar tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसेस आगर रिचवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसेसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. وہی اتھینٹک ذائقہ اور کوالٹی پاکستان سے اب آپ کے شہر مسیساگا میں کچھ میٹھا کچھ نمکین راحت بیکرز آج ہی وزٹ کیجیے 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 24 مسیساگا کال 905-820-1500 اور وزٹ راحت بیکرز.ca

0: बड़ी देर के बाद जो है वो डांस करने को दिल किया है। इतना मजे का गाया है सामिया ने, बहुत अच्छे। शाजिया मंजूर साहिबा ने भी इसको बहुत अच्छा हक अदा किया इसको गाने का, के पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और सामिया आपने भी बहुत अच्छा गाया,
1: थैंक यू सो मच,
0: जस्ट लव दिस परफॉर्मेंस।
1: थैंक यू
2: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

0: बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009, it's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. alkaramjewelers, farmaish aapki guarantee hamari.

0: आईसीसी इमिग्रेशन के RD MD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
4: जी हाँ, 4165700157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 4165700157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है, तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद, कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी, या मेरी बेटी बैठी हुई थी, या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कि कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं, और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें, ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, پلیز مجھے کال کریں, میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہا کہ 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. Students mera take number 4165930003. Ustad Nasraf Ali Khan ki khushta awaz aur waqt hochal aapko le chalne ka Canadian English headlines ki taraf jo aapke liye pesh karti hai Mani.
1: News ke liye madam diya hai Team Bhatti Real Estate. For all your real estate needs call Talha Bhatti 647-295-7861 647-295-7861.
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 or Dundas ke intersection Mississauga mein. Barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga Lahori Fish, Chapli Kebab, Kadahi Ghost, Chicken Tikka Masala, Chicken Biryani, Seekh Kebab, Rishmi Kebab, Chicken Boti, Chicken Tikka, Bihari Kebab, Lamb Chops, Afghani Tikka, Nehari aur bahut kuch. Khoobsurat Kushada Patio Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग Vendors or sponsors, abhi call karein 416-710-6777. It's 416-710-6777.
4: याद रखें अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन स्पाउसल सपोर्ट चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773 कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773
1: मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मिठा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी मिसिसागा ब्रामटन स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810 इट्स 416-901-2810 या लॉग इन हो mithafurniture.com हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए मिठा फर्नीचर हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर
0: जी हाँ, मीठा फर्नीचर होलसेल गैलरी, मिड टू हाई फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिलती है और बेस्ट डील्स आपको मिलती हैं, एवरी वीक स्पेशल डील मिलती हैं और 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी स्टोर से, ब्रांड नेम स्टोर से, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको ये मार्जिन दे सकते हैं। मिसागा में लोकेशन इनकी 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रॉम्पटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबोरो, 35 बुश रोड कैम्ब्रिज, और बहुत जल्द पांचवीं लोकेशन भी इनकी ओपन होने वाली है। चारों लोकेशन के लिए नंबर है 416-901-2810, meethafurniture.com इनकी वेबसाइट है। पवन मीरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। मीरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
5: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवी का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है, तो वो फिर जो बचत होती है हम तो 2 पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मिड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे हैं 1099। ये देखो, ये है हुनस्ती, आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी हैं वो, तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लेकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के, आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन कोई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है, तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा तीन हजार से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए, तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं, एक बार चाहे फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बात

6901-2810 mediafinish.com इनकी वेबसाइट है। रेड पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम ब्रैम्पटन में आज सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे। तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमिन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200। ये मेन इन कैनेडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे 1 साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर लीजिए 416-206-3200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: तो तलावट टी को कॉल मिला।
1: Talhavat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavat 647-295-7861.
0: तो तलावट टी को कॉल मिला।
1: Talhavat 647-295-7861.
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से रابطہ कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद

0: के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
1: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family के साथ dine-in करें या take-out, बच्चों और बड़ों सभी की पहली choice, Pizza Pop. लजीज और मजेदार तंदूरी chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take-out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
3: जी हाँ, 905-783-1922 अहमद मलिक साहब के रबते का नंबर है। मोर देन 2 decade का इनका तजर्बा है। खुदा न खास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, इन्हें कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे, आसान इकसाद बनवा देंगे। बैंकरप्सी करना है आपने या कॉर्पोरेशन के कुछ मसले चल रहे हैं, तब भी आप इनसे रबता कीजिए। सीबा लोन का मसला है, हर तरह का कर्ज जो है आपका माफ़ करवा देंगे। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमसे लिया करते हैं, कुछ ओवरऑल सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदेद कहेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
3: मलिक साहब, आपने भी यकीनन देखा होगा जो रिपोर्ट आई है ब्रैम्पटन में, हाईएस्ट रेट ऑफ मॉर्गेज डेलिंक्वेंसीज है, कि मतलब क्या इससे मुराद क्या है कि मॉर्गेज नहीं दे पा रहे हैं, कुछ हालात बहुत खराब हो रहे हैं, और ये क्रेडिट पे क्या इफेक्ट करती है?
4: बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, बिल्कुल जी, ये रिसेंट रिपोर्ट अभी आई है हमारे सामने कि ब्रैम्पटन इज द हाईएस्ट जो शहर है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलिक्वेंसीज है मॉर्गेज की। मीन टू से कि मॉर्गेजेस जो हैं वो टाइम पे नहीं हो पा रही, और ब्रैम्पटन के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसमें सबसे ज्यादा आगे हैं। कि मॉर्गेज जो है अब टाइम पे नहीं हो रही, यानी कि सिचुएशन इस कदर खराब हो चुकी है कि देखें, अगर तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, आपकी कोई लोन की पेमेंट्स हैं, अगर उस तरफ आपकी डेलिक्वेंसी आती है तो उसका हल मौजूद है, लेकिन अगर आपने अपनी मॉर्गेज में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको छत चाहिए, आपको एकोमोडेशन चाहिए, और अगर मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज में आनी शुरू हो गई हैं तो अर्शद भाई क्या होता है, देखिए अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट है $5500 और मैंने उसको बिहाइंड कर दिया, मेरी पेमेंट NSF चली गई है, तो ये $5500 पहले तो ऑटोमेटिकली ये 5700 बन जाने हैं, और अगर ये 3 महीने तक मुसलसल ये काम चलता रहता है तो 5500 में तकरीबन इतनी अमाउंट ही मेरे लेंडर ने वकील की फीस की तगा लगा देनी है कि अब आप 3 महीने की मॉर्गेज बिहाइंड हो गई है, मैं आपकी प्रॉपर्टी फोर क्लोजर के लिए लेके जा रहा हूँ, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वकील की फीस पे करें। यानी कि वो एक छोटी सी अमाउंट आपको काफी ज्यादा पेनलाइज कर सकती है, और मॉर्गेज आपको बाहर सूरत पे करनी है। अब इसका क्रेडिट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है कि अर्शद भाई, 2013-2014 तक ऐसे होता था मॉर्गेजेस जो हैं ये क्रेडिट रिपोर्ट्स पे शो नहीं करती थी। अच्छा। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि चाहे आपकी ए लेंडर से मॉर्गेज है, बी लेंडर से मॉर्गेज है या सी लेंडर से मॉर्गेज है, आपकी मॉर्गेज आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है।
3: अच्छा।
4: पहले ऐसा होता था कि अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट बिहाइंड हो भी गई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक को पता चलता था कि मैंने मॉर्गेज बिहाइंड चल रहा हूँ। अब क्या है कि मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे ये 100% रिफ्लेक्ट करती है, और मॉर्गेज रिन्यूअल के वक्त या मॉर्गेज रीफाइनेंस करते वक्त ये चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रबल कर सकती है कि आपकी मॉर्गेज इस टाइम पे नहीं जा रही। तो बहरहाल सिचुएशन जो है अर्शद भाई इस टाइम काफी ज्यादा खराब हो रही है, खराब हो चुकी है, लेकिन बहरहाल हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा ऐसा ही कोई लिस्टनर है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए हैं, कंज्यूम किए हुए हैं, आपसे पेमेंट नहीं की जा रही, आपको किसी तरह के भी लीगल एक्शन के नोटिसेस आ रहे हैं, तो फिर ये जो लीगल ऑप्शन हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप इस ऑप्शन के मुतालिक डेफिनेटली सोच सकते हैं। आपका कर्जा 75% से 80% तक हम प्रपोजल में माफ करवा सकते हैं। अगर सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, आपने बैंक्रप्सी फाइल करनी है, तो बैंक्रप्सी फाइल करने से लेकर बैंक्रप्सी के डिस्चार्ज होने तक आपको मुकम्मल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने की जी हम गारंटी करते हैं। अर्शद भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9057831922 है, 9057831922। इसके साथ साथ हमारे तमाम वो दोस्त जिन्होंने अभी तक सीबा के पैसे नहीं दिए, वो आप ये बात याद रखें कि जिस दिसंबर में इसकी डेडलाइन आ रही है और गवर्नमेंट काफी ज्यादा इसको रिकवर करने के लिए डिफरेंट एंगल्स पे इस टाइम काम कर रही है, तो अगर आप सीबा के लोन से ये जो आपके सर पे लटकती हुई तलवार है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपके क्रेडिट को अफेक्ट किए बगैर आपकी इससे जान छुड़ाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नंबर अगेन इज एब्सोल्युटली द सेम अर्शद भाई, 9057831922 पर मेरे से कॉन्टेक्ट किया जा सकता।
3: थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत
4: थैंक यू सो मच।
3: नंबर नोट कर लीजिए, अहमद मलिक साहब को अभी कॉल कर लीजिए, अगर कर्ज के बोझ तले अगर आप आ गए हैं बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कर्ज आपको माफ करवा देंगे। 9057831922 के एलिमिनेटर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन जो पहली दफा इस लीग में शिरकत कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो 3 दफा टूर्नामेंट जीत चुके हैं 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतवार को पेशावर जलमी और हैदराबाद के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन आखिरी जो उनका ओवर था जिसमें 6 रन चाहिए थे उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए हैं, और ये मुकाबला जो है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। हैदराबाद किंग्स मैन ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 186 रन स्कोर किए, उनके भी आखिरी 4 ओवर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर बना था, और 4 ओवर्स तक मुकाबला तकरीबन तकरीबन बराबर था। आखिरी ओवर में तो लग रहा था कि ईजिली जीत जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की और उन्होंने 6 की बजाय 4 रन दिए, और यूँ 2 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये मैच हार गई। फाइनल पेशावर और जहाँ हैदराबाद जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जो 7वीं और 8वीं टीम जो शामिल हुई थी उनमें से एक टीम जो अब फाइनल में जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777.
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
3: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है। दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे रब्ता कीजिए। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं। इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेजेस इनके होते हैं, साथ साथ मनी ट्रांसफर की सर्विसेज, इमिग्रेशन की सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और कमर रशीद साहब रोही रवा हैं, CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को, और ख़ासतौर पर हज के हवाले से और उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं, वहाँ जा कर चीज़ों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है। खुश आमदीद कहेंगे कमर भाई। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शिपटी साहब और आपकी वसासत से अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश।
3: थैंक यू वेरी मच। पहले मुबारकबाद, बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका, इस पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की, कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए?
4: जी सर, मैं शिपटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे, जी हाँ, PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया। यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिलीज जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है, तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ। और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है। टाइम आपके पास है, अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है। आप अभी 24 जून को जा रहे हैं, आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं, और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है, उमरा के वीजे खुल जाते हैं, तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का, उमरे का, ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ। और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
3: पे कॉल कर लीजिए। एक तो 15% सेल है प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में, तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं, चाहे दो लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों, आप इनसे रब्ता कर लीजिए। अच्छा, हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है, इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह, और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी, वहाँ मैं मौजूद था, लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से, और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए।
4: जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, शक नहीं और खुशूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है, और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया इहराम अपनी तरफ से, मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी मोहब्बत है हमारे लिए एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अर्शद भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं, और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ, आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें,
3: कुछ और ऐड करना चाहेंगे कामरान साहब?
4: जी मैं बताता चलूं कि इसमें हज के लिए 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन मुख्तलिफ दिनों के पैकेज होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा आए बैठे और आपकी जरूरत के मुताबिक इसको किसको कस्टमाइज करें। और पाकिस्तानी कौंसल की तमाम ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें आपका जरूरी है कि पासपोर्ट आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो अपना रिक्वेस्ट है बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें। इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रेट के लिए नंबर है 9052753555।
3: थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 905-275-3555। एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं, पाकिस्तान में पीसी लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है, और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज़ खाने वालों के लिए, 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशल डिस्काउंट है, रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे, और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका, रिजवे प्लाजा में, और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 9055147877, 9055147877, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रबते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आजान का वक्त हो गया है, دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Juni Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे जायद है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 4167106777। इट्स 4167106777।
2: हाँ जी हाँ, 4167106777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी भट्टी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना। तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है, दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे राब्ता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 4167106777 पे आप राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरीडे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरीडे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 4167106777, 4167106777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शम्स भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक
2: यू जनाब। अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए आएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। दो तीन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। जीसस कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में, और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है, और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री, इसके अलावा डिज़ाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी, और मदर्स डे के लिए स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं, यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल ज़मान साहब। स्टे ट्यून्ड।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswits.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence Richmond ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajruba kar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor aur Dixie intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Foods Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राबता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922। SSR ऑटो सर्विस 921 एप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पेवे।
5: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009। योर लॉगिन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: 2-3 लाख रुपया जो है वो कमाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी
1: मुश्किल
0: बात
1: है।
0: नहीं है।
1: सही। अच्छा, ईरान जंग के खात्मे के लिए नई तरकीब सामने आई है। ट्रंप का इख्तियार ईरान से और जंग करनी है या नहीं, फैसला अमरीकी कांग्रेस करेगी। अमरीकी सेक्रेटरी ने ईरान जंग को पहले ही ख़त्म करार दे दिया है, तो क्या जंग का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस के पास जाने से अमरीका को ईरान से निकलने का मौका मिल जाएगा? वैसे सर ट्रंप तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इख्तियार है।
0: जी देखिए, बिल्कुल वो तो अपना बहुत कुछ जो है ना वो मानते हैं, लेकिन बहरहाल जो अमरीकी कानून है वो तो यही कहता है कि अब उनको जो है 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत लेनी होती है, चाहे जाए कि वो
1: कांग्रेस
0: खुद कोई, हाँ जी, चाहे जाए कि वो खुद जो है ना वो कोई
1: फैसला
0: और
1: करें।
0: कानून पास करने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक तो उनको एक रास्ता जो है वे आउट मिल रहा है। खुद भी बहुत सारे जराये जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी मुजाकरात की बात हो रही है, जितना जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि जी आ जाए, बात कर लें, फोन कर लें, हम तैयार हैं, बैकडोर रबते हो रहे हैं, जो है ना वो चैनल खुला हुआ है, अभी एक दोबारा जो है वो तजवीज भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो अमरीका को भिजवाई गई है, तो बहुत सारी जो है ना वो लोगों का ख्याल है कि अमरीका खुद भी जो है ना इसमें से अब निकलना चाहता है, और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है, वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं, और भी ऊपर जाने की जो है ना वहां पे है, तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है, वहां पर तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं कि जी क्या जरूरत थी आपको जो है ना ऐसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था, तो वो
1: ठीक
0: बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है ना वो निकले, तो बहरहाल
1: ठीक
0: एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला जिसके तहत वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था लेकिन अब मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं
1: इजाजत
0: दी,
1: नहीं दी।
0: तो इसलिए जो है
1: ठीक,
0: ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं।
1: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान से बिलाल जमान सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल लेंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1,000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर यौम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है, और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही पीटीआई क्यादत कर तो नहीं चुकी? बिलाल साहब,
0: ये देखें जो जाहिरी हालात है ना वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इल्म में ये बात है, लेकिन बाहर जो लोग हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियज्म के साथ थे, आपको याद होगा कि जब अली मिन गंडापुर को
1: हाँ
0: हटाया
1: तो आया
0: गया
1: था
0: था
1: जी, बिल्कुल सही है।
0: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था, उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए, केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें, फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से, और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब के जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है जिस तरह के सोहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते, अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयानात की हद तक, लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1,000 साल का मतलब 1,000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड
1: होता है
0: है, 4 साल
1: बिल्कुल,
0: बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम
1: इलेक्शन
0: पीरियड जो है ना
1: पे
0: वो
1: है,
0: पूरा
1: बिल्कुल
0: पूरा
1: ठीक।
0: कर लेती है,
1: अच्छा, अभी
0: तो लगता है कि कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय
1: तय
0: है
1: किया
0: कि
1: हुआ है, ठीक,
0: इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान
1: उनको
0: साहब
1: अंदर ही
0: बाहर नहीं
1: रखा,
0: आएंगे।
1: ठीक। अच्छा, अभी सोहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत ओवरऑल कैसी है? क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
0: जी देखें, जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो
1: बिजली
0: इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर

0: के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में, कोई ऐसी तंगी नहीं थी। लेकिन
1: ठीक है
0: गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है, कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है ना सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं, वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है।
1: सही
0: उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल
1: इस्तेमाल
0: सिलेंडर्स
1: करें।
0: वगैरह यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है। और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक
1: सही
0: रूटीन है, सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और
1: सही
0: फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग
1: ठीक
0: है। इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस
1: नहीं
0: अवेलेबल
1: होती।
0: होती है।
1: अच्छा, वफाकी वजीर तवाने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज़ हमें एलएनजी गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गए हैं। हुकूमत लोड मैनेजमेंट को अवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें अवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी लगता है आपको?
0: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई पीटीएम की हुकूमत आई थी तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था। और जरूरत होती है, जब गर्मियों का महीना आता है तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर
1: चलते
0: वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती हैं। तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है, जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब
1: ठीक है।
0: हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम
1: ठीक,
0: को वही जो यूनिट्स हैं वो 40 40 रुपए में
1: चालीस
0: जो है ना वो दे
1: ठीक,
0: दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वो वहां से कर रहे हैं, तो
1: सही,
0: उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ
1: कुछ
0: जो
1: ना
0: है
1: कुछ
0: वो
1: होना
0: जरूर मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: चलें, और चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडेंट्स में रबे के नंबर 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर। 6910, 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: मॉर्निंग मोटर साहब,
1: जी वालेकुम सलाम।
2: बहरहाल है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा। हम तो खैर इससे हुई संभाल है, ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, उनकी हिस्ट्री है। तो और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है, ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई
1: टाइम
2: साल लग
1: लगता है।
2: जाते हैं,
1: ठीक,
2: लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे, और अल्लाह कह रहे पाकिस्तान कम से कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेके एटलीस्ट के
1: ठीक,
2: जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्कु करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये
1: सही,
2: फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतने पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में भी पढ़ने के बड़े चांसेस हो गए, खबरों में आया था, और
1: ठीक
2: पूरी दुनिया ही यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस, और
1: सही,
2: इवन अमेरिका का भी यानी कि
1: जी
2: खबरें
1: हम
2: आने
1: भी
2: के
1: कुछ
2: सिक्स
1: पढ़े,
2: डॉलर पर गैलन, तो ये तो बहुत
1: बिल्कुल
2: बड़ा
1: ठीक।
2: के वो है।
1: थैंक यू
2: तो
1: सर,
2: बहरहाल
1: बहुत
2: अल्लाह
1: शुक्रिया।
2: ताला जो है बेहतर।
1: ठीक, थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
3: कैसे हैं आप? ठीक
1: जी,
3: है।
1: शुक्रिया सर, थैंक यू।
3: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिस जो होता है, जो मीडिएटर होता
1: जी
3: है,
1: जी।
3: वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है, और किसी डिसीशन पे लाती है।
1: जी।
3: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है, इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमने काफी हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन इस्लामाबाद बंद रहा है, ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला है, अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है, तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो। पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो, एक तो बात ये थी। दूसरी आखिरी बात में जो कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है? अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक नहीं होता, ये मैंने ये
1: किसी को वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब ये देखें, जब तक ये जंग लगी है ना, इसमें मसाइल तो होंगे, और इन मसाइल में अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाई उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, IMF भी है, और इससे सबसे बड़ी बात जो है, देखिये पाकिस्तान के कम अज कम कहने पे चले सीज फायर तो हुआ है ना भट्टी साहब, ये तो दुनिया तस्लीम कर दी है ना कि चले सालसी, अब ये सालसी देखे, शायद ईरान को तो हम मना ले, अब अमेरिका को मनाना तो बड़ी मुश्किल बात है। तो बात वही होगी जो आपस में मिल बैठ के इन लोगों ने अपनी शरायत तय करनी है, और पाकिस्तान का मसला है कि वो हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी और हमायती करेगा ईरान की। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब, इसमें हम ये कभी भी नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों के साथ, लेकिन अब यहाँ देख ले, अब यहाँ नहीं, कल भी आपने बताया तकरीबन 400 रुपए के मुतरादिप हमारा भी पेट्रोल हो गया, अब हमारा क्रूड ऑयल भी है, हमें क्या गवर्नमेंट कहने लगा दी है, कुछ नहीं। ये देखे ये सरमायादार जागीरदार, इनका नुकता नजर और इनका लूटने का वारदात तरीका एक ही होता है। बाकी रह गई भट्टी साहब, हाँ साहब ने तमाम पते अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, 3 दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई यार, जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुख्य चीजें मिल रही थी, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पिशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए मुल्क के खिलाफ, जो लोगों का इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नुकता नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं, इस तरह ना करें।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन एयर हैं। 5415 वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आप डिस्कनेक्ट हो गया, चॉइस साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा हमारे पास 3001 आप बात करना चाहेंगे? 0010 लास्ट 4 डिजिट 0010
4: सर, मेरा आपके सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन IPP के मालिक कौन है? कभी आपके किसी सामीन ने ये बताया
1: तो है सर, बताया तो वो सारे वही बड़े लोग ही हैं सर, IPP के मालकान भी,
4: उनके नाम बड़े के नाम तो पता लगने चाहिए ना,
1: आपके जिम्मे लगाते हैं सर कि वो उनके नाम बताएं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप ऑन एयर हैं। 6141 अच्छा, 5415 वापस आ गए सर, आप बात कीजिए। 5415 आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415
5: सलामुअलैकुम, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा।
1: जी जी,
5: पहली बात तो ये है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है। भट्टी साहब आप मुझे बताएं कि कनाडा में कितने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकले हैं, कितने मजारे हुए हैं, आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मदारे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात। और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो, उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई।
1: ठीक
5: यार, ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नियत का फतूर है, तो फिर ये नियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात। भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: मुझे कह रहे हैं,
5: और आपका भी कद बड़ा होगा।
1: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
5: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई आप, सवाल करते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन ले रहे हैं, 8156
6: हेलो
1: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
6: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% तो नायदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मिया मंशा के चार हैं,
1: अच्छा
6: शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
1: चलिए अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
6: जांगी
1: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं तो बाकी कॉल दी। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6141।
7: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
1: जी वाले सलाम सर।
7: भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगें आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखे, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं बिलास साहब। मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाजी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
0: नहीं, वो तो जो है ना, क्या कहते हैं, अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
1: ठीक,
0: तो अभी जो है ना वो देखें कि वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वो
1: और। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत
0: शुक्रिया।
1: एंड लिसनर्स, आपकी कॉल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, हौसला भी खोने की चीज़, इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दिमाग।

0: अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाज़िर ख़िदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता आपका बड़ा क्लासिक गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ठंड थी, बाकी मौसम बहुत अच्छा था, और स्पेशली कल का और आज का वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वेदर। हाँ, थोड़ी सी बारिश भुगती है, पर दैट्स फाइन। तो आइए लिए चलते हैं हंसियों का भंडार, हंसियों का बाजार, हमारी को होस्ट आयशा।
1: अस्सलाम वालेकुम आपको, मेरी सारी टीम को, सब देखने वालों को मुअद्दबाना सलाम।
0: मुअद्दबाना सलाम।
1: उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, आप ठीक होंगे, टीम ठीक होगी, सब जबरदस्त।
0: हाँ जी, नहीं सारी ठीक है, ठीक हो भाई? फिर से बताओ, आयशा पूछ रही है।
1: श्योर श्योर, टीम है भाई, हमारी टीम है, टीम रखना पड़ता है।
0: हाँ जी, यू करेंगे ना, वीकडेज में भी वो हमारा जो ग्रुप बना हुआ ना टीम का, उसमें कनेक्टेड रहा करो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि थर्सडे के थर्सडे। मेरे मोहतरम, मेरे साईं, अदा साईं, बाबा जानी, क्या हाल है जी आपका?
2: बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र सर।
0: अल्लाह का शुक्र,
2: बिल्कुल।
0: बाबा जी आजकल बढ़िया पार्टियां गा रहे हो।
2: पार्टियां ही पार्टियां जी,
0: एक ही मौजू पे इतनी है पार्टियां,
2: पार्टियां ही पार्टियां। हुन भी जाना है सर, इस तो बात खत्म करोगे तो जावांगे सर।
0: ठीक हो गया सर, बाबा जी को रोटी घर की नहीं हजम होती ना, इसलिए जी। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक
0: है? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं सब कोई अपील करनी है लोगों से कि आपके लिए दुआ करें, क्योंकि कभी आपको नजला हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी 18, 9, 7, ये कुछ आंकड़े उंकड़े सही नहीं चल रहे आपके।
3: हाँ, बस दुआ करनी चाहिए, वैसे भी दुआ करनी चाहिए,
0: दुआ करनी चाहिए,
3: सही भी चल रहा हो तो तब भी दुआ करनी चाहिए।
0: नहीं है चोरी शौकत रही?
4: हाँ जी,
0: मौजा लग गई है, मौसम आ गया सीधे सीधे।
4: मौसम सीधा है।
0: अच्छा, मैंने ना अक्सर इसको देखा था कि जब सर्दियों में आता था ना, तो ये हमेशा टी शर्ट में आ रहा था, ठीक है। तो आज भी मैंने देखा, पिछले वीक भी देखा, दोनों वेदर वाज फाइन, लाइक यू डोंट हैव टू बी वरी के जी कुछ ठंडा गर्म पहनो, ठीक है। तो दोनों दिन ये जैकेट पहन के आया है, ये उल्टा चलने वाला जो है ना सीधा नौजवान है।
1: तो पता है मैं कनाडा में रहता हूँ, जहाँ पे वेदर का कोई जो है ना भरोसा नहीं।
3: डब्ल्यू का, डब्ल्यू का भरोसा,
0: लेकिन तीनों का नाम ना लेना,
1: एक डब्ल्यू का नाम नहीं लेना।
0: जुबैर, सबसे पहले तो आपसे हम पूरी टीम मिलकर पूछते हैं कि जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लास्ट वीक, यू वाज यू नो बेसिकली विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए, आप ये समझो कि टीम ऑफ द शो, आप शो में पहले तो आ चुके हो, पर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? को बाहर से फीडबैक मिला के जी नम यम यम यम
5: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को मेरा सलाम, टीम को मेरा सलाम, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा, सब टीम मेंबर्स ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया, ठीक है, समेत आपके भी।
0: अच्छा चलो जी, हमारी तारीफ होगी नेक्स्ट।
5: और जिन जिन को मैंने वो शो का बताया, उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा, वेलकम टू द शो केस विद बिलाल चीमा।
0: थैंक यू। ये बेसिकली नाम जरूर ऐसा रखा गया, रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन ये शो आपके बगैर कुछ नहीं है। बिलाल चीमा समझे कि जी साफ कहता है इस शो में कि बेसिकली शो इज नथिंग विदाउट यू गाइस, सो इट्स ऑल टीम एफर्ट एंड इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इट ऑलवेज विल बी द टीम एफर्ट।
5: आई रियली अप्रिशिएट दैट,
0: नो वरीज। बाबा जी के एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से जो है ना हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हालांकि पट्टी साहब ने लास्ट वीक जिक्र किया था, तो प्रॉब्ली सून वो विल बी गेटिंग हिम इन अ शो, और लगता ही है कि जी माशाल्लाह शो बढ़ता जाएगा और जगह कम होती जाएगी। और एक जमाना था कि जब हमने ये बहुत साल पहले, अब तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम को चलते हुए भी 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया, और मेरा ख्याल है कि ये आप ये समझे कि दुनिया से तो मैं मुवाजना नहीं करता, लेकिन टोरंटो में दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन शो सो फार, और एक्चुअली यू नो लेट्स क्लैप फॉर आवर सेल्फ, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। हम किसी वजह से, जैसे फर्ज करें कि अगर आयशा छुट्टियों पर चली जाए तो हम शो ना करें, या मतलब मलक साहब गायब हो, मलक साहब ऐसे कम गायब होते हैं,
1: कम गायब होते हैं
0: ना, दूसरे नंबर पे मियां साहब, मियां साहब जो है अक्सर गायब रहते हैं, तो हो ना तो लोग पूछते हैं बकायदा कि जी नया शो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आए, या वट एवर। सो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी इस इज्जत का शुक्रिया जो आप हमें बख्शते हैं। और प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आपको पता है किसको मिस किया जाता है, हालांकि बाहर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, बाबा जी को।
1: बाबा जी
5: मैं थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं, ये सबसे पहले वो जो एक कवाली और वो एक वो शुरू हुए थे, वो नुसरत फतेह अली खान साहब से शुरू थे, उनका नाम तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना चाहता है। और बाबा जी उनको सुनते सुनते जवान हुए हैं, बचपन सारा अपना जवानी सारी उन्होंने नुसरत फतेह अली खान पे गुजारी है,
3: उन्होंने अपने बचपन की तो ही बाबा जी वो
5: जवान। नहीं नहीं, अब इख्तिताम जो है ना, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, चाहत फतेह अली खान पे।
0: अच्छा, ये आप चाहत अली खान
5: से चाहत फतेह,
0: वाह जी वाह,
5: कैसा एक लॉन्ग पीरियड है।
0: नहीं लेकिन इसमें कोई शक नहीं है,
3: राहत से चाहत तक का
5: राहत
0: से चाहत
3: ही रहेगी बाबा जी।
0: बाबा जी ये राहत भी आपको, नुसरत भी आपको कह रहे हैं, राहत भी आपको कह रहे हैं और चाहत भी आपको ही कह रहे हैं।
2: देखो जी वो तो बात ये है कि फन और फनकार, कल भी मैंने एक वीलॉग किया था एक जगह बैठ के, अगर चाहत फतेह अली खां जैसे लोग फनकार कहलाए जाएंगे ना तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्लासिकल म्यूजिक की इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो,
0: किसी भी म्यूजिक की
2: किसी भी ठीक नहीं। मैं एक खास
0: म्यूजिक क्लासिकल तो वो बनना चाहता है, लेकिन
2: मैं
0: करता
2: अपने,
0: तो वो...
2: अपनी कौम पे, अपने लोगों पे, अपनी कम्युनिटी पे हैरान हूँ कि चाहत फतेह अली खां जैसे बंदे को फंक्शनों पे बुलाते हैं और उससे गाने जो सुनते हैं चीमा साहब, ये मैं शो में बैठ के आपको बता नहीं सकता।
0: बेहुदा, लफ्ज़ बेहुदा यूज करें।
5: नहीं नहीं वो असल में बच्चों को, जो बच्चे स्कूल ही ना जाते हैं उनके लिए वो ए बी सी डी सिखाने के लिए और अलिफ बे पे सिखाने के लिए उनको बुलाया जाता है।
2: नहीं उनको तो बुलाया जाता है बायाती के लिए। पिछले दिनों लंदन में उनका शो हुआ था और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए कि फैमिलियां उठ के चली गई। तो मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी नुसरत फतेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी, चाहत फतेह अली खान, इनका तकाबुल जो है चाहत अली खान से नहीं करना चाहिए बल्कि चाहत अली खान को जूते मारने
0: चाहिए। एक सेकंड, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे चाहत फतेह अली खान की पिक्चर जो है ना वो लाएं, क्योंकि कई दफा नाजरीन या सामीन जो नाजरीन हमारे उनको नहीं पता चलता है कि चाहत फतेह अली खान किस बला का नाम है। ठीक है, तो आप बड़ा मेहरबानी अगर हो सके इसी गुफ्तगू के दौरान ना तो उनकी पिक्चर जरूर लाइएगा। जी
3: भाई आप अनारकली की तरफ कभी गए हो? पुरानी अनारकली से
5: बानो बाजार,
3: न्यू हॉस्पिटल की तरफ या नहीं?
0: बिल्कुल,
3: वहां पे मदारी बैठे होते थे, वो बंदर का डांस भी हो रहा होता था,
0: ये चाहत फतेह अली खां जी।
3: तो मैं तो तस्वीर इनको उसी मदारी से
0: मदारी से मैं बंदर से दूंगा बस।
3: मैं यही कहने लगा था, लेकिन अब फर्क आप खुद निकाल लें कि ये मदारी है या बंदर है।
0: ना नहीं, लेकिन पता क्या आयशा बड़ी इंप्रेस है सिंगर से।
1: अल्लाह खैर,
0: यार मैंने अगले दिन आपकी गाड़ी में मैंने इनको सुना, लेकिन एक हकीकत आपको बताता चलू, बेसिकली ये बहुत पुराने क्रिकेटर है।
5: यस
0: ठीक है ना, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, और ये पहली दफा इंग्लैंड जो है ना वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे।
2: हाँ जी,
0: ठीक है जी, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, नहीं तो आप देखे ना इनकी थोड़ी
1: अच्छा
0: सी मुशाबत जो है
5: वो ये क्रिकेट की इनकी तस्वीरें भी उधर ये आ रही होंगी स्क्रीन पे।
0: हाँ जी,
5: जब ये उधर आए थे।
0: बिल्कुल जी, वो प्रोड्यूसर साहब इस काम में माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, तलाबटी की वजह से तो ये प्रोग्राम चलता है। अक्सर हम कहते हैं कि उनका शुक्रिया, द मिनट वी से समथिंग ही ऑलवेज प्रोड्यूस दैट एवरीथिंग। तो लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगा, मैं भी इससे कुछ कह सकता हूँ कि इजाजत है मुझे? कह सकता हूँ खवातीन, मैं ये समझता हूँ कि एक आजकल हमें याद है हम पहले एक घंटे का ड्रामा देखा करते थे, तीन तीन घंटे की फिल्में देखा करते थे, ठीक है, अब मेरे ख्याल में ड्रामे भी आधे घंटे पे आ गए हैं, फिल्में भी डेढ़ घंटे पे आ गई हैं, लेकिन जमाना इतना तेज हो गया ना कि अब रील्स पे आ गए हैं लोग।
2: हाँ जी,
0: कि दो मिनट वो भी छोड़े जो है कोई
3: second.
0: किसी का वीलॉग जो है ना वो 15 मिनट का बड़े मुश्किल से सुना जाता है,
2: 3 मिनट से आप सुने
0: समझे कि यही होता है कि जी आप जो है ना स्क्रॉल करो आगे क्या है आगे क्या है, तो ये एक एंटरटेनमेंट है असल में। हाँ, लेकिन ये वो एंटरटेनमेंट है जिसको हमने उछाल तो बहुत दिया।
2: हाँ,
0: अगर देखा जाए तो ना वो सिंगर है ना उनको किसी सुर का पता है, उन्होंने माशाल्लाह अपने सुर भी बना लिए अब तो, ठीक है जी, लेकिन खवातीन इसको उस हद तक रखे तो ठीक है, बाकी आपकी सेहत और आपकी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है कि आप इनके शो अरेंज करें।
3: बिल्कुल ऐसे,
0: और स्पेशली आप फैमिलीज के साथ बैठ के ये शो देखेंगे तो जिस तरह के उनके गाने हैं ऑनेस्टली अगर उसकी आप वर्डिंग सुने ना, और वो बड़े जूम इन और जूम इन भी इतने हैं कि बेहूदगी दी आता है कि बाबा जी ने तो बड़े शराफत से टाइम काम लिया था, तो बाबा जी ने जो शराफत से काम लिया था वो हम नहीं लेते, हम इनको उस स्क्रोल के हद तक या मजाक की हद तक या उनको एक ऐसा सिंबल दिखाने की हद तक, और यार चाहत फतेह अली खान ना बन, ठीक है ना, ये चलेगा। ही इज नॉट अ सिंगर, प्रॉब्ली ही वाज अ गुड क्रिकेटर, आई डोंट नो बिकॉज आई नेवर प्लेड विद हिम, लेकिन ये वो चीज है जो बच्चों के साथ साथ अपनी फैमिलियों की पहुंच से भी दूर रखे।
2: जी जी,
5: दिखा
1: सस्ती शोहरत, अटेंशन सीकर, ये उस कैटेगरी में
2: नहीं, लेकिन जो बंदे उनको बुलाते हैं उनकी दिमागी तवाज़ुन भी,
0: बाबा जी वो तो पैसा कमा रहे हैं, आप उन पे तो जाए ना, ही इज स्मार्ट। कि जब आई एम सॉरी टू से कि जी जब कुछ भी हो आप ये देखो ना, पाकिस्तान वो मुल्क है कि अगर आप खंबे के नीचे खड़े हो जाओ और यूं उंगली कर दो ना और ऐसे देखना शुरू कर दो, तो कम से कम 20-30-40 बंदे आपके गिर्द इकट्ठे हो गए ना, वही चीज ढूंढना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हो।
2: मुंडे ने नारकली का नाम लिया ना, उसे जाके उत्ते वेखना शुरू कर दो ना, 5 मिनट तो तुहाडे इर्द गिर्द 50 बंदे इकट्ठे हो गए, वो भी वेखना शुरू कर देंगे, घर वेख रहे
0: हैं। सो यही चीज है दुनिया में, आप ये देखें ना, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ले लेते हैं, अब ये नहीं मैं कहता कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री माठी है, नहीं यार, मौला जट जैसे शिकार दिए उसने, नूरी नाथ जैसे करेक्टर दिए उसने, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखोगे ना तो ये भेड़ चाल ही चल जाती है। हमारे जो पाकिस्तानी कौम है उसमें जाहिर है शराबबंदगी बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, लेकिन उसको फिर जैसा वो कहते होते हैं ना कि फिर वैसी ऑडियंस चाहिए ना आपको, और जैसी ऑडियंस है वैसी ही प्रोडक्ट आपने बना के देनी है, तो ये मशहूर तो होगा इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस बोतल के लेबल पे ये लिखा होना चाहिए कि बच्चों और फैमिली की पहुंच से दूर है, किसी इज्जतदार महफिल में आने के काबिल नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: नहीं बस, आप दूसरे टॉपिक की तरफ चले।
0: दूसरा टॉपिक जो है ना, हमें सेगमेंट में बहुत थोड़ा टाइम रह गया।
3: अच्छा
0: ठीक है ना,
3: मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसी पे बात करनी है, ये इतना ही अच्छा क्रिकेटर होगा जितना ये
0: अच्छा इस है।
5: नहीं अच्छा, आपने चाहत से दिखाएंगे तो रेलिवेंट हो गई, बाबा जी से चली के राहत से चाहत तक का सफर जो है। तो बाबा जी की जी पार्टी है, उन्होंने उधर वो पेप्सी क्या नाम है
0: उसका, बाबा जी की पार्टी ने नहीं, वो मियां साहब की पार्टी,
5: मियां साहब की पार्टी, वो लिबर्टी चौक में,
0: हाँ
5: जो
0: बाबा जी, वो आपको पता है खबर का, एक कोई पेप्सी साहब है, उनको सुने कभी आपने?
2: नहीं सुना।
5: वो भी सेकंड चाहत है,
3: जिसकी आवाज लड़कियों की तरह पूरा वो बोलता है बंदा।
0: अच्छा, मुझे नहीं पता।
5: वो अजीब सा लिबर्टी चौक में करेक्टर है, लिबर्टी चौक में उन्होंने नून लीग वालों ने जब इलेक्शन आना था तो उनको जनाब जी खड़ा कर दिया लिबर्टी चौक में कि जी ये जरा आवाम
0: जिहड़े 4 वोट पैणे ने
5: ओह भी ना पैण।
0: नहीं नहीं वो तो खैर स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि आपको मिल्टन में
1: ऐसे चाहत साहब के,
0: चाहत साहब का शो दिया जाए, तो आप विल यू बी एबल टू सेल इट, यानी सोल्ड आउट वाला ये वो कर सकेंगे?
1: मैं तो अपने हाथों से काम नहीं कर सकूंगी कि मैं उनके टिकट बेचूं, लेकिन उनको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ।
0: इसके पीछे क्या वजह, क्यों आते हैं उनको देखने के लिए लोग?
1: क्योंकि लोगों को ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए चीप किस्म की, उसके लिए कहीं भी किसी वक्त भी कहीं भी बंदा जा सकता है।
2: देखें नेगेटिविटी की भी अपनी वैल्यू होती है ना, एक पॉजिटिविटी की वैल्यू है, नेगेटिव लोग देखना चाहते हैं कि यार इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, ये क्या शख्स है, इसको देखें तो सही कि लोग वाकई सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, तो नेगेटिविटी देखने के लिए भी तो लोग
1: क्यूरियोसिटी से लोग
2: जाएंगे।
0: ठीक है, लेकिन एक चीज, हमारे पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट, आप सबके लिए एक सवाल करूंगा और वन बाय वन में उसका आंसर लूंगा।
2: अच्छा,
0: क्विक एंड शॉर्ट, आप इसको वल्गैरिटी कहते हो? इसके गाने मैंने सुने हैं, थोड़े देखे हैं, सामने आते हैं क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर फन, गंदे हैं। हमारी आज की अगली नस्ल जिन रैपर्स को सुनती है, जो इंग्लिश में वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आशा से शुरू होते हैं।
1: सुनते हैं, सब कुछ होता है, और मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा उन्हें हर चीज की नॉलेज है, बच्चों को यहाँ की अवेयरनेस है इस टाइम, मतलब उन वो जो एजेस में उन्हें जो सब कुछ पता चल गया जिसकी चीज की उन्हें अवेयरनेस है, हमारी एज में मतलब ये चीजें नहीं थी जब हम थे यंग। बस ये कि आप उन्हें समझाएं, बच्चों को हर चीज डिस्कस करें, ऐसा उनके साथ रिलेशनशिप रखें कि आपके साथ जो है वीकली डिस्कशन हो, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में जरूर आप देखें, और यू नो कीप पोस्ट, कीप अपडेटेड।
0: बाबा जी
2: देखिए सर जी, जमाना बदलता रहता है, जब हमने फिल्में देखनी शुरू की उस वक्त हीरोइन का हाथ पकड़ना भी जो है सेंसर वाले काटते थे, उसके बाद मुख्तलिफ द्वार आते थे, अब बात जो है बहुत आगे बढ़ गई। अब जो आपने रैपर्स की बात की है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम आपस में हम लोग कहना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो एक रिवाज बन गया। आप अपने बच्चों को देखें, जब दूसरे दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो सारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि सब्र शुक्र करके बैठ जाना चाहिए।
5: और मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को भी इस तरह का त्याग करना चाहिए कि वो इस मूवमेंट पे इनको फॉलो मत करें।
0: शौकत अली जो गंदे गंदे गाने अजकल चलते हैं, तुम क्या आते हो इसके बारे में?
5: तेन
0: पता ना इत्थे एक नंबर है बहुत वड्डा, उन्हें कहंदे ने 911। ए ना एक मैं तेरी सारी उम्र जमानता ही करांदा रहा बाहर जाना भी यही कह दे। आपका क्या कहना
3: सर? घर का माहौल जो है ना वो बहुत असर रखता। आप अगर एक पौधे को टाइम पे पानी देते हैं तो वो बीज बड़ा होके एक दरख्त बनता। तो हमें अपने बच्चों को इस अंदाज में परवान चढ़ाना चाहिए कि जो हमारा माशरती माशी और इस्लामी माहौल जो है ना वो उनके अंदर सारी चीज़ें पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतने बैकवर्ड हो जाएं, इतने पीछे रह जाएं कि वो दौड़ में शामिल ही ना हो सकें, लेकिन उन्हें अच्छे बुरे की पहचान माँ और बाप दोनों का फर्ज है कि वो उन्हें दें।
0: जरूर। सो खवातीन हज़रात, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, राइट आफ्टर द ब्रेक विल सी यू अगेन।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं।
6: TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अत्यात और जकात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं, तो TCF का साथ दें और बदले लाखों जिंदगियां।
7: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.

$2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

0: बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
1: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577। द बेस्ट गोरमे पिज्जा विद बेस्ट प्राइसेस, पिज्जा पॉप 3075 रिचवे ड्राइव मिसिसागा और विजिट pizzapop.ca। फैमिली के साथ डाइन इन करें या टेक आउट, बच्चों और बड़ों सभी की पहली चॉइस पिज्जा पॉप। लजीज और मजेदार तंदूरी चिकन पिज्जा, चीज स्टेक पिज्जा, चिकन शवरमा पिज्जा। एक्सक्लूसिव फैमिली ऑफर, लार्ज तंदूरी चिकन पिज्जा, लार्ज चीज पिज्जा, टू डिपिंग सॉस, थ्री कैंस ऑफ पॉप फॉर 24.99 ओनली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेक आउट ऑर्डर कॉल 905-828-0985। इट्स 905-828-0985। पिज़्ज़ा पॉप 3075 रिजवे ड्राइव मिसिसागा। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्स रोड मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
3: जी हाँ, 905-783-1922 अहमद मलिक साहब के रबते के नंबर है। मोर देन 2 decade का इनका तजर्बा है। खुदा न खास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, इन्हें कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे, आसान एकसाथ बनवा देंगे। बैंकरप्सी करना है आपने या कॉर्पोरेशन के कुछ मसले चल रहे हैं तब भी आप इनसे रब्ता कीजिए। सीबा लोन का मसला है, हर तरह का कर्ज जो है आपका माफ़ करवा देंगे। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमसे लिया करते हैं, कुछ ओवरऑल सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदेद कहेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
3: मलिक साहब, आपने भी यकीनन देखा होगा जो रिपोर्ट आई है ब्रैम्पटन में, हाईएस्ट रेट ऑफ मॉर्गेज डेलिंक्वेंसीज है। कि मतलब क्या इससे मुराद क्या है कि मॉर्गेज नहीं दे पा रहे हैं, कुछ हालात बहुत खराब हो रहे हैं, और ये क्रेडिट पे क्या इफेक्ट करती है?
4: बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, बिल्कुल जी, ये रिसेंट रिपोर्ट अभी आई है हमारे सामने कि ब्रैम्पटन इज द हाईएस्ट जो शहर है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेलिक्वेंसीज है मॉर्गेज की। मीन टू से कि मॉर्गेजेस जो हैं वो टाइम पे नहीं हो पा रही और ब्रैम्पटन के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसमें सबसे ज्यादा आगे हैं। कि मॉर्गेज जो है अब टाइम पे नहीं हो रही, यानी कि सिचुएशन इस कदर खराब हो चुकी है कि देखें, अगर तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं, आपकी कोई लोन की पेमेंट्स हैं, अगर उस तरफ आपकी ड्यू डेलिक्वेंसी

0: पॉलिसी आती है तो उसका हल मौजूद है, लेकिन अगर आपने अपनी मॉर्गेज में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको छत चाहिए, आपको एकोमोडेशन चाहिए, और अगर मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज में आनी शुरू हो गई हैं तो अर्शद भाई क्या होता है, देखिए अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट है $5,500 और मैंने उसको बिहाइंड कर दिया, मेरी पेमेंट NSF चली गई है, तो ये $5,500 पहले तो ऑटोमेटिकली ये 5700 बन जाने हैं, और अगर ये 3 महीने तक मुसलसल ये काम चलता रहता है तो 5500 में तकरीबन इतनी अमाउंट ही मेरे लैंडर ने वकील की फीस की तगा लगा देनी है कि अब आप 3 महीने की मॉर्गेज बिहाइंड हो गई है, मैं आपकी प्रॉपर्टी फोर क्लोजर के लिए लेके जा रहा हूँ, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वकील की फीस पे करें, यानी कि वो एक छोटी सी अमाउंट आपको काफी ज्यादा पेनलाइज कर सकती है, और मॉर्गेज आपको बाहर सूरत पे करनी है। अब इसका क्रेडिट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है कि अर्शद भाई 2013-2014 तक ऐसे होता था कि मॉर्गेजेस जो हैं ये क्रेडिट रिपोर्ट पे शो नहीं करती थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि चाहे आपकी ए लैंडर से मॉर्गेज है, बी लैंडर से मॉर्गेज है या सी लैंडर से मॉर्गेज है, आपकी मॉर्गेज आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है।
1: अच्छा।
0: पहले ऐसा होता था कि अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट बिहाइंड हो भी गई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक को पता चलता था कि मैंने मॉर्गेज बिहाइंड चल रहा हूँ मैं। अब क्या है कि मेरी क्रेडिट रिपोर्ट पे ये 100% रिफ्लेक्ट करती है, और मॉर्गेज रिन्यूअल के वक्त या मॉर्गेज रीफाइनेंस करते वक्त ये चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रबल कर सकती है कि आपकी मॉर्गेज टाइम पे नहीं जा रही।
1: ओके।
0: तो बहरहाल सिचुएशन जो है अर्शद भाई इस टाइम काफी ज्यादा खराब हो रही है, खराब हो चुकी है, लेकिन बहरहाल हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा ऐसा ही कोई लिस्नर है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए हैं, कंज्यूम किए हुए हैं, आपसे पेमेंट नहीं की जा रही, आपको किसी तरह के भी लीगल एक्शन के नोटिसेज आ रहे हैं, तो फिर ये जो लीगल ऑप्शन हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप इस ऑप्शन के मुतालिक डेफिनेटली सोच सकते हैं। आपका कर्जा 75-80% तक हम प्रपोजल में माफ करवा सकते हैं। अगर सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, आपने बैंक्रप्सी फाइल करनी है, तो बैंक्रप्सी फाइल करने से लेकर बैंक्रप्सी के डिस्चार्ज होने तक आपको मुकम्मल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है और हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने की जी हम गारंटी करते हैं। शर्त मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9057831922 है, 9057831922। इसके साथ साथ हमारे तमाम वो दोस्त जिन्होंने अभी तक सीबा के पैसे नहीं दिए, वो आप ये बात याद रखें कि जिस दिसंबर में इसकी डेडलाइन आ रही है और गवर्नमेंट काफी ज्यादा इसको रिकवर करने के लिए डिफरेंट एंगल्स पे इस टाइम काम कर रही है, तो अगर आप सीबा के लोन से ये जो आपके सर पे लटकती हुई तलवार है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपके क्रेडिट को अफेक्ट किए बगैर आपकी इससे जान छुड़ाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नंबर अगेन इज एब्सोल्युटली द सेम अर्शद भाई, 9057831922 पर मेरे से कॉन्टेक्ट किया जा सकता
1: है। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: नंबर नोट कर लीजिए, अहमद मलिक साहब को अभी कॉल कर लीजिए, अगर कर्ज के बोझ तले अगर आप आ गए हैं बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कर्ज आपको माफ करवा देंगे। 9057831922 PSL 11 के एलिमिनेटर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्स मैन जो पहली दफ़ा इस लीग में शिरकत कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो 3 दफ़ा टूर्नामेंट जीत चुके हैं 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतवार को पेशावर जलमी और हैदराबाद के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन आखिरी जो उनका ओवर था जिसमें 6 रन चाहिए थे उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए हैं, और ये मुकाबला जो है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। हैदराबाद किंग्स मैन ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 186 रन स्कोर किए, उनके भी आखिरी 4 ओवर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर बना था और 4 ओवर्स तक मुकाबला तकरीबन बराबर था। आखिरी ओवर्स में तो लग रहा था कि इजीली जीत जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की और उन्होंने 6 की बजाय 4 रन दिए, और यूँ 2 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये मैच हार गई। फाइनल पेशावर और जहाँ हैदराबाद जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जो 7वीं और 8वीं टीम जो शामिल हुई थी उनमें से एक टीम जो अब फाइनल में जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
3: ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे رابطہ कीजिए तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेजेस इनके होते हैं साथ साथ मनी ट्रांसफर के सर्विसेज इमिग्रेशन के सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और कमल रशीद साहब रोहिरवा हैं सीईओ हैं तमाम ऑपरेशंस को और खास तौर पे हज के हवाले से और उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं वहां जाकर चीजों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है खुशामदीद कहेंगे कमल भाई अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया शेफटी साहब और आपकी वसासत से मैं अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश
4: थैंक यू वेरी मच पहले मुबारकबाद बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका इस पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह तआला आगे बात करेंगे मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए
5: जी मैं शेफटी साहब सच कहूं तो मैं समझता हूं कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे जी हां पीआईए ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिलीज जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मई एंड में मुश्किल है तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है टाइम आपके पास है अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है आप अभी 24 जून को जा रहे हैं आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं तो और ये भी बताता चलूं कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है उमरा के वीजे खुल जाते हैं तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का उमरे का ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: पे कॉल कर लीजिए एक तो 15% सेल है प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं चाहे दो लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों आप इनसे रब्ता कर लीजिए अच्छा हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए
5: जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला शक विशक नहीं और कुछ खसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत है हमारे लिए बेशुमार एक बेशुमार कहने के अनमोल तोहफा होती है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अर्शद भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए, यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं। और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ। आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہا کہ اس کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کانسل کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8-10 दिन लग जाते हैं। तो अपना रिक्वेस्ट है बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें। इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रेट के लिए नंबर है 905-275-3555।
4: थैंक यू वेरी मच कमान साहब, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
5: थैंक यू।
4: नंबर नोट कर लीजिए 905-275-3555। एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं, पाकिस्तान में पीसी लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है, और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज खाने वालों के लिए। 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पेशल डिस्काउंट है, रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे, और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका, रिजवे प्लाजा में, और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 905-514-7877। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रबते के नंबर 416-593-0003। टोरंटो और इसके किरदनवाह में मगरिब की आजान का वक्त हो गया है। دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔

0: mission since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Juni Global Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से 50,000 डॉलर सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे जायद है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: हाँ जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए, शम्स रहमान साहब से राब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकवेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है, इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे रابطہ करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप रابطہ कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरीडे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरीडे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रابطہ कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रابطہ कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शम्स भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक यू।
2: और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजस कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल, आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल ज़मान साहब। स्टे ट्यून।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswits.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
3: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अपने सिसागा के बाद स्कारबरो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678.
4: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
5: 416-904-2046 or 416-662-7861.
6: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
7: SSR ऑटो सर्विस 921 एप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर भी अवेलेबल है। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से रابطہ कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे।
8: अल
6: الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9582800009. It's 9058280009. You log in ہو alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری.

0: वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब
1: ठीक
0: हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम को वही जो यूनिट्स हैं वो 40-40 रुपए में जो है ना वो दे
1: ठीक
0: दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वहां से कर रहे हैं तो
1: सही,
0: उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ
1: कुछ
0: जो
1: ना
0: है वो
1: कुछ
0: जरूर
1: होना
0: मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: चलें और चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडेंट्स में रबते के नंबर 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर। 6910, 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: वालेकुम
1: जी वालेकुम सलाम।
2: है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा। हम तो खैर इससे हुई संभाला है, ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। तो और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है, ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई
1: टाइम
2: साल लग
1: लगता है।
2: जाते हैं,
1: ठीक
2: लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे और अल्लाह करे पाकिस्तान कम से कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेंगे, एटलीस्ट के
1: ठीक
2: जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है तो ये एक अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्कु करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये
1: सही
2: फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता
1: सही
2: हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतनी पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में भी बढ़ने के बड़े चांसेस हो गए खबरों में आया था और
1: ठीक
2: पूरी दुनिया ही यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस और
1: सही
2: इवन अमेरिका का भी यानी कि
1: जी,
2: खबरें
1: हम
2: आने
1: अभी
2: के
1: कुछ
2: सिक्स
1: पढ़ें।
2: डॉलर पर गैलन तो ये तो बहुत
1: बिल्कुल
2: बड़ा
1: ठीक,
2: यानी कि वो है।
1: थैंक यू सर,
2: तो बहरहाल
1: बहुत
2: अल्लाह
1: शुक्रिया।
2: ताला जो है बेहतर
1: ठीक, थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
3: कैसे हैं आप? ठीक
1: जी,
3: है।
1: शुक्रिया सर, थैंक यू।
3: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता
1: जी
3: है,
1: जी
3: वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है और किसी डिसीजन पे लाती है।
1: जी
3: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन इस्लामाबाद बंद रहा है ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला है, अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे हैं ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो। पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो। एक तो बात ये थी, दूसरी आखिरी बात में जो कहना कहना चाहूंगा कि जो जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है, अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक नहीं होता, ये मैंने अब ये इनसे जो सवाल पूछा है मैंने जवाब दे
1: किसी को। वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
4: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब ये देखें, जब तक ये जंग लगी है ना इसमें मसाइल तो होंगे और इन मसाइल में अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाई उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, IMF भी है। और सबसे बड़ी बात जो है, देखिए पाकिस्तान के कम से कम कहने पे चले सीज फायर तो हुआ है ना भट्टी साहब, ये तो दुनिया तो तस्लीम कर दी है।

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
10: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
11: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
12: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 6472957861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti 6472957861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

Coke Studio, Season 15.

0: मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ एंड इट माइट कम अक्रॉस एज ए आई डोंट नो इट मे कम अक्रॉस समथिंग वेरी वियर्ड मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लिप सिंक कर रहे हैं दैट्स हाउ गुड यू आर
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच

0: और चाय दूं?
1: नहीं, काफी।
2: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी।
0: वालेकुम अस्सलाम पुत्र। अरे पुत्र, तुझे पता है तेरी खाला जुबैदा ने ना कल घर में दुआ रखी है और मैं भी ना पीर साहब के मजार पे मन्नत मांग कर आई हूँ।
2: पर अम्मी जी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है
0: ना बेटा, दुआओं में भी बड़ा असर होता है।
2: सही है।
1: कल के मैच का ज्यादा प्रेशर मत लेना तुम, और ये हुक शॉट खेलते हुए अपना टेम्पर मत लूज किया करो, ध्यान से खेला करो।
2: जी अब्बा जी।
1: और नजर मोहम्मद साहब ने इस मैच के लिए खास कर दुकान पर नया टीवी लगवाया है। आधे सियालकोट को उन्होंने अपने वहां मधु किया हुआ है।
2: चाचा जी भी बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं वैसे। बहुत मिस करूंगा। बस ये बताओ, हो गया पैक? फोन पे फोन आ रहे हैं यार।
3: जानती हूँ कितना याद करोगे मुझे।
2: मैं तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ, हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ।
3: अच्छा, तभी लेडीज इनक्लोजर के सामने फील्डिंग करते हुए 32 ही निकली हुई थी तुम्हारी, है ना?
2: मुझे मेरा कैप्टन है ना, वही खड़ा करता है मुझे वहाँ पे। वो कहता है मेरा सबसे गुड लुकिंग बंदा वही खड़ा होगा। बस वैसे भी जिस लड़की को देखता हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है।
3: अच्छा, वो डैडी का फोन आया था, वो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊँ, फिर मैं वहीं से तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊंगी। हाँ प्लीज। तुम्हें पता है डैडी और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पिछले मैच में तुमने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी।
2: कम ऑन यार, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे कितना पसंद करते हैं, छोटी तारीफें नहीं करूंगी।
3: 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है अकबर।
2: तुम्हारे डैड 40 साल में नहीं बदलेंगे मेरी गुड्डी। ओए, तुम्हारी बातें सुन रहा है छोटू? सो जा, सो जा, सो जा, सो जा।

0: वन स्कॉच विद वाटर. तू क्या लेगा?
1: ऑरेंज जूस.
0: ऑरेंज जूस पिएगा?
1: क्योंकि शायद तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ.
0: ऑरेंज जूस.
1: भाई कल मेरा फाइनल है, कुछ तो ख्याल कर.
0: तो जानता हूँ फाइनल तू ही जीतेगा. मैं एक मिनट शेख साहब से मिल के आ रहा हूँ.
1: यही रहा. वी हैव टू लीव अर्ली.
0: हाँ आई नो.
2: बंदे को अजहर मजीद कहते हैं
1: जी.
2: आपसे पहले भी बात हुई थी साउथ अफ्रीका वाली बुक. पिछली सीरीज में भी आपसे कांटेक्ट किया था. कल के मैच का भाव बहुत ऊपर है.
1: मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है.
2: अगर एक मैच फिक्स हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है?

0: क्यों, क्या बात?
1: चाचा टीवी लगाए तो।
0: अच्छा।
2: ने अपनी हिरासत में ले लिया। अकबरदीन को होटल के कमरे में मनुष्यात के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर अकबरदीन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया, बल्कि मुल्क भर में मौजूद क्रिकेट के लाखों शायकीन के दिल भी टूट गए। इस वाकये से दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। उधर दुबई पुलिस भी अकबरदीन से मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है।
3: I don't know.
4: I want to know. I want to know. Who is your boss?
3: What?
4: Who is your boss? Answer me. Kasar Ras bane kalimana Pakistani. Kasar Ras. Answer me.
3: Kya keh raha hai friend?
4: Answer me.
3: I don't know.
4: Answer me.
3: I don't know.
5: ये सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए।

0: मैं बेकसूर हूं। अब जानते हैं मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हूं।
1: तुम्हें यहां आने की इतनी जल्दी थी? तुम जैसे अपस्टार्ट लोगों का यही तो मसला है, जहां थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी शोहरत मिली, अपने आप से बाहर हो जाते हो और इवेंचुअली तुम लोग ऐसी जगहों पे आके एंड करते हो।
0: ये आप कैसी बातें कर रहे हो?
1: मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पेपर्स हैं, इन्हें चेक कर लेना।
0: ये क्या है?
1: डाइवोर्स डीड है। मेरी बेटी सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उसने साइन भी कर दिए।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है।
1: जब शौहर दुनिया के सामने मुंह काला करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो आपस का मामला नहीं रहता।
0: आप मेरा घर तबाह करने की कोशिश नहीं कर सकते।
1: मेरा घर तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुमने मेरी अकलौती बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था।
0: देखिए, ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं, अभी मुझे निकलना है यहाँ से।
1: अब सारा और मिकाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
0: मिकाल मेरा बेटा है।
1: था। मिकाल तुम्हारा बेटा था, आज से वो मियां आसिफ कुरैशी का नवासा कहलाएगा। बस
0: ऐसा नहीं हो सकता।
1: मैं मिकाल को इतना दूर ले जाऊंगा कि अगर गलती से भी उसे अपने बाप का ख्याल आए तो वो उसे बहम लगे, समझे?
0: रुको, रुको, ये जुल्म है। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते।

0: ख्याल है पुत्र, ये तुम्हारे और ये तुम्हारी मैन ऑफ द मैच के, ठीक है?
1: मलक साहब, मैन ऑफ द मैच के तो पूरे 1000 रुपए दे दें, उसमें से भी 500 रुपए काट लिए आपने।
0: ये जो पैसे कटे हैं बेटा, ये क्लब में लगेंगे स्वीटू। हमेशा याद रखो, खूदी मिट्टी खून ही लग दिए।
2: मान ना मान, ऐसे जूस ही वह तो कब का हाल है।
1: छोड़ ना काशी, ऐसा तो पहले भी होता रहा।
2: ओ शान दी नई फिल्म लगी है यार, आजकल के देखना। दौड़ दौड़ के आने, दौड़ जा।
1: तू जा, मैं घर जाना।
2: ओ मेरा शून्या, आप ली चूड़ियां लेनी है, चूड़ियां लेनी है।
1: तू तो जानता है ऐसे मौके के इंतजार में रहता हूँ मैं।
2: शहजादा है तू। वैसे वो वसीम अकरम की जगह शुएब अख्तर ही कह सकता था। अच्छा
1: काली आंधी कहता तो है तुझे।
2: चुप है।
3: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: की हाल?
4: मैं ठीक हूँ। ले भी सलमा, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ ना कि तेरी टीके पांव ही खुल जाएंगे।
3: नौकरी पक्की है ना?
4: हाँ हाँ, तुझे तो पता ही है कि सोरा ने कभी कच्ची नौकरी वालों को मुंह नहीं लाया।
1: सलाम अलैकुम अम्मी।
5: वालेकुम सलाम।
1: ओ खाला, सलाम अलैकुम।
4: वालेकुम, कैसा है तू?
1: मैं ठीक।
3: सुना, मैच कैसा रहा?
1: अम्मी मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच।
5: ओ जिंदा रहे, जिंदा रहे। देखिया,
4: मैं तो कहती हूँ कि इसको भी किसी चंगी जगह पर सेट करा दे, मैं इसके लिए भी कोई सोनी मनमोनी सी ढूंढ कर लाऊं।
1: ओ खाला, खुदा के लिए, मेरी अभी शादी में बड़ा टाइम है, और वैसे भी अभी मुझे टीम में जाना है, है ना?
4: कर लो गल। पागल जिया।
1: बाजी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ।
6: शाहद, तू सारे पैसे चूड़ियों पे खर्च कर देता है।
1: तू मेरी पैन है, पैन पे तो खर्च करता हूँ, और वैसे भी तुझे पसंद तो आती है ना।
6: हाँ लेकिन।
1: अच्छा बाजी, ऐते मैनू दसो, ये खाला चुगला कब से आई हुई है?
6: शाहद,
1: मजाक कर रहा था। वैसे ये रिश्ता तुम्हें कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा है
6: शाहद? चल जा लेके जा, चल।
4: देख सलमा, रिश्ता बहुत चंगा है, तू ये हाथ से न जाने देना।
3: जी
4: बस, तूने ना मुंडे को कमरा ही सजवा कर देना
3: जी।
4: हाय हाय, ये टीवी, एसी, फ्रिज और पलंग, आखर को ये चीजें हमारी आयशा के काम ही तो आनी है ना। और साथ में लाख दो लाख थमा देना, ताकि मुंडा अपना कोई जाती कारोबार भी शुरू कर ले।
3: आपा तान तो पता है मेनू फैक्ट्री तो किन्ने पैसे मिलते ने, और आशी दे सिलाई कढ़ाई दे पैसे होंदे ने। बस
4: मेरी बात सुन, तेरी टी के हाथ का भी मसला है। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंडे वालों को राजी किया इस रिश्ते के लिए।
3: जी
4: अब कह ना उसके प्यो को भी कि वो भी कुछ हया करे ना, उसका तो अपने शुगर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती।
3: जी
4: चल, मैं अब जा रही हूँ, उनके साथ ही आऊंगी तेरे घर अब। ठीक है, चंगा फिर।
3: ठीक,
4: रब रख,
3: रब रख।
6: मुझे नहीं करना व्याशा, ये मुंह पर पड़ के पैसे मांगते हैं लोग, हया भी नहीं आती लोगों को। बेचारी औरत फैक्ट्री में काम करती है, कहाँ से कमा के लाएगी पैसे?
1: बाजी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो हूँ ना।
6: लेकिन ये हाथ, इससे तो बेहतर ये हाथ
1: नहीं आता। ऐसे ना करो बाजी, ऐसे ना करो। तुसी
6: मैं तंग आ गई इस मजदूरी से।
1: बाजी ठीक ही तो है, लोगों को क्या मालूम कि तुम सारा कार का काम कर लेती हो। लोगों के तो मुंह से निकल जाता है, और जिनके हाथ है वो लोग भी तो बेकार ही बैठे होते हैं ना।
3: वे
1: हैं?
3: शायद
1: आया। अम्मी जी,
3: जा पत्ती ले के आ।
1: अच्छा जी। बाजी मैं जरा जाके पत्ती ले आता हूँ, वरना पट्टी साहब आ गए ना तो उनकी चाय के लिए पत्ती नहीं होगी।
6: ओ तू फिक्र ना कर, अब बात जल्दी नहीं आएगा, शेरे का मुकाबला है ना आज।

0: अब मेरी जान मेरा चन है।
1: पट्टी साहब आपा सोहरा आई सी, कह रही सी कि वो मुंडे वाले मन गए ने, मुंडा रेलवे च मुलाजिम है, कह रही सी कि एक कमरे का समान देना होगा ते होर 2 लाख रुपया चाहिए।
0: ओ याद आया करमाली, कुदू 400 रुपया दे दे, मेरे शेरे आस्ते पिस्ते तो बदाम खत्म होए ने।
1: तुसी सुनिया नहीं मैं तन की के मैं तनु तड़ी ती दे रिश्ते बारे गल कर रही हूँ।
0: ओ सुन लिया ना, होर की कहां, गुर्दा वेच दिया अपना। जाके अपने फैक्ट्री वालों नु पूछ जे कोई कर्जा वगैरह दे दें ते
1: इन्ने पैसे किन्ने देने ने। देवी दिए तो वापस कैसे करेंगे?
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम। जनाब किधर?
2: प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ।
0: माशाल्लाह, मैं जनाब नू शायद अफरीदी आखा के शायद पट्टी साहब।
2: वैसे सूट तो अफरीदी करता है।
0: मैं जुत्ती मारनी है खिंच के तेरे मुंह ते। ओए बाले को होटल दे काम करना से क्यों नहीं गया?
2: गया था वहां, उसने खाने के ऑर्डर लेने वाली टेबल पे बिठा दिया था मुझे।
0: मैट्रिक पास एथे वजीरे आला लग जाएगा?
2: पता नहीं जी, वैसे वजीरे आला दी रिक्वायरमेंट मैंने कभी चेक नहीं की थी।
0: बकवास बंद कर, प्यो जी का मजाक उड़ा रहे हैं।
2: तो आप जो करते हैं वो क्या है? वो हमारा मजाक उड़ाना नहीं है?
1: शेद,
0: मैं तेरा मुंह तोड़ देना ही।
2: कार में एक जवान बेटी बैठी है और आपको इससे ही फुर्सत नहीं है?
1: शेद चुप कर जा शेद।
2: नहीं अम्मी जी नहीं, जरा इनको भी तो सुनने दें कि हम किस हाल में बैठे हैं।
0: एनु चुप करा ले सलमा, मैं तेनु कह रही हूं।
3: ओए शायद चुप कर।
2: अम्मी 10-10 घंटे बैठकर मशीन के सामने काम करती है और बाजी सिलाई कर करके आधी हो गई है और आप कुछ को बादाम खिलाने के लिए पह चाहिए, इसकी तो मैं
3: अल्लाह के वास्ते चला जा।
0: ये तो कोई मेरे शेरे दे बारे में गल की थी थे।
2: जितना मानना है मान ले, लेकिन कसम खुदा दी जितनी शेरा मुझे अकेला मिल गया ना चिकी चिमड़ और दूंगा। आपका सारा दूर हम पे चलता है।
3: अल्लाह के वास्ते जा शाहिद।
2: जाता हूँ बाजी, जाता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना छोड़ा क्योंकि मेरी सारी फीस मेरी बाजी देती थी, समझे पट्टी साहब? अल्लाह करे इस पट्टी का हाथ फेल हो जाए, बेड़ा कर खोजे इसका।
1: बस जवान औलाद ते हाथ चुक दे पट्टी साहब।
4: ओ चल छोड़ना ही है।
2: कैसे छोड़ दूं? मार मार के कमीज पाड़ दी है।
4: तुझे शेरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था।
2: एक बटेर ही तो है, कोई पीर साहब थोड़ी ना है। जिसे कुछ कहेंगे तो गुनाह मिलेगा। इतना तो कोई सोतेला बाप भी नहीं मारता होगा अपने बच्चों को।
4: ऐसे कहते तो सही है तेरे अब्बा, सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, पैसा एक भी नहीं कार लेके आते।
2: वो दिन भी आएगा, तू बस एक बार अपने पाई नू टीम भी चा लेंदे, फिर देखना तेरा पाई भी इसी तरह बोर्ड पे लगा होगा।
4: इसको तो बी बैंक ने उठाया, तुझे तो अल्लाह ही उठाएगा।
2: अल्लाह तो उठाएगा मगर ये लोग भी उठाएंगे। तेरा भाई सिटी कप में ऐसी परफॉर्मेंस देगा फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सियालकोट की टीम में आने से।
4: ओ मेरे सोने, टीम में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
2: अच्छा, अगर हम इस बार का टूर्नामेंट ही जीत लें तो कितनी देर लोगों की नजरों से बचेंगे?
4: पिछले साल जो क्लब कप जीता था उसकी परफॉर्मेंस में और हमारे क्लब की परफॉर्मेंस में तूने फर्क देखा?
2: तो हम मेहनत करेंगे और वैसे भी परफॉर्मेंस कोई आसमान से नीचे नहीं उतरती।
4: ये बात मलिक साहब को कौन समझाएगा?
2: मैं समझाऊंगा, तू चल।
4: नहीं?
2: हाँ हाँ उठ यार, चल
4: खोल तो जा,
2: उठ यार,
4: एक मिनट जूती तो पहन दे।
2: चल यार जल्दी, चल चल चल चल।
5: हाथ होला ना कपाल
6: जरे, पैसे काटो पैसे और देने के नहीं कर देंगे तनु।
4: बंदा पूछे मलिक साहब आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया?
5: बूटे गुज्जर को आम आदमी ना समझो।
2: लेकिन उन्होंने मार कुटाई क्यों की?
7: उसकी बीवी को छेड़ा था मैंने।
4: कब?
7: अब मैं शक्ल से तुमको ऐसा लगता हुआ है?
5: 18 लाख रुपए देने थे उसके,
7: टैक्स काट के बता रहा है 20 लाख देने ने।
4: 20 लाख?
5: हाँ, 4 साल पहले लिए थे, अब तो उसने फट पड़ना है ना।
2: मगर मलक साहब, 20 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं।
7: तो पुत्र क्लब जेड़ा है ना, और मुफ्त में नहीं चलता। और मेरी बीवी सही कह रही थी कि पुराने असासे बेच के जान छुड़ाओ। हर उसकी बात मैंने मानी, यही नहीं मानी मैंने।
5: जान छूट जाएगी जब बूटे गुजर ने कब्जा किया ना ग्राउंड पे और दफ्तर पे।
2: क्या मतलब?
5: मतलब उसने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ग्राउंड भी मेरी, दफ्तर भी मेरा। हां जी,

0: शाहिद, ओए यहाँ क्यों बैठा है? बुखार हो जाएगा, चल नीचे चल।
1: काफी अरसे बाद बारिश हुई है, सोचा थोड़ा मजा ही ले लूं।
0: मजा ले रहा है या आंसू छुपा रहा है? काशिफ आया था मेरे पास, सब बता दिया उसने मुझे।
1: पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है।
0: अल्लाह एक बुआ बंद करता है ना, तो 100 खोल भी देता है। देखना जब उसने देना है ना, तो ना वक्त देखना और ना बंदे को देखना, सारे रास्ते खोल देने।
1: मगर इधर सारे रास्ते ही बंद हो गए।
0: छोड़ सारी बातें, चल खड़ा हो, चल उठ, उठ भी, चल नीचे चल के मुझे बता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाएगा, मैं इस्त्री कर देती हूँ। आजा शाबाश।
2: और क्यों ए? ओए अब क्यों आए हो?
1: इकबाल साहब मुझे यहाँ काम करना है।
2: ओए अकल ठिकाने आ गई तेरी, ओए अब मैच नहीं खेलना?
1: नहीं जी।
2: ओ वड्डा शाहिद अफरीदी, ओए काउंटर पे बैठना है तूने, और खबरदार जो अगर तूने कोई मैच लगाया तो, यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है वो भी न्यूज। चल जा टेबल से ऑर्डर ले।
1: जी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया।
2: चल सही है।

0: ओ वसीम, ये रोटी इन लोगों को दे, वो क्या करते हैं यार?
1: क्रिकेट के दीवानों के लिए वो घड़ी आ गई है जो उनके ख्वाबों को देगी हकीकत का रंग। क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का पहला अंडर 19 T20 कप, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। क्रिकेट के मैदान में अपनी महारत साबित करने का ये है एक सुनहरी मौका।
2: वो किथे गया शायद, और ढूंढो किथे।

0: और मैंने इश्तिहार पढ़ लिया था यार।
1: तो मलक साहब सोचना क्या है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा ये क्लब बचाने का?
0: और तू पागल हो गई, और बड़े हाई लेवल की क्रिकेट होगी, हाई लेवल की।
1: अरे हमने कौन सा तलवारें लेके मैदान में उतरना है, हमने भी तो क्रिकेट ही खेलनी है ना।
0: मैं तुम्हें समझाता हूँ, और पहले हम लोगों ने सियालकोट के क्लबों को हराना है, और अगर ये हो गया तो फिर 12 टॉप क्लास के क्लब हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है।
2: ओ यार मलिक साहब,
0: हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ आई?
1: बगैर खेले कैसे कह सकते हैं मलिक साहब के मुकाबला नहीं हो सकता?
0: अभी तुमने बड़े शहरों की टीमें देखी नहीं है, और यहाँ सवाल है 5 करोड़ रुपए का, समझ आई? ऐसे ऐसे पाए के खिलाड़ी है कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। वो हमारी आधी टीम जो है वो चपलों और पाटे पजामों वाली है। कितने कब
3: तो कितने उनका ढूंढ कोला?
0: और मैंने बाक्स दे यार, मैं बस इत पंगा ले ही नहीं सकता। असल में हम लोग पंचर हो गए यार।
1: अच्छा
0: और ये की करण दिया है?
4: और शायद
0: है ओके। ओ बेलू कितने लाते ले है?
1: मैं बड़े मलिक साहब की तस्वीर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने क्लब बनाया था ना, तो ये नहीं सोचा था कि ये हारेंगे या जीतेंगे, और हार जीत का फैसला तो खेल के ही होता है ना सर। और अगर इस क्लब के मुकद्दर में उस बूटा गुजर की भैंसों का तबेला बनना लिखा है ना, तो बने, लेकिन कम अज कम इस जिगरे वाले बंदे की तस्वीर के सामने नहीं।
4: शायद खो जा, शायद शायद ऐसा की कर रहे हैं यार,
1: हट जा। अल्लाह
0: प्यो मेरा सी गैरत अनुमान दी है, और दोवें रल के मेरा जमीर जगाओ, और ये होगा कैसे बताओ आके। आओ प्यो नु मोड़ो,

0: और स्वीटू एक बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ी गेम है।
1: क्लब तो हमारे हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्या पता इस तरह चांस बन जाए क्लब बचाने का।
0: और इन टीमों के पास एक से एक बढ़कर प्लेयर होती हैं, और हर टीम के पास एक पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है कोच के रूप में। हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है, हम तो पेंचर हो गए।
2: मलिक साहब, इतना क्या मसला?

0: और मैं क्लब का मालिक नहीं रखता, कोच कहां से लगूंगा?
1: आपके क्लब से इतने लोग खेल के निकले, उनमें से किसी को रख ले।
0: और 3-4 पुराने खिलाड़ियों से बात की थी, कोई कोच बनने को तैयार ही नहीं है। अब मुश्किल वक्त में कौन किसी का साथ देता है?
1: मेरी बाजी कहती है जब अल्लाह मियां किसी का हाथ पकड़ लेना तो ना वक्त देखता है ना दिन, फिर उसके रास्ते खुलते ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं।
0: तो ये तेरा कोच कौन से रास्ते से आ रहा है?
2: उससे क्यों नहीं बात करते?
0: किससे है?
2: वो जो गलती से पाकिस्तानी टीम में चला गया था।
3: साडे क्लब दा मुंडा?
0: ओ ते बड़ी पुरानी गल है, अब काम आनेगा वो।
1: लेकिन क्यों?
0: वो सियालकोट के लिए कभी खेलेगा ही नहीं।
1: मगर ट्राई करने में क्या जाता है?
0: ओ अब मैं उसको कहां लबू यार।
2: कल 15 अप्रैल है। कल 15 अप्रैल है
0: तो मैं की करा यार।
2: बड़े मलक साहब की बरसी है।
0: ओ पता है मेनू।
2: किसी और की भी बरसी है।
0: 15 अप्रैल? ओ स्वीटू लगता है तेरा कोच आ रहा है।

0: चाची की बरसी पे आ गया है।
1: मलिक, क्या हाल है तेरा?
0: यार ऐसी भी क्या नाराजगी अपने शहर से है स्वीटू?
1: बस अम्मी के बाद
0: 15 साल हो गए इस बात को।
1: चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए माना हूं कि तू कोई पुरानी बात नहीं करेगा।
0: यार एक मशवरा लेना है तुझसे।
1: बोल।
0: ये जो पिकअप हो रहा है, जो जीतेगा ना स्वीटू, वो यार सुना है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसे।
1: हाँ, अगर अनाउंस किया है तो मिल भी जाएंगे।
0: और सुना है जो लड़का टैलेंटेड निकलेगा उसको पाकिस्तान में अंडर 19 में सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा भी है?
1: निकाल दे।
0: है?
1: अपने जहन से ये बात निकाल दे। तेरे क्लब के बस की बात नहीं है।
0: अच्छा?
1: जिस जिस लेवल का क्लब इस मुकाबले में होगा, तुम लोगों का कोई चांस नहीं है।
0: लेकिन वो
1: क्या अगर
2: अगर आप हमारे कोच बन जाए तब तो जानत बन सकता है ना।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: यार अक्कू, ये मेरे क्लब के लड़के हैं, ये काशिफ है और ये शाहिद है।
2: देखें सर जी, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, ये तो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। हम सारे चाहते हैं जी कि इस टूर्नामेंट में आप हमारे कोच बन जाए। मैं मानता हूँ कि दूसरों की टीम के मुकाबले हमारी टीम बड़ी कमजोर है,
3: लेकिन जी क्रिकेट तो बाई चांस होती है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे कोच बन जाएंगे ना तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे ना हमारी टीम में बड़ा टैलेंट है।
1: बोल लिया। इसीलिए बुलाया मुझे क्या?
0: वो
1: ना मुझे कोचिंग करनी है, ना मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता है।
2: लेकिन सर
1: देखो, मुझे नहीं पता मलिक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन गौर से सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे तुम उम्मीदें लगाओ।
4: सर जी, मलिक साहब ने बूटा गुजर के 20 लाख रुपए देने ने, पैसे टाइम पे ना दिए तो क्लब और ग्राउंड दोनों पर कब्जा हो जाएगा। मेहरबानी ताड़ी।
1: तुम लोग क्या समझते हो, टूर्नामेंट जीत के तुम क्लब बचा लोगे? ये तो बच्चे हैं, तू क्या पागल हो गया? कहां से लाएगा उस लेवल के प्लेयर्स? और प्लेयर्स तो दूर की बात, इस टूर्नामेंट की फीस 2.5 लाख रुपए है, कहां से करेगा?
0: बीबी के जेवर बेच दूंगा मैं।
1: इसी किस्म के जाहिल पने की उम्मीद थी मुझे तुझसे। क्लब तो तेरे हाथ से जा ही रहा है, अब चाहता है कि बीबी भी जाए? बच्चों को क्रिकेट के नाम पे ख्वाब दिखाना छोड़ दे। 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 खेलते हैं, बाकी सब ख्वाब देखते रह जाते हैं।
0: और तेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए तो इनके तो होने दे। और तू तो पेंशन हो ही गया है, इनको तो ना कर यार। और एक बात मत भूल तू, ये वसीम अकरम, जावेद मियादाद, कादिर इसी ख्वाब के सहारे ऊपर गए हैं, कहां पहुंच गए हैं वो। और तू कोचिंग कर या ना कर यार, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें तो ना तोड़ यार। मैं तो जरूर ट्राई करूंगा, चाहे बीबी का जेवर बेचना पड़ जाए या कार। और 15 मिनट से ज्यादा रुकी गया तो अपने बूढ़े बाप से तो मिल ले, जिसको यही नहीं पता कि वो जीते जी तुझे देख सकेगा भी कि नहीं। ओ अकबर,

0: और चार जेब बाबा भी कमाली है।
1: कौन है?
0: अपना इमाम दीन है, जिसका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था।
1: अच्छा अच्छा, वो जरा पकड़ा गया था।
0: हाँ वही यार, इस बेचारे ने भी क्या किस्मत पाई है। बस यार, जिस अकलौते बेटे ने सारे शहर में इसको मशहूर कराया, आखिर में वही इसके मुंह पर कालक मल के चला गया। बड़ा ही अफसोस होता है इसको देखकर।
2: अब्बा जी
3: ठहरो। इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना, मर गया अब्बा तुम्हारे लिए।
2: अब्बा
3: मत कहो अब्बा मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं है, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ।

0: ये लो अपने पे है। चलो जी आ जाए मलक साहब।
1: वो फार्म वगैरह चेक कर लिए ना?
0: वो तो चेक कर लिया है मलक साहब, मगर पैसे?
1: वो पैसे है ना मेरे को?
0: है,
1: देख लो, गलत ना हो
2: मलिक। कैच इट। तू आज तक कैच नहीं पकड़ सका।
1: और तुझे तो पता है कि कैच के मामले में पंचर हूं मैं यार।
2: चल तेरी टीम को भी चेक करते हैं, उनका भी तेरे जैसा हाल तो नहीं है।
1: मतलब
2: कोच को ये मालूमात तो होनी चाहिए ना।
1: ये अपनी टीम कैसी है?
2: ये पूरी तो नहीं है।
1: और पूरे यारा ने यार की हो गया यार।
2: गौर से पढ़, ये अंडर 19 कप है।
1: अंडर? हाँ
2: तो इनकी उम्रें चेक करो।
1: अरे यार इनके तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं पड़े।

0: Ναι.
1: ये सियालकोट के वो सात बेहतरीन क्लब्स हैं, इनमें से जो जीतेगा वही सियालकोट को रिप्रेजेंट करेगा।
2: वो साढ़े क्लब जाते नहीं नजर नहीं आउंडिया,
1: इसलिए कि ये सात बेस्ट क्लब्स हैं।

0: अपने जुबैर को क्यों निकाल दिया?
1: 12 महीनों में सिर्फ 9 विकेट लिए उसने।
0: और सर जी आजकल फॉर्म में नहीं है, सही हो जाएगा।
1: कौन सही होगा कौन नहीं ये फैसला करना मेरा काम है।

0: हमारे सारे बैट्समैन को छक्के मारने की बीमारी है।
1: मजा भी तो छक्के ही चाहता है यार।
0: 11 बॉलों में टीम बाहर भी हो सकती है। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक एंड बचा सके, जरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले।
1: ओ यार ये हो जा प्लेयर में कुत्तों पैदा करा हूं।
2: दीवारें टीम से क्यों नहीं बात करते?
3: दुनिया में दो ही दीवारें मशहूर हैं जी, ओथे दीवारें चीन ते एथे दीवारें टीम। पर सीधी सी बात है जनाब, ये पैसे नहीं देते और दीवारें टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता।
0: पैसे मिलेंगे लेकिन टूर्नामेंट के बाद।
3: अना जी ना शेहों का बालू, और ये डील मेरी समझ में नहीं आती।
0: पर मैच 2.5 लाख रुपए समझ में आते हैं। फाइनल तक 13 मैचेस हैं, अगर जीत गए तो 36 लाख रुपए मिलेंगे।
3: रिस्क है, फाइनल में पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है?
0: तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएंगे इसकी क्या गारंटी
3: है? आप कोच ऊपर तबीयत के बड़े ही शेख हैं। डन
0: डन, मैं तुम्हें नेट्स में देखने के बात करूंगा।
3: हैं जी,
0: तबीयत का शेख हूं पर पेशे से कोच ही हूं।

0: फास्ट बॉलर हूँ।
1: ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे।
2: हाँ तो छोड़ क्यों दिया पा? है?
3: वो सैब, वो मैच के दरमियान मैं उसका टाइम नहीं देता था।
4: ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो।
5: ढेर दा काफिर बच्चा थे,
1: गली शादा खर बच्चा। साफ वलार दे कार में खराब हो गली शा।
4: ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो?
2: तू यार बोलो।
5: खाना खराब ने मस्क बारे में बात करते हैं।
1: बच्चा गली शा

0: बिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
4: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: करा। साहब जी आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता।
1: कौन कौन करा?
2: सर जी ये जी पागल आदमी है, बॉल ही मारे जा रहा है।
3: अभी तो शुक्र करो यार कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिए, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठा कैसे बचता है?
1: खान अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे?

0: इधर आ जाओ सब, कमन कमन जल्दी, ये कल का बैटिंग ऑर्डर है। दीवारें 3 और 7 ओपन करेंगे, उसके बाद जुबैर, सलीम, नवाजिश और फिर शायद।
1: कोच में पहले नहीं जाऊंगा,
0: रेस लगानी है कि क्रिकेट खेलनी है, तो जल्दी जाने की टेंशन है।
2: ओ सर जी, इसमें तो बॉलिंग का लिखा ही नहीं हुआ।
0: मैं जानता हूँ, ये मैं कल सुबह बताऊंगा, आप लोग जा सकते हैं।
1: चल यार।
0: इधर आओ शायद।
1: जी कोच।
0: ये लो।
1: नहीं कोच, मैं घर से खाना खा के आया हूँ।
0: मैंने खाने के लिए नहीं दिया। ब्रेक करने की कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करो रेस्ट घुमा के।
1: मगर क्यों कोच?
0: पहला ओवर कल तुम कराओगे।
1: मैं क्यों?
0: तुम्हारी गेंद तेज पड़ती है लेकिन गुगली का मसला है, रिस्ट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए।
1: मगर
0: क्यों, क्या हुआ? शायद आफरीदी की तरह बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी।
1: करनी है जी।
3: यार ओपनिंग में फास्ट बॉलर भेजते, तुम स्पिनर भेज रहे हो।
0: कल देख लेना।
3: कल देख लेना, क्या क्या देखूंगा मैं? ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये बॉल और ये सेब में क्या साइंस है।
0: ये तो अब्दुल कादर से पूछो, जिसने शेन वॉन को सेब के जरिए गूगली सिखा दी थी।
3: ओ यार।
4: ओए, छोड़ दे सेब को और सो जा।
1: तुसी सो जाओ बाजी।

0: यार 15 साल हो गई है, निकाल से कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा।
1: पहले सालगिरह पे खत लिखा करता था, फिर बड़ी मुश्किलों से ये नंबर मिला, लेकिन आज तक उससे बात नहीं हो सकी।
0: पापी से कभी कोई? तो तुमने अदालत से कोई रिजू किया है?
1: पिछले 5-6 साल से इतने अदालत के चक्कर लगाए, अब तो ये भी पता नहीं चलता कि तारीख लगी भी है कि नहीं।
0: यार वो तुम्हारा पुत्र है यार,
1: मियां आसिफ कुरैशी का नवासा भी है। अब तो वैसे भी वो 15 साल से इंग्लैंड चला गया, पता नहीं उसको मेरी शक्ल याद भी होगी कि नहीं।
2: मलक साहब, क्यों है? जल्दी से बाहर आए, ओ मुंडे गुथम गुथा हो गए।
3: ओ छड्डो यार, छड्डो ओ मलक साहब, छड्ड यार काशी।
2: की हो रहा है तू? छड्डी यार, मुझे छोड़।
3: तेरा क्या मसला है? मैं तो मर्जी करूं।
4: सर जी, ये टॉयलेट बैठ के ये वाला सिगरेट पीता है।
3: ओ तो
2: अदब दिखा मैनू। ओए चरसरी सरकट।
3: ओ नहीं जी, ये तो वो
2: छूना काका नहीं आएगा, मैं समझ आई ना।
5: मैंने सलीम को कई बार ये
3: सिगरेट पीते हुए देखा। ओए तू चुप रह। मलक साहब ये मेरा जाती मामला है।
6: चर्स पीना कानूनी मसला है, और जहाँ तुम पी रहे थे ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कप्तान होते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम।
3: तो फिर क्यों है? इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
6: मैच का मसला नहीं है, उसूल की बात है।
2: और तेरी बेहतरी लाई कैंडे ने।
3: और मलक साहब अब्बा बनने की जरूरत नहीं है।
2: और तो तेरी माँ बना।
3: मुंह ना लगाए मुझसे।
6: ये किस तरह बात कर रहे हो तुम?
3: तो और किस तरह करूँ, क्रिकेट के कोच है, हमारी जिंदगी के नहीं है।
2: अब बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र।
3: मलिक साहब मैं इन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो इनके थल्ले लग के रहूंगा।
2: ते उत्ते चढ़ के रहो।
6: अपनी बकवास बंद करते हो वरना मैं।
3: वरना क्या, निकाल दोगे? निकालो। बॉलर और बैट्समैन के बगैर टीम चल जाती है, विकेट कीपर के बगैर नहीं चलती। जा रहा हूँ छोड़ के।
6: ओए, विकेट कीपर के बगैर टीम नहीं चल सकती, लेकिन चर्सी के बगैर चल सकती है।
3: देखूंगा जब चलाओगे।
6: जाओ यहाँ से।
3: जा रहा हूँ मैं।
2: अकबर साहब, किसी अस्पताल से आपका फोन आया।
7: जैसे ये होश में इनको 2 पैनाडॉल और ये इंजेक्शन दे देना।
8: जी सर।
6: क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है?
7: सड़क पर बेहोश मिले थे, वॉलेट में से एक चिट मिली जिसमें आपका नाम और नंबर था। गालिबन आप इनके बेटे हैं।
6: जी।
7: कुछ देर पहले इनको होश आया तो बताया कि आपको बुलाया है, तो लड़ना शुरू कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊं तो सिर्फ तभी बुलाइएगा। आप ऐसा करें, हर आधे घंटे बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ओके।
8: राइट सर।
6: अब कैसी हालत है इनकी?
7: अल्लाह ने करम किया है, बचत हो गई है। बस सिर्फ बाएं हाथ की हड्डी पे चोट आई है, दर्द बहुत ज्यादा था इसलिए पेन किलर के साथ नींद का इंजेक्शन दिया है। आप ऐसा करें कि घर से इनके कुछ कपड़े मंगवा लें, इनको कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है?
8: जी ठीक है।
7: ठीक है।

0: Akbar'ı?
1: Ha.
0: Akbar'ı? Yer ye deyik zara. Eda matlab ye hoya. Ki çaça nu pata hai ki tu Sialkot hi chega. Ab bismillah. A jao ji, a jao. Baitho.
2: अकबर साहब, आपने तो सियालकोट क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। बंदे को क्लीन गुमसम कहते हैं।
3: सदके
2: रोजनामा शगाफ स्पोर्ट्स एडिटर
1: जी बोलिए।
2: परसों के फाइनल मैच के बारे में आपकी क्या तासुरात है?
1: देखें क्या होता है।
2: देखेगा तो गुमसुम। आप बस एक जुमला इनायत कर दीजिए।
1: जुमला आप इनसे लीजिए, मेरे पास जुमले जरा कम ही होते हैं।
2: अरे साहब, सहाफी बरादरी से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है? उस बात को तो 14-15 साल गुजर चुके हैं।
1: मगर कुछ चीजें फिर भी नहीं बदली।
0: मला खालिद खिदमत के लिए हाजिर है कलीम साहब।
2: बड़े मिजाज हैं। वैसे टीम के यही नाम छुपवाए थे ना आपने?
0: दिखाइए। जाहिद काशिफ जाहिद, हाँ यही नाम है।
2: विकेट कीपर कौन है?
3: सलीम छीमा पागल।
2: वही जिसे आप लोगों ने निकाल दिया है। खबरें सब रखता है गुमसुम। विकेट कीपर मिला या खुद ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरने का इरादा है?
1: मिल जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
2: चलो
3: ठहरे, चाय आ रही है।
2: चाय भी इनको ही पिलाएं, बल्कि इनको तो ठंडा पिलाएं, बहुत गर्म चल रहे हैं। मलिक साहब, गुमसुम एक सच्चा सहाफी है। एक नाम लिख लो।
0: बताइए।
2: माइकल जोसेफ, माइकल मैग्रेट भी कहते हैं। मैं बताऊं, 2 साल पहले सियालकोट यूनाइटेड का विकेट कीपर था, आजकल फारिग है। लड़का बहुत काम का है।
0: बड़ा नाम निकाला है आपने।
2: कलीम गुमसुम है, मगर इतना भी नहीं कि टैलेंट को पहचान न सके। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: बड़े ही मिजाज हैं।
0: बड़े मिजाज हैं।
1: माइकल मैग्नेट कहाँ मिलेगा? हमें पता है पिछले क्लब ने तुम्हारे पैसे मार लिए थे, लेकिन अब मैं तमाम बातों का कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ। चाहो तो किसी से भी चेक करवा लो।
0: बिल्कुल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। जब साइन कर रहा था ना, पैंचर ही हो गया सी में।
4: मारने वाले तो उसके होते हुए पहले मार लेते सर, लेकिन जहाँ इतना जुआ खेल लिया वहाँ एक और सही। ट्रायल कब लेंगे?
0: और ट्रायल का तो अब टाइम ही नहीं रहा। अब जो भी निकलेगा, मोइन खान या कामरान अकमल, मैच में ही निकलेगा सवेरे 8 बजे।
4: देख लो, आज आपके घर के सामने मुआयदा किया है मैंने।
1: मैग्नेट, मोइन खान ही निकलेगा। आप मुझे बता देते, मैं पिला देता आपको। आपकी नाराजगी मुझसे है, खुद से नहीं। यही समझ के पानी पी लीजिए कि मैं नहीं, एक अनजान आदमी कुछ सबाब कमाना चाहता है।

0: सर जी सर जी सुनाओ जरूर सर जी, वो चाचा शायद मार देंगे सर जी।
1: सारी दुनिया के बच्चे खराब कर छे ने, मेरी गल कन खोल के सुन लो। वड्डा शायद फरीदी।
2: ओ हेलो, सुनो सारे, ये हमारा नया विकेट कीपर है माइकल जोसेफ, सारे इसको मैग्नेट कहते हैं।
3: हेलो,
2: मिल ले सारों से।
3: हेलो,
4: ओए कैसा है?
3: एकदम मैग्नेट, तू सुना?
4: फिट?
5: बाल से बड़े चंगे लग रहे हैं।
3: ठीक है भाई।
4: ओ मौलवी, क्या हुआ?
0: पूरे शहर में और कोई विकेट कीपर नहीं मिला था तुमको?
4: वो तो इसको क्या है,
0: खाना खराब काफिर है।
4: काफिर है तो?
0: तो तुमको नहीं पता है?
4: और मैच खेलना है, मिलाद नहीं करानी।
0: मानन पापा काफिर शक्ल मिल दो, खुद एक खबर शहर होगा इस पास में तेरे की।
4: और क्या बोल रहा है?
0: उस काफिर का बच्चा की वजह से मैच में बरकत नहीं पड़ेगा।
4: अब बस कर दे मोदी।
6: मलक साहब 9:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ 20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हमने मैच शुरू करना है। आप प्लीज उन लोगों को जल्दी से बुला लें।
0: अच्छा जी, अच्छा जी।
7: मलिक साहब तुसी टेंशन ना लो।
8: और टेंशन क्यों ना लो यार, और शायद तो चला गया और कोच भी गायब हो गया, मेनू तो पंचर ही कर गए यार, उफ किथे जावा मैं।
1: माशाल्लाह
9: भट्टी साहब प्लीज।
1: ओ भाई, मैंने अपना मुंडा गेंद और बल्ले के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया, चंगा भला 8,000 रुपए महीने पर काम करता था वर्कशॉप में, आपके चक्कर में होर पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगा।

0: अकेले बैठने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन फायदा तभी है जब इंसान के पास बहुत वक्त हो। जहां तक मुझे याद है इस वक्त तुम्हारा एक मैच है जो तुम्हें खेलना है, चले?
1: कोच, वो आपकी बाइक कहां गई
0: है? लेकिन फिलहाल किसी और के हाथ में, चलो। हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर कम से कम 170 से 190 के बीच में होना चाहिए। टीम तुम ओपन करोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहना।
1: ठीक है सर जी, लेकिन मेरे साथ कौन है?
0: शायद जाएगा तुम्हारे साथ।
1: कोच मैं?
0: हाँ, आज कप्तान को लीड करना चाहिए।
2: अश्के भाई अश्के।

0: ये आपका ऑफिशियल लेटर है। इनॉग्रल फंक्शन के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। बाय द वे, ये सियालकोट से आपकी टीम का कोई नाम है या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप?
1: शाहीन, सियालकोट शाहीन।
0: बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
0: सी यू देयर।

0: फोर्सेस लग रहा हूँ ना, है
1: पूरा सियासतदान लग रहा है।
0: इस्लामाबाद है आखिर।
1: मैं होटल जा रहा हूँ, ऐसा कर तू अटेंड करके आ जा।
0: चिलकर, थोड़ी देर की बात है।
2: गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द सी क्रिकेट टूर्नामेंट। आज आप सब लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि आप अपने अपने शहर के बेहतरीन क्लब से वाबस्ता हैं। अब आपके हाथों में अपने शहर की रेप्यूटेशन और आगे 5 करोड़ का इनाम है।
0: शायद कितने गए यार?
3: अगर यहाँ पर बिस्तर और टीवी आ जाए तो कमरा बड़ा टैट है।
4: हाय
3: हाय,
4: रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू।
3: जी वो मैंने धो लिए।
4: वाओ, जर्सी तो बड़ी अच्छी है आपकी, सियालकोट शाहीन्स। ओ, अगर टीम का कैप्टन इतना अच्छा है तो बाकी टीम कैसी होगी?
3: देखे, मैंने सुना था शहर की लड़कियाँ खुली डुल्ली होती हैं, मगर आप तो बहुत खुली डुल्ली हैं।
4: रियली?
3: मुझे आपका तो नहीं पता, मगर मैं तो ये इस्तेमाल करने आया था।
4: उधर नजर ही आ रहा है।
3: जी क्या मतलब है आपका? देखे, आप जैसे भी है मगर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ।
4: आप ऐसे वैसे लड़के नहीं है, लेडीज टॉयलेट में आप खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं।
3: हैं, लेडीज टॉयलेट?
4: जी, लेडीज टॉयलेट मतलब लड़कियों का वॉशरूम।
3: हैं, लड़कियों का वॉशरूम? अस्सलाम वालेकुम बाजी।
4: वालेकुम अस्सलाम। गुड लक मिस्टर सियालकोट।
2: अब सियालकोट से आने वाला वो क्लब जिसने सियालकोट के बड़े बड़े क्लब्स को ढेर करके अपनी जगह बनाई, सियालकोट शाहीन। इस वक्त भी एक टेबल खाली है, इस्लामाबाद हंटर्स टेबल। इस्लामाबाद हंटर्स इस टूर्नामेंट का सबसे टफ कॉम्पिटिटर और सबसे महंगा क्लब है, जिसने क्वालिफाइंग राउंड में कंटिन्यू 11 मैचेस जीते और उनके आने का अंदाज भी मुनफरिद है।
0: उठ के आ रहे हैं क्या?
2: प्लीज वेलकम इस्लामाबाद हंटर्स।

0: यार तुझे इस्लामाबाद हंटर टीम के बारे में वाकई कुछ नहीं पता?
1: पिछले 15 साल में कुछ पता नहीं चला तो इसका क्या पता चलना था?
0: लेकिन तुझे उससे मिलना चाहिए था यार, आखिर वो तेरा पुत्र है।
1: मगर मुझे तो सिर्फ मियां आसिफ कुरैशी का नवासा लगा।
0: ऊपर वाले के काम में बेहतरी होती है, देख ले इस टूर्नामेंट के जरिए तुझे तेरा बेटा मिल गया।
1: लेकिन मलिक, लड़कों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए।

0: ओए पे है ही बड़ा लाता है यार,
1: ये पाकिस्तान है या फिर अमेरिका?
2: ओ यार ये क्या बदतमीजी हो रही है,
3: ओ यार ये क्या बदतमीजी हो रही है।
4: गौर से सुन लो, कोई कुछ पिएगा नहीं।
5: यार वो मोटा जब भी देखो किसी ना किसी औरत को जप्पी डाल के खड़ा होता है यार, एक आदमी का इतना बीवी कैसे हो सकते
6: है? ये बीवी वाली जप्पी नहीं है।
0: कितने की है भाई?
7: फ्री है सर।
0: और जान दे यार, जान दे कितने फ्री है।
6: मैं फेमस ही बहुत हूँ, क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे खुद ही आती हैं।
8: ओह दैट्स ट्रू। ओ यार
3: वड्डा आया हुमायूं सईद, पार्टी हो रही है पार्टी।
1: ओ कैसी पार्टी यार, लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं।
3: ओए अच्छी बात है, ओए वो बच्ची चक्रवर्ती।
1: नहीं यार।
9: हेलो
1: आप कैसी हैं?
9: ठीक।
1: वाह काशी, वो बताया था ना तुझे, वो रसाले वाली रिपोर्टर।
7: ओ अच्छा याद आया।
9: सो कैसी लगी ये पार्टी?
1: पार्टी मैंने तो देखी नहीं, आगे खुली खुली।
7: ओ जी बस ठीक है।
9: वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से पार्टी काफी अच्छी है, नहीं?
3: ओ जी कभी हमारे साथ पार्टी करे, ओ पूरा सियालकोट झूम रहा होता है।
9: रियली?
1: एक मिनट।
9: वाओ।
1: ओ हमारे यहाँ तो 14 अगस्त और सिर्फ चांद रात को ही नाचते हैं और तू सारा सियालकोट।
9: जी
7: ओ जी ये कह रहा है इसने आपसे बड़ी सारी बातें करनी है लेकिन बेचारे को कभी कल्ले में मौका नहीं मिला ना।
1: काशी के बच्चे, मैंने ऐसा कब कहा।
7: ओ जी ये बड़ा शर्मीला है। ओ स्वीट अलीना मैडम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी।
10: आप माइंड तो नहीं करेंगी ना?
9: नो
7: देखा ओ जी बहुत ताला, आप दोनों बातें करें मैं भी आया।
1: काशी
9: आप सियालकोट के बारे में कुछ बता रहे थे।
1: आप क्या सुनना चाहती हैं सियालकोट के बारे में?
9: आप अपने बारे में कुछ बता दें।
1: मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूँ। सियालकोट ना बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम स्पोर्ट का सामान ना वहीं से जाता है और वहाँ शुएब मलिक भी है और तो और सानिया मिर्जा भी वहीं पर है।
9: आप बहुत क्यूट हैं।
1: हैं जी?
11: अरे मियाँ साहब इनसे मिलिए, ये हैं सियालकोट की टीम के मालिक
3: मलिक खालिद।
12: आपकी टीम से हमारा पहला मैच।
11: और ये है सियालकोट के कोच अकबर दीन।

0: इनकी टीम को टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स कहा जा रहा है बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है।
1: वो तो होनी ही थी, इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस काम आया होगा।
0: ओके गाइज, यू कैरी ऑन प्लीज।
1: वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा।
2: छोड़ने की आदत आपके यहां पाई जाती है, मेरे आने की
1: किस्मत मिले भी तो ऐसी जगह जहां मैं तुमसे खुल के मिल भी नहीं सकता।
3: मुझे इजाजत?
2: नहीं मलिक, कोई जरूरत नहीं है। मियां आसिफ कुरैशी अपनी बेटी का घर तो तबाह करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस क्राउड के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं।
1: मैं तुम्हें
0: आजी, क्या बातें हो रही थी?
2: मियां आसिफ कुरैशी साहब अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि इनका दामाद एक्स क्रिकेटर रह चुका है।
0: ओ रियली? मैं भी कहूं कि उसमें इतना टैलेंट कहां से आया?
2: बाप ही से आया होगा। Excuse me.

0: then let Talhawa Tea serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhawa Tea. 647-295-7861. Then let Talhawa Tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे
2: मिसेस आगर रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी.
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: थोड़ा पानी दीजिएगा प्लीज।
1: पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूं?
0: कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो?

0: Oi. Hey, Samba. Look, even the beggars are here.
1: Beggars in the party.
0: Oi. तुम लोगों के शहर में कोई डांस वास भी होता है कि ऐसे ही उठ के आ गए हो?
1: Dance? They can't even play cricket.
0: Let's go, baby.

0: मुजरा खत्म, चल निकल यहां से।
1: छोड़।
0: नहीं छोड़ूंगा।
1: गिरेबान छोड़।
2: बिल्कुल
3: इनफ मिकान, लेट्स गो।
4: आई टेक लीव नाउ, बट ये ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। प्लीज गुड डे।
5: माई फुट।
6: मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारे खानदान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वैसे तो नहीं पहुंच सकता, अब गली मोहल्लों की टीम बनाकर यहां आ गया। मैं भी देखता हूं वो लड़के कैसे खेलते हैं। उनको
1: आप
6: तो
1: कुछ
6: मैं
1: नहीं करेंगे। वो टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लाया है ना, उसका जवाब भी मैं उसको ग्राउंड में दूंगा।

0: टॉस के लिए इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शायन से कप्तान तैयार, और टॉस जीता है इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मीकाल ने, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो इब्तदाई से राइवलरी दोनों कप्तानों के दरमियान, और बिल्कुल सही कहा शाहिर ने कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, शायद इसीलिए यहाँ पर मीकाल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और यहीं से इस मैच की गर्मा गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहला मैच इस टूर्नामेंट का।
1: हेलो, इधर इधर इधर, क्राउड पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये इन लोगों का होम ग्राउंड है, और रात के वाक्य को अपने जहन से निकाल कर खेलना है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं।
0: मैच की पहली गेंद, और जिस तरह से आगाज किया इसी से ही अजायम का इजहार होता है। पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने, और ताबड़तोड़ स्ट्रोक्स से खेले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज स्कोर की जा रही हैं, और बहुत ही मुश्किल में है शाहिद भट्टी सियालकोट शाहिन से कप्तान, एक और चौका हासिल किया। वो इसकी स्ट्रेटेजी इस वक्त बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स के जो बैट्समैन है होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने में कामयाब है।
1: कमऑन बॉयज, जो होना था हो गया, घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ 225 रन पे फोकस करना है। अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। पहले भी कहा कि क्राउड पे ध्यान नहीं देना है, यूं समझो कि हम सियालकोट में खेल रहे हैं। साथ तुम टीम के साथ ओपन करोगे।
2: कोच मुझसे पहले साथ को क्यों भेज रहे हैं?
1: तुम बैठ जाओ अभी।
2: कोच समझा करें, अगर शुरू में प्रेशर पड़ गया तो लड़के कैसे बनाएंगे स्कोर?
3: ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है। और शुरू के 6 ओवर में तो रन बनाने हमने।
1: मैंने कह दिया है नहीं।
2: कोच प्लीज।
3: और चल यार तू पैडमैन, यार पैडमैन।
2: ठीक है।
3: और चल टीम तू भी पैडमैन यार।
0: सियालकोट शाहिन्स के लिए शाहिद भट्टी और शेख ने का आगाज

0: पास, पहली गेंद पे उठता हुआ स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे 225 रन चेस करने हैं और इस किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे शाहिद भट्टी को। अगली गेंद, एक और उमदा स्ट्रोक, फील्डर गेंद को नहीं पहुंच सके और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इम्प्रोवाइजेशन और बाउंड कर दिया। माइकल, अब देखना ये कि क्या अपने से वाबस्ता तवक्कात को पूरा कर सकेंगे या नहीं, और आप देख सकते हैं किस तरह से विकेटें गिरती जा रही हैं। कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का चांस और एक और विकेट हासिल की इस्लामाबाद हंटर्स ने। कोच के चेहरे पे परेशानी, डग आउट में परेशानी, माइकल तमाम तर उम्मीदों का मरकज, सामना करने के लिए तैयार। उठतावा स्ट्रोक माइकल की जानिब से और उम्मीदों की शमा रोशन की अपने स्ट्रोक के जरिए, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और उमदा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माइकल कामयाब। डग आउट में खिलाड़ियों ने तारीफ की इस स्ट्रोक की। इस मरतबा गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। इस्लामाबाद हंटर्स के बॉलर्स और फील्डर्स दबाव डालते हुए मिकाल हर वो मुमकिन हर बात बातें जिससे बैट्समैन पे दबाव पड़ सके। इस मरतबा अपना बदला लिया और क्रीज पे से हट गए सामने से।
1: डर गया
0: की कोशिश की शाबाश, एक अच्छी राइवलरी
2: देख के जुड़े, देख के
0: ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि ऑफ द ग्राउंड भी। अंपायर से शिकायत की मौलवी मजीद ने। माइकल खेलने के लिए तैयार, आखिरी विकेट इस वक्त मौजूद है। सलफोर्ड शाइंस की रन लेने की कोशिश, मजीद और माइकल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग का नोट खतरा और यकीनी तौर पर रन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की। इफ्तिताही मैच अपने नाम किया। माइकल और मौलवी दोनों सर को झुकाए हुए, दोनों जानू इस वक्त पिच पर मौजूद है और इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ी अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए, जुबिलेशन सेलिब्रेशन देखी जा सकती है इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ियों के दरमियान। और ये सर को झुकाए हुए, एक जानब कहीं खुशी और दूसरी जानब कहीं गम के मनाजिर आप देख सकते हैं।

0: और शक्लें तुम लोगों की देखने वाली थी। और तुम लोग मैच खेलने आए थे या किसी के कुलों पे आई थी है?
1: मलक साहब वो खेल ही ऐसा रहे थे, इतना स्कोर मारा उन्होंने।
0: हाँ हाँ, तो विकेट छोड़ के खलो जाना सी।
2: वो खाना खराब हर बॉल के लिए उनके पास एक शॉट था, हम क्या करते?
0: तो कह देते ना हमें, हम उनसे कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तुम, बल्कि तू, और तू एक बॉल नहीं पकड़ सका।
3: मलक साहब, क्राउड देना शोर सी फोकस ही नहीं हो रहा था।
0: और कुड़ियों से फोकस हटता तो बॉलों पे फोकस करता ना। और बैटिंग के टाइम पे क्या हो रहा था दसो? और तुम लोग विकेट ऐसे दे रहे थे जिमें मोहम्मद दुआवा दे दिया ने। और मैग्नेट, और तू 20 ओवर पूरे नहीं कर सका, अब बस घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं।
4: ओ मलिक साहब, वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे।
0: और केड़िया गाला करन दे
5: सब। बस कर मलिक।
0: और नहीं यार, मेरी सारी जायदाद दांत लगी है, मैं तो पंचर हो गया।
5: मैं जानता हूं बड़े मैच का प्रेशर ऐसे ही होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में जाकर खेले तो इसका मतलब वो तो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सपोर्टिंग क्राउड ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि तुम लोग शाहिद पे बहुत भरोसा करते हो, शाहिद के आउट होते ही तुम लोगों की लाइन लग जाती है, इसीलिए मैं शाहिद को ओपन नहीं करवाना चाहता था। कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं, पूरी टीम से जीता जाता है।
6: हेलो,
0: फोन बंद कर यार तू।
6: मलिक साहब, वो न्यूज़ पर।
0: और क्या न्यूज़ पर?
7: मिकाल, इज दैट ट्रू?
8: जी, ऑल्दो ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कोच को भी नहीं पता ये बात। मैं उनको इस बात से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा था कि वो मेरे फादर की टीम के अगेंस्ट खेले।
7: लेकिन आपने अपने फादर को इस्लामाबाद हंटर्स का कोच क्यों नहीं बनाया?
8: देखिए, अब हमारे उनके साथ कोई लिंक्स नहीं है। जैसा कि कुछ लोग वाकिफ होंगे कि 15 साल पहले उन्हें ड्रग स्कैंडल में पकड़ा गया था। And me and my family have no contact with him ever since.
9: शिराजी साहब, करना पड़ता है, जीत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खास तौर पे जब हारने की आदत ना हो। $5,000 फॉर दिस पॉट
10: डन।

0: आने दो, आने दो। चिराजी साहब, एक्सक्यूज मी, मुझे पता था तुम जरूर आओगे।
1: आपने अच्छा नहीं किया।
0: देखो अकबर, आजकल ऐसी बातें कहां छुपी रहती है।
1: छुपी रहती है अगर आप चाहते तो।
0: तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी तरह तो तुम अपने बेटे के काम आए। एक इंटरव्यू ने, सिर्फ एक इंटरव्यू ने उसे इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया है। सबकी नजरें मिकाल पर हैं। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं। मीडिया इज लविंग हिम एंड ही इज लविंग द अटेंशन।
1: वो मेरा बेटा है, आपकी बिसात का कोई मोहरा नहीं।
0: सही कहा, अगर मोहरा होता तो कब का तुम्हारी तरह उठा के बाहर फेंक चुका होता।
2: मैं?
0: तुम नहीं, मैं। तुमने जो करना था 15 साल पहले कर चुके हैं। अब मेरी बारी है।
1: तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
0: और ये घटिया आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं ये गेम हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। बहुत खेल लिया गली मोहल्ले वालों ने, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। ये गेम इसलिए नहीं बना था कि तुम जैसे सड़क छाप इसमें गंद मारे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ख्याल में मैं इस टीम पर यूं ही पैसा लगा रहा हूं? इस टूर्नामेंट के बाद ये टीम इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ लीग मैचेस खेल रही होगी। 5 साल के अंदर मैं इस टीम को पाकिस्तानी टीम से बड़ा स्टार बना दूंगा और 5 साल बाद इस टीम के लड़के तुम्हें पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी इन 65 सालों में पाकिस्तान की गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज तो दूर कर दी गई है सिवाय क्रिकेट के। अब वक्त आ गया कि यह भी उनकी पहुंच से दूर कर दी जाए।
1: तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
0: कौन रोकेगा मुझे, हाँ? तुम या तुम्हारी सड़क छाप टीम? कहां से लाओगे ऐसी फैसिलिटीज, टैलेंटेड प्लेयर्स, पैसा, फॉरेन कोचेस? इस्लामाबाद हंटर इज अनबीटेबल, हमसे तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं बनता।
1: इस टूर्नामेंट के शुरू में मैंने भी एक मां से यही सवाल किया था, जानते हो उसने क्या जवाब दिया?
3: दूसरों के पास चाहे दुनिया की हर चीज हो,
1: लेकिन वो जानमाज़ पे गिड़गिड़ाती माँ की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती।

हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आज तुम लोग हार भी जाओ तो कम से कम ऐसे हारना कि एक दूसरे से आंखें मिला सको, क्योंकि आज हार तुम 11 लोगों की नहीं होगी, सियालकोट के 10 लाख लोगों की होगी।

0: अमीजी
1: तेरे लिए तो मैं अपने आधा मान तोड़े वे यार तू मेरा मान ना तोड़े।

0: किया क्या डॉक्टर साहब ने?
1: अब्बा जी वो कहता है दिल का मामूली सा दौरा था और हम लोग तमा समझते रहे। डॉक्टर कहता है दिल की नालियां भी बंद है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा जी अब्बा जी वो अम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे कहां से आएंगे?
0: पैसों के बारे च फैक्ट्री वाले ने गल
1: की थी मैनेजर से बात अब्बा जी, वो कहता है 50-60 हज़ार तो दे सकते हैं, पर अब्बा जी डॉक्टर कहता है 7-8 लाख का खर्चा है।
0: 7-8 लाख?
2: अभी अभी खबर मिली है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हंटर्स ने कराची लायंस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है।
3: Come on now, cheer up. देख लेना, तुम वापस फॉर्म में आ जाओगे।
4: पिछले 3 मैचों से यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर बॉल है कि बैट पे मिडल ही नहीं होती है।
5: और शायद कोच बुला रहे हैं यार।
4: आता हूँ 2 मिनट।
3: देखो फेसबुक पे मैंने तुम्हारा फैन पेज बनाया है, इतने सारे फैंस हैं अभी से, देखो।
4: क्या फायदा? मुझसे ज्यादा फैंस तो निकाल के होंगे।
3: तो हु केयर्स, मैं तो उसकी फैन नहीं हूं ना।
4: क्यों? अमीर है, खूबसूरत है, पैसा है उसके पास। और वैसे
5: शायद कोच बुला रहे हैं यार।
6: वो कोच से बोलो रुक जाए, क्या मौत पड़ी है।
7: टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलना, ये मौत पड़ी है।

0: ये मत भूलें कि हम यहाँ टूर्नामेंट खेलने आए हैं। लाहौर की टीम पिछले 3 साल से फैल्कन ट्रॉफी जीत रही है। उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। उनके 2 खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए अगर हमें यह मैच जीतना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ।
1: कोच मैं तो सिर्फ
0: मैं नहीं सुनना चाहता कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा।
1: वो बिचारी तो
0: क्या बिचारी, हाँ ऐसी बिचारियां तुम्हें बहुत मिलेंगी आगे। पहले वो कर लो जो करने आए हो। इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है।
1: फिर तो आप शुक्र करें।
0: क्या बोला? क्या बोला
2: यार? छठ यार की होगी।
0: एक मिनट क्या शुक्र करूं? पिछले 2 महीने से कुत्ते की तरह रात दिन एक कर रहा हूं मैं, और उस टीम के जीतने पे शुक्र करूं मैं? साला उस टीम का बाप लगता हूं मैं जो शुक्र करूं?
1: उस टीम के कप्तान के तो लगते हैं ना।
0: क्या बोला?
1: कोच कॉलर छोड़े।
2: और छठ दे अकबर
1: कॉलर छोड़े। कोच
0: मेरी नीयत पे शक किया तुमने? हाँ
1: अगर इतनी नीयत साफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपका बेटा है? और ये क्यों नहीं बताया कि 15 साल पहले आपको चर्सी और जानी होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया था? हर मैच के बाद मेरी परफॉर्मेंस की बजा रहे होते हो और अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते।
2: ओ यार एक मिनट समझ करो।
1: छोकरे खानदान का नहीं हो सकता हमारा क्या होगा? नहीं खेलूंगा क्रिकेट के साथ खेलने लगे। जा रहा हूँ। वड्डा अपने आप नू समझता पिया है। छटा यार
0: ये तो बाहर है टीम से। और तुम में से भी अगर किसी के यही ख्याल आते ना तो दफा हो जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को बाहर निकालूं।
2: यार की करे क्या हो? अकबर वो सारी टीम का कप्तान है ना यार।
0: कैप्टन था है नहीं। टीन अब से तुम कैप्टन हो, टॉस की तैयारी करो।
2: पता नहीं की हो इंडिया सब बकवास।
3: गिल लाहौर थंडर्स amateurs out of the night. What a performance. Can't really blame these people, can you? You should never have put so much hope in their hearts. It's wrong of you. They never amount to anything but street players. Enjoy your life in Sialkot. Just one more thing. What is it you Muslims say amongst each other again? Mere liye Allah hi kafi hai. Kaha hai. Tomorrow, Allah.

0: पॉसिबल।
1: और बादल बरसना शुरू हुए और इस बारिश के जरिए मौका मिल गया है सियालकोट जायंट्स को कि इस मैच में कमबैक कर सके, क्योंकि बैटिंग करते हुए उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा खराब थी और डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत अब एक ओवर में 13 रन स्कोर करने हैं लाहौर थंडर्स की टीम को। और क्या काशिफ उर्फ काली आंधी सियालकोट जायंट्स के लिए ये रन सेव कर सकेंगे या नहीं। पहली गेंद करने के लिए तैयार काशिफ आए, ऑन साइड पर बैट्समैन ने खेला आसानी के साथ, एक रन चहलकदमी के से अंदाज में मुकम्मल किया और दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन ने वापस क्रीज में लौटने पे मजबूर कर दिया साथ ही बैट्समैन को। एक दफा फिर आया शॉर्ट बॉल, गेंद की लाइन को मिस किया और टेंशन मुसलसल बढ़ते हुए दोनों टीमों के डगआउट में। और इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक के लिए फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद दो फील्डर्स को बीट करने के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो अब 3 गेंदों पर 8 रन दरकार। एक और शॉर्ट बॉल उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पर फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो अब 2 गेंदों पर 4 रन दरकार है। देखना यह है लॉर्ड थंडर्स इस मैच में इन 2 गेंदों पर 4 रन स्कोर कर सकेगी या नहीं। एक और शॉट इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, तो 2 रन का यकीनी तौर पे स्कोर में इजाफा हुआ। तो अब क्या काशिफ और काली आंधी इन 2 रन को सेव कर सकेंगे या नहीं, या बैट्समैन राणा जावेद मिदाद की तरह आखिरी गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होता हुआ लाहौर थंडर्स के सपोर्टर लाहौर की टीम को सपोर्ट करते हुए। काशिफ बॉलिंग के निशान पे तैयार, तमाम तर टेंशन इस वक्त ग्राउंड में मौजूद और आसमान की जानिब निगाहें काशिफ की जानिब से। आखिरी गेंद, इस गेंद पर फैसला होगा इस मैच के नतीजे का।

0: Mr. Nick, you have been very confident of your team.
1: Of course, Simon. You can't really blame us for that now, can you?
0: But as we know, cricket is by...
1: Look, mate. I have every confidence in the world that tomorrow's match will be like every other match we played this season, okay?
2: And results will be the same as you have seen in the last matches. But the
3: Shines are very high. Look, I don't know
4: who is high and who is not. I just know that my team is on top. And it will remain.
5: Shahid, आपको आपकी टीम में शायद आफरीदी भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही।
6: जी मुझे मालूम है।
5: वैसे आपके कोच से आपको कुछ टिप्स मिले?
6: जी यही कि कोशिश किया करो कि हर बॉल में डलो और
4: नशा करके गेम खेलने के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इस किस्म के रेपुटेशन के कोच के साथ इन लोगों को और सीखने को क्या क्या मिला।
6: क्या मतलब है तुम्हारा?
4: तुझसे बात नहीं कर रहा हूं।
7: लेकिन ये तो आपके वालिद हैं।
4: व्हाटएवर, मेरा इस किस्म के आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं।
8: खामोश निकल, चुप,
4: उंगली नीचे रख के बात करें।
8: देखो मैं जैसा भी हूं मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप ही हूं।
4: फिलहाल उसी के बनिए जिसके साथ बैठे हुए हैं, और क्या पता उस क्लब डांसर की तरह इसकी फर्क सिर्फ इतना है कि अभी पकड़े नहीं गए होंगे। लकी है तेरी मां।
6: चुप होए।
9: क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाइंस के कप्तान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। लोगों का ये कहना है कि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट पर एक बदनुमा दाग हैं।
10: अब ये सड़क छाप टीम मियां आसिफ कुरैशी की टीम से जंग लड़ेगी। ये दो टके का आदमी ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग मी डाउन। आई विल टीच हिम अ लेसन।
1: Nothing like that is happening. Tomorrow night we're gonna lift that cup and ask for the Yagba guy. When has he ever created a problem for you?
10: तुम साले गोरे लोगों को सही वक्त पर सही बात करने आती है। 15 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ेगा। बड़ा राइजिंग स्टार बना फिरता था, लेकिन नेक उसे एक जर्ब लगाना बहुत जरूरी है। उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसकी तकलीफ मुझे कल स्टेडियम में नजर आए। Who do you want to choose from the team?
1: If I was to choose someone, I'd choose it someone that they couldn't replace. I'd go for the wicketkeeper, Michael Magnet.
10: Wow. I like it. Right. Cheers.
11: हेलो अकबर,
12: माइकल कहाँ है?
0: टैक्सी, ओ टैक्सी, और रुक जा भाई।

पटवा नहीं हाथ चाहिए हाथ।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tourist is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: माइकल
1: क्या हुआ इन्हें?
2: सर काफी इंजर्ड है, खून बहुत ज्यादा हो गया।
1: इनको सीधा ओटी में लेके जाएं और आई विल लाइन मेंटेन करें।
3: अकबर क्यों होया?
0: माइकल को कुछ लोगों ने मारा है बहुत ज्यादा।
3: ओह माय गॉड।
4: वैसे तो इनके लेफ्ट हैंड में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इनका जख्म गहरा होने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत रेयर है।
0: डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए।
4: इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फौरन खून का इंतजाम कीजिए। आपने जो सैंपल्स दिए थे उनमें से कोई भी ओ नेगेटिव नहीं,
0: लेकिन तीन चार लड़के और भी हैं।
1: तो प्लीज बुलवाएं उनको, बल्कि आप पहले उनसे मालूम करें अगर किसी का ओ नेगेटिव हो तो। वक्त बहुत कम है, प्लीज।
3: की कह रहे हैं डॉक्टर?
0: ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए, सैंपल्स भी मैच नहीं हुए। तुम में से है किसी का ओ नेगेटिव ग्रुप? तीन साथ कहां से लाऊं मैं ओ नेगेटिव?
5: कोच, हमारा ओ नेगेटिव
6: मौलवी, तू तो
5: मजहब एक नहीं है तो क्या हुआ? बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है ना? जितना खून निकालना निकाल लो कोच खाना, लेकिन उसका जान बचना चाहिए।
6: शाबाश।
4: बच्चे को होश आ गया है, आप में से जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो मिल सकते हैं।
6: ओ शुक्र है मालका।
2: सिर्फ घर वाले जा सकते हैं।
5: भाई है हमारा,
7: अपना आएगा अपना
2: भाई है,
7: भाई है अपना,
2: भाई भाई है, प्राय भाई आएगा,
8: सक्का प्राय।
2: मैं फाइनल खेलूंगा ना कोच, मुझे फाइनल खिलाना कोच। मुझे फाइनल खिलाना मलिक साहब, मुझे फाइनल खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाएं, मलिक साहब मुझे मैच खिलाना, मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाना। कप्तान,
0: ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ।
6: ओ यार अकबर, तेरा क्या कसूर है? ओ जिसने ये हरकत करवाई है, असल खबीसु नसल तो वो है। अकबर यार, अल्लाह सब ठीक कर देगा।
0: मैं क्या करूं मलिक? बीवी बेटा करियर सब कुछ छिन गया मुझसे, और क्या क्या कुर्बानियां दूं? अब मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। यही कि मैं गरीब था, या यही कि मैं इन गरीबों का साथ दे रहा हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं?
6: ओ यार अकबर, जब इतने सारे सवालात हो ना तो एक ही जगह से जवाब आते। यही है वो जगह, यही है।
0: 15 साल से एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, पर इतना इम्तिहान क्यों? अगर इसी मुकाम पे लाना था तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों खड़ा किया? मुझ में मजीद इम्तिहान की हिम्मत नहीं है, इस इम्तिहान को खत्म कर दे। इतना भी गुनाहगार तो नहीं हूं ना मैं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।

0: मैंने कुछ नहीं किया था।
1: मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं। कौन कहता है कि अल्लाह सिर्फ अपने गुनाहगार बंदों का इम्तिहान लेता है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा, मुझे माफ कर दो बेटो, मुझे माफ कर दो।
0: मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तायुन किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं, इस मुल्क का गरीब उतरेगा, हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे, कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे, आज तुम नहीं हारोगे।

0: सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली ये टीम बॉलिंग करने जा रही है।
1: और तुझी तने के बॉल मिडिल
2: शैतान ओवर अंप कराने दो यार। यार खान कोच ने क्या ऐसी दूजे एंड तू संभालेगा यार।
1: सही तो कह रहे
2: हैं यार, तुमको दोस्ती का वास्ता यार, ओवर अंप को कराने दो।
1: दे दे काशी, दे दे शाबाश शाबाश शाबाश।
3: मजीद मौलवी पहला गेंद करने आए हैं, जोर से भागते हुए। देखते हैं कि पहला गेंद वो क्या करते हैं। पहला ही बॉल बाउंसर और बैट्समैन जमीन के ऊपर। व्हाट अ बॉल! और गुस्से से घूरते हुए मौलवी मजीद
2: और न छोड़े।
3: मजीद मौलवी गेंद करने आ रहे हैं, दूसरा गेंद है उनका। उन्होंने गुस्से से बैट्समैन की तरफ देखा, भागे। देखते हैं ये कौन सा गेंद करते हैं। गेंद की बैट पे गेंद लगी, जोरदार अपील, लगता है कि वो आउट है। मगर ये क्या, मौलवी मजीद सबको कह रहे हैं खामोश रहो।
4: ये अपील क्यों नहीं कर रहा यार?
2: अभी हम नो बॉल करा के तेरा सर पड़ेगा, बच गया तो फ्री हिट ले लेना।
3: मौलवी मजीद तीसरा गेंद करने आए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बैट्समैन कांपते हुए। मजीद मौलवी आए गेंद की और बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छा बॉल विकेटों के दरमियान।
5: भैया साहब व्हाट अ स्टार्ट।
2: पठान को बेवकूफ समझता है।
6: ओए क्या बात है, बॉल

0: शाहिद भट्टी बॉल कराने आए, कप्तान है, राउंड द विकेट गेंद करेंगे, विकेट कीपर तैयार, आए गेंद की
1: मिस कर दिया माइकल मैग्नेट ने।
0: व्हाट अ मिस, मैग्नेट को पहले ही चोट लगी हुई है, शायद यही वजह है कि उनके हाथ में गेंद नहीं आई। फ्लिक किया स्क्वेयर की तरफ, मिस फील्ड और ये चार रन। बॉल की बॉलर ने गेंद की स्क्वायर कट, जबरदस्त किस्म का फ्लिक।
2: 203 रन बनाना है सियालकोट शाहीन की टीम को।
3: इस्लामाबाद हंटर्स की शानदार बल्लेबाजी, 203 रन का हदफ सियालकोट शाहीन के।
0: बॉल की रिटर्न शॉट, कैच छूट गया, जोरदार हिट और पुल शॉट।
3: और सिकंदर यहां आयत का पहला ओवर तो खत्म हो गया और अब देखना यह है कि कप्तान निकाल अगले ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं।
0: डकआउट से कोई इशारा कोच का, वो क्या कह रहे हैं? निकाल खुश नहीं है इस बात पर, लगता है कि कोई नए बॉलर की तरफ इशारा किया जा रहा है। और बॉलर आ गए हैं फहद।
4: बॉल कराओ और ये बताओ कि फील्ड क्या सेट करनी है।
5: जो फील्ड है वो ही रहने दो।
4: जिस हिसाब से बॉलिंग कराओगे उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ेगी।
5: बस कीपर से कहो 4 फीट पीछे हो जाए।
3: बैट्समैन ने स्टांस लिया, दौड़ना शुरू किया उन्होंने। फहद इस मैच में क्या करेंगे?
0: 153.9, फहद अपना दूसरा गेंद करने आ रहे हैं। देखते हैं कि पहला गेंद तो बहुत तेज किया था, दूसरा गेंद कितना तेज करते हैं। वाओ, व्हाट अ बॉल, इतना तेज। बॉल की स्पीड इतनी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां से गई।
3: और फहद अगली गेंद करने के लिए तैयार, तमाशाइयों का जोश उरूज पर। फहद ने गेंद की और 7 बोल्ड हो गए। मिडिलस्टन डॉट सुपर, और यूं लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स ने फिर सियालकोट शाहीन्स के पर उतर दिया। और ये फहद का जज्बाती अंदाज, बैट्समैन को कहा पवेलियन वापस जाओ।
6: वाओ,
3: और लंबी डाइव, बेहतरीन रनिंग
0: और रन आउट मिस।
3: खूबसूरत डग आउट की तरह हेलमेट का इशारा।
0: कवर ड्राइव, स्क्वेयर कट, बहुत अच्छी रनिंग, बोल्ड,
3: बेहतरीन डिफेंस,
0: खूबसूरत शॉट,
3: एक और बॉल।
4: वाजिश तुम जाओगे।
7: कोच क्या हो गया?
4: जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बैठ जाओ आराम से।
8: ओ अकबर यार, 5 खिलाड़ी आउट हो गए ना, की करंट है?
4: मुझे किसी भी तरह ये 5 गेंदे गुजारनी है। पीके सुनो, कुछ भी हो जाए ये 5 गेंदे खेलनी है तुमने, समझे? जान क्यों निकली हुई है? जाओ, कम ऑन, घबराओ नहीं।
7: नवाजिश संभाल के, शाबाश
4: शाबाश।
3: और सिकंदर यहाँ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है सियालकोट शाहीन ने, और फहद जो तबाही फेर रहे हैं उनके आगे एक और बैट्समैन को भेजने के बजाय एक नॉन रेगुलर बैट्समैन आया है। देखिए फहद क्या करते हैं इस बार, और ये फुल टॉस सीधा जिस्म पे लगा।
7: यार
3: नवाजिश नीचे गिर गए।
7: नवाजिश नवाजिश जल्दी आओ, जल्दी जल्दी,
4: चोट लगी उसे देख के आओ।
7: इसकी तो कोच, अब मैं जा रहा हूँ।
4: तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया, तुम बैठ जाओ आराम से।
7: कोच वो हमारे सर पे सर फाड़ रहे हैं और आप कहते हैं बैठे रहो।
4: जो भी कर रहे हैं मैंने तो मना किया है ना।
7: पर
9: लड़न रहे हो, जिन्हें जाना सी वो चला भी गया।
3: सियालकोट शाहीन का एक और सरप्राइज, और अब मजीद बॉल भी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तेज तूफानी फहद, मजीद बॉल भी ना, बल्ला घुमाया और गेंद हवा में।
10: ये तुम्हारा पापा के लिए।
3: बॉलर के गुस्से पर बैट्समैन का गुस्सा हावी दिखाई देता है।
0: कवर ड्राइव, फुल टॉस, सरों के ऊपर से ड्रेसिंग रूम में।
10: जो लेके आओ ये तुम्हारा मामा के लिए।
3: जज्बात उरूज पर, क्रिकेट चंद में बदल गई है, गुस्सा गुस्सा हो गए हैं। और इस बार मजीद बॉलिंग का पल्ला नहीं आए, और इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद 3 गेंदों पहले की जा रही थी।
4: शायद अब तुम जाओ और हुक नहीं करना।
7: कोच अब मैच में रही क्या गया?
4: 106 रन्स, जब शायद अफरीदी 37 गेंदों पर सेंचुरी बना सकता है, तुम्हारे पास तो 54 बॉल्स हैं। जाओ।
0: अब नए आने वाले बैट्समैन हैं सियालकोट शाहीन के कप्तान शाहिद। पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाता हुआ

0: बहुत ही जारहाना बैटिंग है शाहिद की और इस दफा रन आउट का खतरा। भागे बॉलर बीच में आ गए
1: और यहाँ रन आउट हो गए।
2: की बकवास है यार,
1: सियालकोट शाहिन को एक और सदमा।
0: ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि शेख बहुत देर से खेल रहे थे। ये बहुत बुरा हुआ है, लगता यह है कि बैट्समैन ने बिल्कुल नहीं देखा बॉलर को और बॉलर की बैट्समैन की तरफ, पता नहीं चला, दोनों आपस में टकरा गए
1: और शाहिद पट्टी फिर चल पड़े। शॉट लग रहे हैं, रन कम हो रहे हैं, हर गेंद पर रन बन रहे हैं। शाहिद पट्टी के उमदा शॉट,
0: हमीद ने सीधा खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में और वो आउट हो गए।
3: संभाल के काशी,
1: इंतहाई गैर जिम्मेदारी, काशिफ काली आ गया।
0: नए आने वाले बैट्समैन है माइकल मैग्नेट और साथ देंगे वो अपने कप्तान का हाथ, उनका पहले ही इंजर्ड है।
1: सियालकोट के लिए हालात गंभीर, 7 गेंदें 22 रन और सिर्फ 1 विकेट इस्लामाबाद हंटर्स को।
3: माइकल यार तू, ओ ये देख, बैट उठा सकता हूँ मैं, और हमारे लिए कितनी कुर्बानी देगा। अगर आज पीछे हट गया ना शायद, तो आइंदा कभी किसी की माँ अपने बच्चों को ख्वाब नहीं दिखाएगी। चल जा शाबाश।
0: माइकल मैग्नेट ने सिर्फ रोकना है, इसलिए कि 6 बॉलें अगर शाहिद भट्टी को मिलती हैं, तो शाहिद भट्टी जो हैं, वो ये मैच जिता भी सकते हैं।
1: बाप का हैट्रिक बॉल सीधा माइकल के।
3: माइकल,
4: तू ठीक तो है ना?
3: हाँ, टूटे हुए को और क्या तोड़ेंगे यार, इसका ओवर खत्म हो गया ना, बस यही करने आया था मैं।
4: मगर तेरे तो खून निकल रहा है। मैं चुप,
3: एम्पायर को पता चल जाएगा, उठा मुझे।
4: अच्छा उठ शाबाश।
1: और अब सियालकोट शाहीन के लिए सूरतेहाल कुछ इस तरह, 6 गेंदें बाकी 22 रन और 1 विकेट सियालकोट शाहीन के पास, और अच्छी खबर उनके लिए ये कि कप्तान शाहिद भट्टी के पास स्ट्राइक। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल गेंद की योग करना चाहते थे, कोई रन नहीं बनेगा, 1 गेंद जाया हो गई। मिकाल की अगली गेंद शाहिद भट्टी के बल्ले पर हवा में और गेंद बाउंड्री के बाहर।
2: शाबाश,
0: बहुत ही खूबसूरत शॉट।
1: और मिकाल की अगली गेंद शॉट गेंद, शाहिद भट्टी ने छोड़ दिया। अंपायर अपनी जगह खामोश खड़े हैं। रवैये पर हैरान कुन तौर पर
0: मुझे हैरत है, बैट्समैन ने भी इशारा किया मगर अंपायर ने कहा कि नहीं, ये वाइट बॉल नहीं है।
2: खरीद लिया इन्होंने।
1: इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल एक बार फिर, और इस ओवर में ये दूसरा छक्का होगा।
0: अब कोई चांस नहीं है, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, बड़े छक्के लगने हैं, या तो चौका या छक्का, इसके अलावा कोई चारा नहीं।
2: कम ऑन,
1: 2 गेंदें 10 रन। मिकाल की अगली गेंद को कवर में खेला है शाहिद भट्टी और 4 रन हो गए।
0: आपने देखा, उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, रूम दिया और उन्होंने कट खेला 4 रन के लिए, फील्डर को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का।
1: आखिरी गेंद, अगर मगर का खेल खत्म। इस्लामाबाद हंटर्स को 1 विकेट, सियालकोट शाहीन्स को 6 रन

0: सिलेक्टर्स जा चुके हैं, कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा।
1: कोच आप रोज ही ऐसा बोलते हैं।
2: हाँ।

0: तो तुम हो सियाल कोट के शाहिद अफरीदी?
1: जी मैं।
0: जो जात तुम्हें यहाँ तक लेके आई है वही जात तुम्हें आगे पहुँचाएगी, 3 मैचेस में चांस मिले या 300 में। लेकिन इस सब्ज यूनिफॉर्म को पहनने के बाद पिच पर किसी एक शहर का अफरीदी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का शाहिद खड़ा होना चाहिए।

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: पे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्फ मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. Apne pyaron

0: आईसीसी इमिग्रेशन के आरडीएमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है, तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है, तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अर्शद, कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी, या मेरी बेटी बैठी हुई थी, या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कि कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं, और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें, ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं, जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, प्लीज मुझे कॉल करें। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, 570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
3: بہت شکریہ انجم قریش صاحبہ, اور منڈے ان شاء اللہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہ 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میرا رابطے کے نمبر 416-593-0003 استاد نصرت علی خان کی خوبصورت آواز اور وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is me, Vani, with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga Lahori fish, chapli kebab, kadahi gosht, chicken tikka masala, chicken biryani, seekh kebab, rishmi kebab, chicken boti, chicken tikka, bihari kebab, lamb chops, afghani tikka, nihari aur bahut kuch. Khoobsurat kushada patio Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ اسپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری اینڈ فری فری پارکنگ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
0: یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈویژن اسپاؤزل سپورٹ چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773 قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 647-838-4773
1: میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹھا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی مسیساگا برامٹن سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810 اٹس 416 9619012810 या लॉग इन हो mithafurniture.com. हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए. मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर.
3: जी हाँ, मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी, मिड टू हाई फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिलती है और बेस्ट डील्स आपको मिलती हैं. एवरी वीक स्पेशल डील मिलती हैं और 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी स्टोर से, ब्रांड नेम स्टोर से, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको ये मार्जिन दे सकते हैं. मिसागा में लोकेशन इनकी 3050 वेगा बोलेवार, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबोर, 35 बुश रोड कैम्ब्रिज, और बहुत जल्द पांचवीं लोकेशन भी इनकी ओपन होने वाली है. चारों लोकेशन के लिए एक नंबर है 4169012810. मीठा फर्नीचर डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है. पवन मीरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. खुश आमदीद कहेंगे. मीरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो.
4: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं. पांचवी का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे. और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग. आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी, उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा. और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है. तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो 2 पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं, कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक सेक्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 6099 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे हैं 1099. ये देखो, ये है हुनस्ती, आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी हैं वो. तो मतलब ये एक डील होगी, एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे. लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास 3 मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी. कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फेदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है. तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है. तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं. माइकल अमीनी का एक सोफा तीन हजार से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलते हैं 4500 का, हम देते हैं 3000 का. तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए. तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है. तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार क्या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में, तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810. थैंक यू वेरी मच जी,
3: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट सर उन्हें आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, midhafurniture.com इनकी वेबसाइट है. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे. तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा. उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों. साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं. व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है. और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में. इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे. इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा. इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी. लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए. और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल. इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से. अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200. ये मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है. स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे एक साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं. कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 416-206-3200, 416-206-3200. कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड.

0: Talabat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talabat 647-295-7861.
1: तलावट
0: 647-295-7861
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550.
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे. अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी. दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन. अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464. शहबाज अकबर साहब के रबते के नंबर 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन. कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है. अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577. जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं. मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं. केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे. कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म. अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577.
7: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
6: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा. एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-424.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
3: मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे رابطہ कीजिए तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेजेस इनके होते हैं साथ साथ मनी ट्रांसफर के सर्विसेज इमिग्रेशन के सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और कमर रशीद साहब रूह रवा हैं सीईओ हैं तमाम ऑपरेशंस को और खास तौर पे हज के हवाले से और उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं वहां जाके चीजों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है खुशामदीद कहेंगे कमर भाई अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब और आपकी वसासत से अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश
4: थैंक यू वेरी मच पहले मुबारकबाद बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका इस पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह तआला आगे बात करेंगे मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए
5: जी सर मैं अशरफ पटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे जी हाँ पीआईए ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिलीज जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है टाइम आपके पास है अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है आप अभी 24 जून को जा रहे हैं आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं तो और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है उमरा के वीजे खुल जाते हैं तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का उमरे का ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: पे कॉल कर लीजिए एक तो 15% सेल है प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं चाहे दो लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों आप इनसे रब्ता कर लीजिए अच्छा हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए
5: जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला बेशक कुशक ने और खुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत है हमारे लिए एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे अशरफ भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमिटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं, और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ। आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو پیکج کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کانسٹنٹ کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो अपना रिक्वेस्ट है बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें। इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रेट के लिए नंबर है 905-275-3555।
4: थैंक यू वेरी मच कमान साहब, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे भी बात करते हैं। थैंक यू,
5: सलाम अलैकुम। थैंक यू सर।
4: नंबर नोट कर लीजिए 905-275-3555। अच्छा, एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं, पाकिस्तान में पीसी लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है, और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब, फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज खाने वालों के लिए 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशल डिस्काउंट है, रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे, और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका, रिजवे प्लाजा में, और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 905-514-7877, 905-514-7877, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज, मेरा बताए के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके किर्तनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है, दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम उल औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें।

0: In since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Juni Global Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से 50,000 डॉलर सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए, शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है, कैपिटल बैंकवेट हॉल जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है, इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे राब्ता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरी डे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरी डे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक यू।
2: और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए आएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजस कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल जमान साहब। स्टे ट्यून्ड।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center.

0: No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates at Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence Bridgemount ka intersection 416-757-9999 Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye tamam insurance plan accept karte hain insurance na rakhne walon ke liye special discount root canal treatment aur retreatment ke specialist hain Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor aur Dixie ke intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922
5: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पेवे
6: अलकरम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9582800009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

0: Food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
5: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mera update number 416-593-0003 Pakistan liye chalenge maazrat 2 3 minute late ho gaye Friday thoda sa busy hota hai to isliye baaz ka hame ads bhi chalana pure padte hain aur kuch guftu bhi rehti hai Milazaman sahab is waqt hamare sath maujood hain khush aamdeed kahin Milaz sahab assalam alaikum
6: ji wa alaikum assalam
5: Milaz sahab yome mai mazdooron ka aalmi din hai Pakistan mein to manaya gaya yahan us tarah se nahi manaya jata duniya mein waise bahut si jagahon mein manaya jata hai مزدور کو اجرت پاکستان میں سنا ہے کہ بڑھا دی گئی ہے لیکن کیا حقوق کے حوالے سے بھی مزدور یا غریب طبقہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے
6: جی دیکھیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگوں کے اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے ڈاؤن دا لین جو طبقہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اور اسی لیے حکومت نے اس کو دیکھتے ہوئے جو مزدور کی اجرت ہے وہ کم سے کم 40,000 روپے جو ہے نا وہ رکھی ہے اور وہ ملتی ہے اور اچھی بات ہے کہ مطلب یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جو کیا کہتے ہیں اپنا راشن وغیرہ ہے اس کو پورا کر سکے اور باقی ٹھیک ہے کہ حکومت کے بہت سارے پروگرامس جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں اور حکومت کا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے پروگرام ہے بہت ساری جگہوں پہ حکومت ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے لیکن بہرحال بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ اگر کہیں بھی ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے آپ کہیں جو ہے نا وہ سیول لٹیگیشن کے اندر یا ایسے کسی معاملے کے اندر یا کسی طاقتور شخص کے ساتھ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقاتی ڈفرنس جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غریب کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ انصاف جو ہے نا وہ نہیں مل پاتا اور جو تکڑا اور طاقتور آدمی جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بچ نکلتا ہے تو یہ ڈسپیریٹی جو ہے اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ حکومت کو آپ نے اجرت تو اس کی کر دی ہے اچھی بات ہے لیکن معاشرے کے اندر جب تک آپ اس طبقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اس کو اس غربت سے نکالنے کے لیے اور اسکل پروگرام اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نہیں جو ہے نا وہ لے کر آتے تب تک میں نے دیکھا یہاں پہ جو ہے نا اسکلڈ ورکرز جو ہیں ایک تو مزدور طبقہ ہے نا لیکن جن کے پاس اسکلز ہیں ماشاءاللہ وہ تو مطلب یہ کہ مہینے کا 2-3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمانا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے
5: صحیح اچھا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے نئی ترکیب سامنے آئی ہے ٹرمپ کا اختیار ایران سے اور جنگ کرنی ہے یا نہیں فیصلہ امریکی کانگریس کرے گی امریکی سیکرٹری نے ایران جنگ کو پہلے ہی ختم قرار دے دیا ہے تو کیا جنگ کا اختیار امریکی کانگریس کے پاس جانے سے امریکہ کو ایران سے نکلنے کا موقع مل جائے گا ویسے صدر ٹرمپ تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میرا اختیار ہے
6: جی دیکھیں بالکل وہ تو اپنا بہت کچھ جو ہے نا وہ مانتے ہیں لیکن بہرحال جو امریکی قانون ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اب ان کو جو ہے 60 دن کے اندر اندر اجازت لینی ہوتی ہے چاہے جائے کہ وہ خود جو ہے نا وہ کوئی اور قانون پاس کرنے کی کوشش کریں لیکن ابھی جو ہے نا فی الحال کی سچویشن کے مطابق تو ان کو ایک راستہ جو ہے وے آؤٹ مل رہا ہے خود بھی بہت سارے ذرائع جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جتنا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی آ جائیں بات کر لیں فون کر لیں ہم تیار ہیں بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں جو ہے نا وہ چینل کھلا ہوا ہے ابھی ایک دوبارہ جو ہے وہ تجویز بھی پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کو بھجوائی گئی ہے تو بہت ساری جو ہے نا وہ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ خود بھی جو ہے نا اس میں سے اب نکلنا چاہتا ہے और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना, जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है, वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं, और भी ऊपर जाने की जाना वहां पे है। तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है, वहां पर तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं कि जी क्या जरूरत थी आपको जो है ना ऐसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था। तो वो बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना वो जल्द अज जल्द जो है ना वो निकले। तो बहरहाल एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला जिसके तहत वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था लेकिन अब मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं दी, तो इसलिए जो है ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं।
5: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, हमारे स्टूडियोज में आपसे नंबर 416-593-0003 पाकिस्तान से बिलाल जमान सबसे जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल लेंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर योम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है, और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही पीटीआई की क्यादत कर तो नहीं चुकी? बिलाल साहब
6: ये देखें जो जाहिरी हालात है ना वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इलम में ये बात है, लेकिन बाहर जो लोग हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ थे। आपको याद होगा कि जब अली मिन गंडापुर को हटाया गया था
5: जी बिल्कुल सही,
6: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था। उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए, केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से। और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब के जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है जिस तरह के सुहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते। अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयानात की हद तक, लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1000 साल का मतलब 1000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड है। 4 साल बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा कर लेती है।
5: अच्छा
6: तो लगता है कि कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय है कि इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान साहब बाहर नहीं आएगा।
5: ठीक। अच्छा अभी सोहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को उसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत है ओवरऑल, कैसी है क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
6: जी देखें जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल सिलेंडर वगैरह यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है, और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस अवेलेबल होती है।
5: अच्छा वफाकी वजीर तवने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गया है। حکومت لوڈ مینجمنٹ کو عوامی ریلیف مینجمنٹ کا نام بھی دیا تھا, تو کیا اس بار حکومتیں عوام کو بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف دیں گی لگتا آپ کو؟
6: جی دیکھیں, پچھلے سال جب یہ نئی پی ٹی ایم کی حکومت آئی تھی تو مریم نواز نے بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہی ایک اچھے ریلیف کا جو ہے نا

0: है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब
1: ठीक
0: हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है। एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना
1: सही
0: वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम
1: ठीक
0: को वही जो यूनिट्स हैं वो 40 40 रुपए में जो है ना वो दे
1: ठीक
0: दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वो वहां से कर रहे हैं तो
1: सही,
0: उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ
1: कुछ
0: जो
1: ना
0: है वो
1: कुछ
0: जरूर
1: होना
0: मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: चलें और चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडेंट्स में रबते के नंबर 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर। 6910, 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: वालेकुम
1: जी वालेकुम सलाम।
2: भाई साहब, है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में। खाली पहली दफा नहीं हो रहा, हम तो खैर इससे हुई संभाल है। ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, इनकी एक हिस्ट्री है। तो और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है। ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई
1: टाइम
2: साल लग
1: लगता है।
2: जाते हैं।
1: ठीक
2: लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे और अल्लाह करे पाकिस्तान कम से कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेगी, एटलीस्ट के
1: ठीक
2: जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है। तो ये एक अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्को करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये
1: सही
2: फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता
1: सही
2: हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतनी पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया में भी बढ़ने के बड़े चांसेस हो गए, खबरों में आया था, और
1: ठीक
2: पूरी दुनिया ही यानी कि यहाँ तो खैर
1: चल
2: जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस, और
1: सही
2: इवन अमेरिका का भी यानी कि
1: जी,
2: खबरें
1: हम
2: आई
1: भी
2: कि
1: कुछ पढ़
2: सिक्स
1: रहे हैं।
2: डॉलर पर गैलन, तो ये तो बहुत
1: बिल्कुल
2: बड़ा
1: ठीक,
2: यानी
1: ऑलराइट,
2: कि वो है।
1: थैंक यू सर,
2: तो बहरहाल
1: बहुत
2: अल्लाह
1: शुक्रिया।
2: ताला जो है बेहतर।
1: ठीक थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
3: कैसे हैं आप? ठीक
1: जी,
3: है।
1: शुक्रिया सर, थैंक यू।
3: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का, सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता
1: जी
3: है,
1: जी
3: वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है। वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है, और किसी डिसीशन पे लाती है।
1: जी
3: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन इस्लामाबाद बंद रहा है, ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला है, अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है, तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो। पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो, एक तो बात ये थी।
1: ठीक
3: दूसरी आखिरी बात में जो कहना कहना चाहूंगा कि जो जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है, अगर
1: ठीक
3: कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक
1: ठीक
3: नहीं होता।
1: फाइव
3: ये
1: सेवन
3: मैंने
1: नाइन
3: अब
1: फोर
3: ये
1: जी
3: इनसे
1: जी
3: जो सवाल
1: जी जी
3: पूछा है मैंने,
1: ठीक
3: जो
1: है।
3: जवाब देता
1: किसी
3: हूँ। ठीक
1: को वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
2: अस्सलाम
1: जी,
2: वालेकुम
1: वालेकुम
2: जनाब
1: सलाम।
2: भट्टी साहब, ये देखें जब तक ये जंग लगी है ना इसमें मसाइल तो होंगे, और इन मसाइल में अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाई उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, IMF भी है, और इससे सबसे बड़ी बात जो है, देखिये पाकिस्तान के कम अज कम कहने पे चले सीज फायर तो हुआ है ना भट्टी साहब, ये
1: जी
2: तो
1: जी
2: दुनिया तस्लीम कर दी है ना कि चले सालसी, अब ये सालसी देखिए शायद ईरान को तो हम मना ले, अब अमेरिका को मनाना तो

0: मुश्किल बात है
1: जी जी।
0: तो बात वही होगी जो आपस में बैठ के इन लोगों ने अपनी शरायत तय करनी है। और पाकिस्तान का मसला है कि वो हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी और हमायती करेगा ईरान की। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब, इसमें हम ये कभी भी नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों के साथ, लेकिन अब यहाँ देख ले, अब यहाँ नहीं, कल भी आपने बताया तकरीबन 400 रुपए के मुतरादब हमारा भी पेट्रोल हो गया, अब हमारा क्रूड ऑयल भी है, हमें क्या गवर्नमेंट कैनेडा ने दिया है, कुछ नहीं। ये देखे ये सरमायादार जागीरदार, इनका नुकता नजर और इनका लूटने का वारदात तरीका एक ही होता है। बाकी रह गई भट्टी साहब, हाँ साहब ने तमाम पते अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं। अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी की देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, 3 दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई। यार जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुख्य चीजें मिल रही थी, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए, मुल्क के खिलाफ जो लोगों का, इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नुकता नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं,
1: सब थैंक यू,
0: इस तरह ना करें।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन एयर हैं। 5415 वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आप डिस्कनेक्ट हो गया, चॉइस साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा हमारे पास 3-0010 आप बात करना चाहेंगे, 0010 लास्ट 4 डिजिट 0010।
2: सर मेरा आपके सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आईपीपी के मालिक कौन है, कभी आपके किसी सामीन ने ये बताया
1: तो
2: है कि,
1: सर बताया तो वो सारे वही बड़े लोग ही हैं सर आईपीपी के मालकान भी,
2: उनके नाम बड़े के नाम तो पता लगने चाहिए ना,
1: आपके जिम्मे लगाते हैं सर कि वो उनके नाम बताएं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप ऑन एयर हैं, 6141। अच्छा 5415 वापस आ गए सर, आप बात कीजिए। 5415 आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415
3: सिर्फ दो बातें करूंगा
1: जी जी।
3: पहली बात तो ये है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है। भट्टी साहब आप मुझे बताएं कि कनाडा में कितने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकले हैं, कितने मदारे हुए हैं, आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मदारे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात। और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, वो उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई। यार ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नीयत का फतूर है, तो फिर ये नीयत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात। भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: मुझे कह रहे हैं,
3: और आपका भी कद बड़ा होगा।
1: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
3: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई आप सवाल करते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन एयर हैं। 8156
4: हेलो
1: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
4: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% सरमायेदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मियां मंशा के चार हैं,
1: अच्छा
4: शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
1: अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
4: जांगी
1: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं बाकी कॉल दे। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं। 6141
5: السلام علیکم بھائی صاحب.
1: جی وعلیکم السلام.
5: پنڈی صاحب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے جب حکومت میں آئے تھے نا, اوپر سے فلڈ آ گیا, پھر جنگیں آ گئیں, پھر ایک بازو میں جنگ, پھر دوسرے بازو میں جنگ. دیکھیں دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ پاکستان اگر آج باندھ کے کٹائی کرتا ہے نا, تو اگر اسے انرجی سستی مل گئی تو اسے سنبھالے گا کون؟ تو اپنی حکومت پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.
1: تھینک یو. 9558 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 9558. اچھا چلیں, آپ سن رہے ہیں بلال صاحب. میں نے برسبیل تذکرہ جو ہے وہ ان کا منیر نیازی کا شعر کہہ دیا تھا, تو بھائی کے سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے آپ؟
6: نہیں وہ تو جو ہے نا کہتے ہیں اپنا سوالوں کے جواب اپنی جگہ پہ, لیکن بہرحال ہمارا بہت سارے معاملات کے اندر جو تجزیہ ہوتا ہے, دیکھیں جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں نا, ابھی بھائی نے بات کی مہنگائی کی اور احتجاج کرنے کی, دیکھیں ایک جو ہے نا وہ لیول ہوتا ہے, اس کو آپ کیا کہہ لیں کہ جب پانی جو ہے نا وہ سر سے جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے. تو ابھی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ سٹیج جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ ہم حکومت کی بھی جو ہے نا وہ سپورٹ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنی عیاشیاں یا اپنے معاملات ہیں ان کو جو ہے نا وہ نہیں کور کرتی اور سارا کا سارا بوجھ جو ہے صرف عوام کے اوپر ہی ڈال دیتی ہے, تو پھر جو ہے نا وہ بہرحال ایک جو ہے نا سوال جو ہے نا وہ
1: ضرور. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویکینڈ ہے, آپ بھی دو دن ریسٹ کیجیے, منڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو, بہت شکریہ. اینڈ لسنرز آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ, آپ سے اجازت چاہیں گے, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشت زندگی. انشاءاللہ منڈے شام 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی, ویکینڈ ہے, بچوں کو وقت دیجیے گا, انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اسٹوڈیو انجینئر مریم پر میزبان اشرف بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سپرد مالا.

0: मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत की दौलत से माला माल रखे, आमीन। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने सिलसिलेवार सेगमेंट अल्लाह ताला के 99 नामों से।
1: ये कादिर
2: ऐ कुदरत वाले, जो शख्स दो रकात नमाज पढ़कर 100 मर्तबा अल-कादिरो पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दुश्मनों को जलील और रुस्वा फरमा देंगे अगर वो हक पर होगा। अगर किसी शख्स को कोई दुश्वार काम या किसी काम में दुश्वारी पेश आ जाए तो 41 बार या कादिरो पढ़े, इंशाअल्लाह वो दुश्वारी दूर हो जाएगी।
3: World Islamic Mission Canada is making history in the town of Oakville with the forthcoming construction of Masjid Nurul Haram, an architectural landmark. Come and help us build this mosque together that will benefit this generation and future ones as well. Please donate generously to this project by calling 905-257-1342 or online at wincanada.com.
0: अदाकारा संगीता 14 जून 1957 में कराची के इलाके नाजराबाद में पैदा हुई। इनका असल नाम परवीन रिजवी है। इनकी 3 बहनें और 1 भाई है। इनके वालिद का नाम सैयद तबीब रिजवी और वालदा का नाम मेहताब बानो है। इनकी वालदा भी एक अदाकारा थी। इनको फिल्मों में इनकी वालदा ने ही मुतारिफ करवाया। इनकी बहन कविता इन्हीं की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई, जबकि इनकी छोटी बहन हिना रिजवी भी अदाकारी के शोबे से मुंसलिक हैं और टीवी के कई ड्रामों में काम कर रही हैं। अदाकार रहमान फिल्म कंगन बना रहे थे जब उन्होंने संगीता को देखा, जो इस वक्त 8वीं क्लास की तालिबिल्म थी और उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। रहमान ने इन्हें अपनी फिल्म कंगन में हीरोइन सेलेक्ट कर लिया। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई और नाकाम रही, लेकिन संगीता अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राइवेट तौर पर मुकम्मल की। तो अब हम आपको जो गाना दिखाने जा रहे हैं, मशहूर ज़माना गीत उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए, इंजॉय कीजिए।

1.06। लाहौर आने के बाद संगीता ने बहुत सी फिल्मों में काम किया जिसमें सलाम मोहब्बत, गृहस्थी, अफशा, इंसाफ और कानून, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और खलश जैसी फिल्में शामिल हैं। उर्दू फिल्मों के साथ साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम शुरू कर दिया जिसमें वारिस, राजू, पन्नू और खुदा ते मां शामिल हैं। अदाकार संगीता ने अपनी फिल्मी कैरियर में एक कामयाब हीरोइन बनने के लिए बहुत मेहनत की। यहां मैं इनकी कुछ फिल्मों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। 1972 में फिल्म बाजार, 1972 में ही दूसरी फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा, 1973 में फिल्म खुशिया, 1974 बात पहुंची तेरी जवानी तक, 1974 मंजी किथे डावा और 1984 नाम मेरा बदनाम शामिल हैं। इनके सुपरहिट गानों में जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, कोई करके बहाना सानू मिल माइया और राता आ गई चाननिया शामिल है। मेरा एक काम कर दो ना, ये दिल मेरे नाम कर दो ना।

सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू अल्लाह। टोरंटो में रहते हुए अगर आपके पास मेडिकल कवरेज नहीं है तो आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर की फ्री क्लिनिक में कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। इनके डॉक्टर आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल के फासले पर हैं। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर क्लिनिक की दो लोकेशन है, स्कार्बरो और मिसिसागा। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सबसे ये दिली दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप दिल खोलकर मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को डोनेट करें। जज़ाकल्लाह खैर।

0: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेज की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेज के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोवेस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेज, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेज की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828.
1: At Clinicare Discount Pharmacy, we accept all drug plans with easy prescription transfers and free medication management services. Located at 2250 Markham Road, Unit 3, Scarborough, Ontario, with free delivery in the GTA and halal vitamins available. For more info, visit www.clinicarediscountpharmacy.com.
2: घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे राब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997, या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badar.ca.
3: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

हिदायतकार एस सुलेमान की फिल्म अन्नाड़ी में उन्होंने साइड हीरन का रोल किया और ये फिल्म कामयाब रही। 1972 में हिदायतकार सेवन रिजवी की फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा में इन्हें अदाकार रंगीला के मुकाबले हीरन का रोल दिया गया। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई। ये इनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी जिसमें वो मरकजी किरदार में आई थी। 1975 में फिल्म तेरे मेरे सपने में मोहम्मद अली के साथ बतौर हीरन काम किया। ये फिल्म भी सुपरहिट फिल्म रही। संगीता ने पाकिस्तान के तमाम नामवर हीरोज के साथ काम किया जिनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम और शाहिद के नाम काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा मुनव्वर जरीफ और रंगीला के साथ भी हीरन के रूप में काम किया। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, आइए देखते हैं ये गीत।

अदाकार संगीता ने अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उन्होंने PNR प्रोडक्शन के नाम से एक इदारा कायम किया और PNR के बैनर तले मुसन्निफ और हिदायतकार इकबाल रिज़ी के साथ फिल्म तेरे मेरे सपने बनाई, जिसमें इनकी छोटी बहन कविता ने भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। इस फिल्म के सुपरहिट होने के साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। इस फिल्म में मोहम्मद अली और शाहिद ने हीरो के रोल अदा किए। बतौर हिदायतकार इनकी फिल्म सोसाइटी गर्ल एक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में आज के मशहूर डायरेक्टर सैयद नूर बतौर राइटर मुतारिफ हुए थे। इनकी ये पहली फिल्म थी जो कि 1976 में रिलीज हुई। इसी साल यानी 1976 में इनकी दूसरी फिल्म मुझे गले लगा लो रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने खुद भी अदाकारी की। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। संगीता की वालदा मेहताब बानो ने PNR के बैनर तले फिल्म मोहब्बत और महंगाई बनाई। ये फिल्म भी हिदायतकार इकबाल के साथ मिलकर बनाई गई। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी वीडियो एंड अप्लायंसेस मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन और कॉल 905-450-2828।
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

1978 में उन्होंने फिल्म मुट्ठी भर चावल बनाई, जो फिल्म सिख कल्चर और मजहब पर मबनी नावल एक चादर मैली से लिया गया था, जिसकी फिल्मी तश्कील में उन्होंने कमाल कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी और हिदायतकारी की। फिल्म मुट्ठी भर चावल पाकिस्तान में इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी, मगर इस फिल्म को बैनुल अक्वामी सतह पर काफी सराहा गया। इस फिल्म में इनकी अदाकारी को भी बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म में इन्हें दो निगार अवार्ड मिले, जिसमें एक बेस्ट एक्ट्रेस और दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था। उन्होंने चार निगार अवार्ड और 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। अपने 50 साल फिल्मी कैरियर में तकरीबन 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्में शामिल हैं। इनकी डायरेक्शन में रिलीज होने वाली फिल्में 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल और मुझे गले लगा लो, 1977 इश्क इश्क, 1978 मुट्ठी भर चावल, 1982 मियां बीवी राजी, 1996 खिलौना, 1998 निकाह और 2019 में फिल्म सिर्फ तुम ही हो रिलीज हुई। कुछ बोलिए हुजूर, ये लब खोलिए हुजूर।

संगीता ने हुमायूं कुरैशी से शादी की। इनकी इस शादी से इनके घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन तमाम घर वालों की मुखालफत के बावजूद संगीता ने हुमायूं कुरैशी से शादी की, जो ज़्यादा देर तक ना चल सकी। इनकी दूसरी शादी नवीद भट्ट से हुई। इनकी तीन बेटियां थीं, तीनों की शादी हो चुकी है और वो नानी भी बन चुकी हैं। इनकी कोई भी बेटी शोबिज से वाबस्ता नहीं। संगीता ने इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार थी और बहुत से फिल्म मेकर सरमाया डूब जाने के डर से फिल्में बनाने से डरते थे। वो संगीता ही थी।

0: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
1: मिसिसागा रिजवे
0: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
2: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
3: You know, we were always trying how to get a house.

0: Keep watching Toronto 360 TV with Cyber Gaya.
1: Assalamu alaikum nazreen, main is waqt Toronto 360 ki janib se Irfan Baba Malik aapki khidmat mein hazir hu aur shahar ka ek bada mashhoor business link jisko aap kehte hain biz link jo businesses ko jodta hai ye hone ja raha hai idhar yahan bahut sare businesses aaye hain कम्युनिटी में ऐसी चीजें होनी चाहिए बिजनेसेस प्रमोट करने चाहिए और बिजनेस बढ़ने चाहिए जितने बिजनेस बढ़ेंगे हमारी कम्युनिटी उतनी ही मजबूत होगी और इस मजबूती की जामन है हमारी फौजिया जी और इन्होंने आज ये बिज लिंक के तहत ये पहली एक कॉन्फ्रेंस समझ लें एक एग्जीबिशन समझ लें या एक कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम बिजनेसेस का समझ लें वो किया है और हम आपको इसकी झलकियां वक्तन फक्तन दिखाते रहेंगे। मैं इस वक्त अपने कुलीग साबर गाया साहब के साथ हूं और मैं फौजिया जी से बात करूंगा। फौजिया जी कॉन्ग्रेचुलेशंस,
2: थैंक यू,
1: इतना जबरदस्त शो करने का, इतनी जबरदस्त एफर्ट करने का, सोल्ड आउट फुली बुक्ड शो है आपका और बहुत सारे हम बैनर देख रहे हैं जैसे कि नाजरीन भी देख रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे?
2: थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजलिंक कनेक्टिंग बिजनेस मेरी एक ऐसी कोशिश है जिसमें मैंने ये चाहा था कि टोरंटो के टॉप नॉच बिजनेसेस का आपस में मर्ज हो, ना सिर्फ ये कि हम सब खुद अकेले ग्रो करें बल्कि एक दूसरे के बिजनेसेस को भी ग्रो करने में सपोर्ट करें। और आज वो दिन आ चुका है, यानी बिजलिंक 2026 यानी अप्रैल 18 को इस वक्त हम मौजूद हैं अपोलो कन्वेंशन सेंटर में और वक्फे से हम आपको अपडेट्स करते जाएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे हर किस्म का बिजनेस आपको मिलेगा। बिजलिंक इज बेसिकली वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच। फौजिया जी ये बताइएगा कि आप तो बड़ी कामयाब मॉर्गेज ब्रोकर हैं, ये इतने बिजनेस जो आप इकट्ठे कर रही हैं और ये जो लिंक कर रही हैं, इसमें चूंकि आप बिजलिंक की सीईओ भी हैं, आप इनकी ओनर भी हैं, तो इससे आपको क्या क्या फीलिंग मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है, क्या आपका क्या सेटिस्फेक्शन?
2: जी बहुत प्यारा सवाल है, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मकसद बिल्कुल वही है कि ना सिर्फ खुद ग्रो करना है बल्कि अपने कम्युनिटी में, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खास तौर पर आगे लेकर आना मेरा मकसद था। हमारे दरमियान आज की शाम आपको कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स मिलेंगे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और मकसद एग्जैक्टली वही है कि ना सिर्फ ये कि हम खुद अकेले ग्रो करें बल्कि मिलके अपनी कम्युनिटी को कैनेडियन बेस्ड कम्युनिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फजल जी, आप बहुत मसरूफ हैं, टोरंटो 360 को टाइम देने का शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर साथ साथ चलते रहेंगे और फिर आखिर में आके फिर आपको आपसे पूछेंगे रात को कि ये कैसा शो रहा। नाजरीन आप हमारे साथ रहें, हम आपको झलकियां दिखाते रहेंगे, आपसे लोगों की बात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बाबा मलिक टोरंटो 360 की जानिब से, साबर गाया अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, थैंक यू। जनाब इस वक्त हम डॉक्टर शाहिना किशोर जी के साथ मौजूद हैं, शहर की इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, बल्कि लोगों को पढ़ाती हैं लिखाती हैं। मैंने पढ़ी लिखी का लफ्ज तो एक तकल्फन इस्तेमाल किया, ये पढ़ाने वालों में से लिखाने वालों में से हैं। तो डॉक्टर साहब ये आप बिजलिंक की कॉन्फ्रेंस पे आप आई हैं, तो आपके क्या तासरात हैं?
3: जी सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम फजिया फसी साहिबा ने अरेंज किया है जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये मौका दिया गया है कि वो अपने आइडियाज शेयर करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें और एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, ताकि हमें एक ही जगह पे बहुत से जब बिजनेसमैन मिल जाते हैं, बिजनेस वेमेन मिल जाती हैं, तो हम शेयर करके हम एक ही जगह पे बहुत सी जो फील्ड है उसको कवर कर रहे हैं। तो माई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड थैंक यू।
1: थैंक यू। नाज़रीन इस वक्त हम चौधरी निसार साहब के साथ मौजूद हैं और जो कि मीडिया में खास मुकाम रखते हैं, शहर के पढ़ाई लिखाई में खास मुकाम रखते हैं और बड़े बड़े मालूमती प्रोग्राम, बड़े मुतहरक कम्युनिटी लीडर भी हैं। चौधरी साहब आप तशरीफ लाए हैं बिजलिंक पे, आप कुछ इसके बारे में भी बताएं और अपने तासरात भी बताइए।
4: अरफान बाबा साहब ने जो कहा वो रिवर्स में इनके ऊपर अप्लाई होता है। माशाल्लाह ये बहुत एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है। ٹورانٹو 360 کا بہت شکریہ, سابر گایا صاحب کا کیمرہ مین ہے اس وقت, بہت شکریہ سب کا. جہاں تک آج کے اس ایونٹس کے حوالے سے ہے کہ بز لنک جو کہ فوزیہ فصیح صاحبہ اور ایک پوری ٹیم نے یہ ایک یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے اور ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے, جتنے میکسیمم لوگ ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک قسم کی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ضرورت بھی تھی سٹی کے اندر. بہت کام اور بھی ہو رہے ہیں, بہت زیادہ آرگنائزیشن بھی کر رہی ہیں. آج ان کا یہ پہلا ایونٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کے ورسٹائل لوگ آئے ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آگے یہ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کر کے کمیونٹی کو فائدہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. جیسے میرا اپنا ہے تو میں صابر گایا صاحب اور ملک صاحب آپ کی وساطت سے اور ٹورانٹو 360 کے حوالے سے المصطفیٰ کینیڈا ایک چیریٹی ورک میں میں انوالو ہوں, وہ میرا چیریٹی ورک ہے, والنٹیئر ہے. میرا خود اپنا بزنس جو ہے ای کامرس کا ہے, میں بزنس کوچ کرتا ہوں, لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں. کسی کا ڈیڈ بزنس ہو رہا ہو اس کو انالیسس اس کے انالائز کر کے اس کو کوچنگ کر کے اس کو بیچنے تک ہیلپ کرتا ہوں. مینلی میرا کمرشل کا کام ہے اور بزنسز کا کام ہے. ای کامرس میں کسی نے کوئی ٹریننگ لینی ہو وہ میرے سے لے سکتا ہے, میرے نیٹورک امریکہ کینیڈا دونوں کنٹریز میں ہیں, ورلڈ وائڈ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ میرے امپلائیز ہیں.
1: جی شکریہ چاری صاحب.
4: جی جی, تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس آج کے اس پروگرام میں میں فوزیہ فصیح صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کا اچھا نیٹورکنگ پروگرام لے کے آئے ہیں جس میں سارے بزنس لوگ بزنس مین لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے اور اپنے اپنے بزنسز کو بھی پروموٹ کرنے کی ایک اپرچونیٹی ملے گی. یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. ملک صاحب آپ کے ساتھ مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, آپ ہماری کمیونٹی کی جان ہے, ہمارے پیارے دوست ہیں, ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ. اور آپ اپنے آپ کو جب دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو ہمیشہ اوپر لے کے جاتا ہے, یہ ایک ہم نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے.
1: بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب, آپ کے الفاظ کا, یہی الفاظ میں آپ کے لیے ہیں, میرے لیے نہیں ہے, میں ایک بڑا عاجز آدمی. بہت شکریہ.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: वेलकम टू आइकॉन इवेंट स्पेस, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, ICON is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
2: At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves,
3: which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases.
4: Our legal team comprises many legal professionals.
5: Every individual deserves dedicated legal representation.
6: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.
7: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
8: मिसिसागा रिजवे
7: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
9: राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
10: You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage?
11: Oh yes, Shiraz Hussein, who did our mortgage too.
10: Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. The expert in their services. And you know what Shiraz said?
12: We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise.
13: Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
14: A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
8: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी. कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब्बे करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे. अल्लाह रब्बे करीम आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम आमीन. प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम. मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है. स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है. दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए. राबते के नंबर है 905-257-1342.